यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 अगस्त 2026। सुबह के 5:53 और 34 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। 6:02 पर समय रहेगा प्रोग्राम सुप्रभात का ज्योति आनंद के साथ। 7:02 पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर आपके साथ होंगे निखिल कुमार। और 8:02 पर ज्योति आनंद के साथ आप सुनेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। 9:02 पर प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने निखिल कुमार के साथ आप सुनेंगे। और 10 बजे आप अंग्रेजी में न्यूज़ हेडलाइंस सुनेंगे। वेस्टर्न म्यूजिक का समय रहेगा 10:02 पर निहारिका के साथ। 11 बजे हिंदी में मुख्य समाचार प्रसारित होंगे और 11:02 पर

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

छह बज चुके हैं। पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरु में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। चंडीगढ़ पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से चल रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 थाई, 3 बांग्लादेशी, 4 नाइजीरियाई, 1 युगांडा और 1 गिनी नागरिक शामिल है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। राष्ट्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। 22 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ प्रधानमंत्री इमरान खान के इलाज के लिए अपनी अपील दोहराई है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

नमस्कार, सभी का स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है या फिर आप हमें सुन रहे हैं हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से। क्या सुन रहे हैं? सुप्रभात, किसके साथ? ज्योति के साथ। कब? आज की मंडे की प्यारी सी सुबह में। सत्यम शिवम सुंदरम, कितने खूबसूरत बोल हैं और कितना सत्य भी है ना इनमें। इसीलिए हम हमेशा सच बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं ताकि हमारा आज का दिन बहुत खूबसूरत बन सके। किसी भी वजह से अगर हमारा मन किसी भी वजह से उदास है तो उसको हम दूर कर देंगे। आज के मंडे मॉर्निंग को, आज के पूरे मंडे को, दिन को खूबसूरत बनाएंगे, खुशनुमा बनाएंगे। और थोड़ा सा तो धैर्य रखिए। जी हाँ, धैर्य रखना लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऐसे ऐसे नतीजे मिलते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और फिर बात करेंगे सुप्रभात में आज किसी ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो बस सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। मैं हूँ ज्योति आपके साथ, कार्यक्रम सुप्रभात, एक और खूबसूरत गाना आपके लिए है।

Hey listeners, welcome back. आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं सुप्रभात ज्योति के साथ और समय मिला सकते हैं 6:15 हो चुके हैं. आपके मैसेजेस हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ना शुरू हो चुके हैं और जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा सा धैर्य रखिए तो आज की बात यही है कि धैर्य रखना ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को रखना नहीं आता है, मगर धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है. और हम सब अपने जीवन में ना मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, हर कोई खुश और शांत रहना चाहता है और उसके लिए रखना होता है धैर्य. कैसे मतलब बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती रहती हैं और तब हमें लगता है कि हमारा जो सुख है, चैन है, शांति है, वो सब चले गए हैं. मगर अगर ऐसे टाइम पर, ऐसे मुश्किल टाइम पर अगर हम रखेंगे धैर्य तो हमें सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और हम वो सब पा सकते हैं जिसे हमें पाना है, जो हम पाना चाहते हैं. मगर अक्सर हम उसी बात पे तो बेचैन हो जाते हैं कि हम हमारी कुछ चाहत होती है और हमें वो मिल नहीं पाती है तो बस हम परेशान हो जाते हैं. तो ऐसे वक्त पे ही रखना है हमें धैर्य और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें कर कर हम अपना सुकून बनाए रख सकते हैं, अपने अंदर खुशी बनाए रख सकते हैं. और जैसी छोटी छोटी सी बातें, हर बात का जवाब देना ज़रूरी तो नहीं होता ना कि उसी टाइम पर उसी बात का उसी वक्त जवाब दिया जाए. कुछ बातें टाइम पर छोड़ देना ही समझदारी होती है, क्योंकि जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, जो है उस पर ध्यान दे सकते हैं. कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहेगा, ये हमारे कंट्रोल में हमेशा कभी भी नहीं होता है. तो इसीलिए हमेशा ही इनको भी हम छोड़ सकते हैं बातों को. हमें क्या पता कौन किसके दिमाग में क्या सोच रहा है. और हमेशा रिएक्शन देने से पहले थोड़ा सा रुके. अगर गुस्सा आए तो थोड़ी देर, कुछ सेकेंड के लिए चुप रहें, रुक जाएं, क्योंकि कई बार, बहुत बार एक छोटी सी चुप्पी ना बहुत बड़ा पछतावा बचा लेती है. एक कहावत थी, एक चुप सौ सुख, हमने ऐसा सुना था ना अपने बड़ों से. तो वो अपने जीवन में आज भी हम अगर उसको अपनाएं और उसको हम अप्लाई करें तो बिल्कुल बहुत सारी बातों से हम बच सकते हैं अननेसेसरी. और मीठी बातें करके, मीठी शब्द बोलकर भी हम सबके साथ एक अच्छा साथ बना के रख सकते हैं, जो कि ज़रूरी है लाइफ में. क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में से चूज़ करना तो हमारे हाथ में है ना, कि हम क्या चूज़ करते हैं. आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं और आप क्या करते हैं, कैसे धैर्य बनाए रखते हैं, क्योंकि ये एक पावर होती है. इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है और मुश्किल भी होता है. कैसे करते हैं आप बता सकते हैं. सुनते हैं आकाशवाणी, मैं हूँ आपके साथ ज्योति, कार्यक्रम सुप्रभात में एक और खूबसूरत सा गाना सुनते हैं और फिर आके बात करते हैं.

धैर्य रखना ना सबसे मुश्किल काम होता है, और मुश्किल काम करने में एक्चुअली मज़ा आता है जब हमें चैलेंज मिलता है। तो इसीलिए धैर्य रखना सिर्फ इंतज़ार करना नहीं होता है, बल्कि इंतज़ार के दौरान अपने मन को शांत रखना होता है। इसके जैसे तरीके होते हैं कि किस तरह से हम धैर्य रख सकते हैं, हम तब रख पाएंगे जब हमें इसके फ़ायदे पता होंगे। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ के फ़ायदे पता होते हैं ना, तो उसे करना हमारे लिए आसान भी हो जाता है और हमें मज़ा भी आता है। तो इसीलिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि जैसे हमने पहले भी बात की कि धैर्य रखने से रिश्ते अच्छे रहते हैं, हम कुछ ऐसा नहीं बोल देते हैं जो सामने वाले को बुरा लग जाए और फिर वो बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक उसको गुस्सा मान के हमसे बात ना करें, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल्दबाजी में हमें नहीं करनी होती हैं। तो इसीलिए धैर्य रखने से हमें सही डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलती है, जल्दबाजी कम होती है, और हमारी जो सोच होती है ना उसमें बहुत क्लैरिटी रहती है, और क्लैरिटी तो सबसे ज़्यादा मस्त है। इससे हमारा जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है, हमारे अंदर से ये बात निकल जाती है कि हर चीज़ को उसी टाइम पाने की जो चाहत है ना वो इतनी भी सही नहीं है, थोड़ा हम रुक भी सकते हैं, और जो हमारा मुश्किल समय होता है वो हमारा आसानी से गुजर जाता है। तो जो ये धैर्य होता है ना, जो ये पेशेंस होता है, ये हमें याद दिलाता है कि सिचुएशंस हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी, सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए हमें इसमें धैर्य रखने के अलावा कोई और बेस्ट ऑप्शन हो नहीं सकता है। तो इससे आप भी खुश रहेंगे, आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे, और अगर आप जब बेचैन रहेंगे, इम्पेशेंट रहेंगे, और हर चीज़ की आपको जल्दी होगी कि बस अभी मुझे मिल जाए, जो ने कहा है वो दूसरा इंसान मान ले, तो रिश्ते इससे ख़राब होते हैं। और बहुत सारे इसके और भी फायदे हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि जब हम बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी टिके रहते हैं तो हमारा खुद पर भरोसा बढ़ता है। और ऐसी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें अलग अलग तरकीबें आनी चाहिए, है ना, तरकीबें हमें नई नई निकालते रहने चाहिए, सोचते रहने चाहिए कि कैसे हम इस सिचुएशन से या फिर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कैसे कौन सी तरकीब निकालें कि इससे बाहर निकल जाएं। बचपन याद कीजिए, कितने सारे हमारे पास हर चीज़ की एक सोल्यूशन होता था, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, और हम काफ़ी सारी तरकीबें निकाल लेते थे। तो बस ऐसी ही तरकीबें निकालते रहें, अपने दिन को, अपनी सुबह को खुशनुमा बनाते रहें। सुप्रभात सुन रहे हैं आप, और एक और खूबसूरत सा गाना आपके लिए बेनी दयाल की आवाज़ में।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

बिल्कुल, हमारे दिल में भी ऐसे कई बार ऐसे अरमान आते हैं, ऐसा वेग आता है, क्या ना, हमसे चुप नहीं रहा जाता. ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, कभी मम्मी पापा के सामने, कभी बहन भाई के सामने, कभी फ्रेंड्स के सामने, कितनी भी कोशिश कर लेना, मतलब वो चुप नहीं रह जाता है कि बस मैंने कैसे नहीं बोला. तो बस वही वो टाइम है जब हमें रखना है पेशेंस, और वो हम तब रख पाएंगे जब हमें पता होगा, हमारे माइंड में ये क्लियर होगा कि हमें क्यों पेशेंस रखना है, हमें क्यों चुप रहना है, और अगर बोलना भी है तो हमेशा अच्छा बोलना है. उसके बहुत सारे फ़ायदे, नुकसान तो हम सब जानते हैं लाइफ में, जब रियल

सिचुएशंस आती हैं और हम फंस जाते हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं कि यार तब मैं चुप रह जाता तो कितना अच्छा होता ना. तो बस यही बात है. वैसे तो हम जानते हैं कि सूरज भी अपनी बारी का इंतज़ार करता है. अंधेरे के बाद जब सूरज की रोशनी आती है तो कितने सारे नए विचार आते हैं, एक नया मौका मिलता है. और आज भी मंडे मॉर्निंग में हमें यही मौका मिला है कि आज के दिन को हम कैसे और फुलफिलिंग, हैप्पी बना सकते हैं, जॉयस बना सकते हैं. और ये एक बात है जिसमें हम आज पूरा दिन चिंतन मनन करेंगे. और जब भी आपको लगे ना कि आप पेशेंस लूज़ कर रहे हो, तो बस सुप्रभात कार्यक्रम में जो भी बातचीत हुई वो आप याद कर लेना, क्योंकि दिन की शुरुआत हम इसी वजह से करते हैं इस तरह की बातें करके, ताकि अपने आगे वाले आने वाले दिन को, पूरे दिन को हम अच्छा बना सकें और वो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में शामिल होता जाता है, क्योंकि वो आदत बनती जाती है. छोटी छोटी बातों से ही तो हमारी आदत बनती है. हमारे साथ जुड़े हैं पंकज, जो लिखते हैं कि मैं धैर्य खो देता हूँ. यही तो मैंने कहा कि ये हमारी एक ना वीकनेस है और इसे हमें पावर बनाना है. तो हम धैर्य आप भी खो देते हैं, हम भी खो देते हैं. ऐसा अक्सर होता है ना, जब आप नाराज़ हो जाते कि हमारे मैसेज कभी शामिल नहीं किए हैं, तब भी धैर्य खो देते हैं. तो बस उसी टाइम पे वो धैर्य रखना है, वो मैच्योरिटी दिखानी है और अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि सिचुएशन दूसरी तरफ कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता है. तो इसलिए छोटी छोटी बातों से क्या नाराज़गी जतानी, इसलिए लेट गो करते रहें, खुश रहें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बोलते रहें, ताकि आपका दिल भी सुकून में रहे और सामने वाले का भी दिल सुकून में रहे. आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप सुप्रभात कार्यक्रम ज्योति के साथ, और एक और बहुत खूबसूरत सा गाना आपके लिए आ रहा है.

जी हाँ, हमारा दिल भी ऐसे पतंग बन के उड़ सकता है, ऐसे हल्का फुल्का हैप्पी रह सकता है अगर हम किसी का दिल ना दुखाएं। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, पेशेंस रखना। और जब भी आपको लगे कि पेशेंस हम खो रहे हैं तो उस टाइम पे बस आए, तो आप कुछ पलों के लिए आप उस जगह से हट जाएं, या आप फिर एक पानी का गिलास पी सकते हैं, या फिर आप काउंटिंग कर सकते हैं 1 से लेकर 10 तक, और फिर उसके बाद धैर्य रखकर सोच समझ के जब भी आए तो बस मीठे बोल ही बोलें, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये सिर्फ आपको ही नहीं, सामने वाले को भी खुश करता है और हमारे रिश्ते बहुत सुंदर बने रहते हैं। और कौन नहीं चाहता है सुंदर रिश्ते? रिश्ते मजबूत हम चाहते हैं, सुंदर चाहते हैं, जिससे प्यार और सम्मान बढ़ता है। तो इसलिए आप ही सोच लीजिए कि आपको कटु शब्द बोलने हैं कि आपको मधु शब्द बोलने हैं। इससे मनमुटाव भी कम होता है। और एक बड़ी खास बात है कि कोई बात अगर कठोर है ना, कोई ऐसी टफ बात है जो आपको किसी को कहनी है, और उसको अगर आप बहुत ही विनम्र तरीके से कह देंगे ना, तो यकीन मानिए कि जो उसमें डिस्प्यूट होने की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो बहुत कम हो जाती है। तो किसको फ्रिक्शन चाहिए? किसी को भी नहीं। उस टाइम पे तो लगता है कि बस हम रुके ना, कुछ भी बोल दें, मगर थोड़ा सा पेशेंस रखने के बाद जब आप सोच समझ कर बोलेंगे तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा, आपके अपने दिल को, दिमाग को, आपकी बॉडी को बहुत सुकून महसूस होगा, और लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, और जो कि हर कोई चाहता है। और ऑफ कोर्स इससे हमारा स्ट्रेस तो कम होता ही है, रिस्पेक्ट बढ़ती है, खुद को भी शांति मिलती है जब हमारी भाषा में कटुता कम होती है, और हमारा मन भी हल्का रहता है। बड़ी सुंदर सी बात है कि मीठे बोल मुफ्त होते हैं, लेकिन उनकी कीमत रिश्तों में बहुत बड़ी होती है। तो बस ये छोटी सी ही बात है जिसे हमें अपने आज दिल में उतारना है, फिर दिमाग में उतारना है, और पूरे दिन इस पर विचार करना है। और आज पूरे दिन कभी भी आपको लगे ना कि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, धैर्य खो रहे हैं, तो बस उस टाइम पे याद कर लीजिएगा यही सारी बातचीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप सुप्रभात कार्यक्रम ज्योति के साथ। और कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हमें मतलब समझ नहीं आता कि क्या हो गया अचानक से। तो जैसे अभी मैं कोई और सॉन्ग प्ले करना चाहती थी मगर कोई और हो गया, मगर मैंने धैर्य रखा और अब आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत खूबसूरत सा गाना। सुनिए इसे और उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि आगे कार्यक्रमों का क्या सिलसिला रहेगा आकाशवाणी रेनबो पर।

इतना प्यारा सा मीठा सा गाना आपने सुना, इसमें कितनी बार उसने बर्फ़ी का नाम लिया ना, और मैंने कल ही 3 पीस बर्फ़ी खाई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अगर मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे तो ऐसा है नहीं, मीठा तो मुझे वैसे ही पसंद है, और मीठा खाएं ना खाएं मगर मीठे बोल ज़रूर बोलें। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मीठे बोल मुफ्त होते हैं लेकिन उनकी कीमत रिश्तों में बहुत बड़ी होती है, मगर हाँ एक और बात है कि मीठे बोल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी की हर बात से सहमत हो जाएं। अपनी बात को दृढ़ता से रखना, उसे उसी दृढ़ता से कहना भी ज़रूरी होता है। बस आपके शब्दों में जो सम्मान है ना वो बने रहना चाहिए। तो बस सुप्रभात में आज इतना ही, और आपको बता दूं कि अभी 7 बजे आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR निखिल कुमार के साथ। उसके बाद गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का सेकेंड एडिशन लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगी 8 बजे, और उसके बाद आप 10:02 पर सुन पाएंगे मैचलेस म्यूजिक आर निहारिका भुवानिया के साथ। तो कार्यक्रमों का सिलसिला आकाशवाणी रेनबो पर चलता रहेगा। इन्जॉय करते रहिए खूबसूरत से गाने, और मैं मिलती हूँ आपसे फिर से 8 बजे, और आप FM रेनबो पर यूं ही अपना साथ बनाए रखिए और गाने इन्जॉय करते रहिए।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। पेश अब तक के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसनुरु गांव का दौरा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट एनजीपी का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें से 9 थाई, 3 बांग्लादेशी, 4 नाइजीरियाई, 1 युगांडा और 1 गिनी नागरिक शामिल है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। भारत आज कोलंबो में मेजबान श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी के 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। और अब वो प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपने सुना आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आपके दोस्त अर्जुन निखिल के साथ में। और इस प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आज के दिन इतिहास के पन्नों में आपके लिए क्या छिपा हुआ है। आपको बता दें वर्ष 1456 में आज के दिन ही गुटेनबर्ग बाइबल की छपाई का काम पूरा हुआ था। वर्ष 1600 में आज के दिन ही ईस्ट

इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के तट पर पहुंचा था। वर्ष 1690 में आज के दिन ही जॉब चार नॉक कलकत्ता में आकर बसे थे। वर्ष 1690 में ही कलकत्ता शहर की स्थापना दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने नैमूर पर अपना कब्जा किया था और वर्ष 1969 में आज के दिन ही वराहगिरी वेंकट गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे। वर्ष 1995 में आज का ही वो दिन था जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 की आम जनता के लिए शुरुआत की गई थी। वर्ष 1995 में आज के दिन ही, और आपको बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 2004 में फिलिस्तीनियों को अहिंसा का पाठ पढ़ाने अरुण गांधी रामलला पहुंचे थे। और वर्ष 2008 में पेइचिंग ओलंपिक का आज के दिन समापन हुआ था, जिसमें चीन 51 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा था। और वर्ष 2009 में आज के दिन ही वेनेजुएला की स्टेफेनिया फर्नांडीज मिस यूनिवर्स 2009 चुनी गई थी। तो ये थी ऐसी प्रमुख घटनाएं जिनका इतिहास के पन्नों में आज के दिन जिक्र होता है। फिलहाल एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक आपके लिए, एंजॉय कीजिए इसे अपने अनुभव पर।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं वेंकट रामा रामलिंगम पिल्लई, जिन्हें नमक्कल कविज्ञार भी कहा जाता है। वे तमिल साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता की चेतना जताई थी। उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लिया और इसके कारण जेल भी गए। उन्हें 1971 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं DB देवधर, यानी कि दत्तात्रेय बालवंत देवधर को। उनकी भी आज पुण्यतिथि है। वे भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशासक थे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के शुरुआती दौर के प्रमुख खिलाड़ियों में अपनी भूमिका बनाई और अपनी तकनीकी बल्लेबाजी के लिए लगातार वो जाने गए। आपको बता दें कि DB देवधर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लंबे समय तक खेलते रहे और वहां उन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और बाद में भारत में क्रिकेट के विकास और उसके प्रशासन में योगदान दिया था। और उन्हीं के सम्मान में भारत में घरेलू क्रिकेट की एक जानी मानी प्रतियोगिता देवधर ट्रॉफी का नाम रखा गया है, जो कि भारत में क्रिकेट के प्रमुख घरेलू टूर्नामेंटों में से एक है। एक और खूबसूरत संगीत आपके लिए रेनबो पर।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है कल्याण जी वीर जी शाह की, जिनकी

0: प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी थी कल्याण जी आनंद जी के नाम से। वे भारतीय सिनेमा के एक प्रमुख संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने भाई आनंद जी वीर जी शाह के साथ मिलकर के हिंदी फिल्मों में अनेक लोकप्रिय और यादगार गीतों की रचना की। दोनों ने लगभग 5 दशक तक फिल्मी संगीत के क्षेत्र में काम किया। डॉन, सफर, मुकद्दर का सिकंदर, जंजीर और लावारिस जैसी फिल्मों के लिए संगीत दिया था। आपको बता दें, कल्याण जी आनंद जी को 1975 में फिल्म कोरा कागज के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं राजगुरु को, जिनकी आज जयंती है, यानी कि शिवराम हरि राजगुरु, भारत के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। आज उनकी जयंती है। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे और भगत सिंह तथा सुखदेव के निकट सहयोगी थे। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसके बाद उन पर जब मुकदमा चलाया गया तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव के साथ उन्हें फांसी की सजा दी गई। उनका साहस, देशभक्ति और बलिदान आज भी हमारे लिए स्मरणीय है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर कुछ और बातें।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: और शुद्ध आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं बसव राव राजगुरु को, उनकी आज जयंती है। वे प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और किराना घराने के प्रमुख कलाकार थे। उन्होंने बचपन से ही अपने पिता से संगीत की शिक्षा ली और बाद में पंचाक्षरी, गवई, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, उस्ताद वाहिद खां, उस्ताद लतीफ़ खां जैसे संगीतज्ञों के साथ प्रशिक्षण लिया। वे ख्याल, ठुमरी, गज़ल, नाट्य संगीत और वचन जैसे विभिन्न संगीत शैलियों में पारंगत थे और 8 से अधिक भाषाओं में गा सकते थे। उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। फिलहाल आपके लिए हम लेकर के आएंगे एक बहुत ही खूबसूरत संगीत। उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक, बने रहे रेनबो पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

0: और शो तो आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे हमारी खास पेशकश जो है बैडमिंटन से रिलेटेड, इसे आप जरूर सुनिएगा। उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर अपडेट लीजिए।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके हाथ कोई कीमती चीज थमा दी हो या बहुत जरूरी काम आपको सौंप दिया हो और कहा तुम संभाल लेना? अजीब सा गर्व होता है ना, और साथ में थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बीते हफ्ते हम भारतीय स्पोर्ट्स फैंस पर ऐसी ही एक जिम्मेदारी आ गई थी। जानते हैं ना कि नई दिल्ली का हमारा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन दिनों पूरे बैडमिंटन जगत के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि 19 साल बाद भारत को मौका मिला था BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का आयोजन करने का। मानो सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये बैडमिंटन का त्योहार था। हर शॉट में रोमांच था। हर रैली में धड़कन थी। हर पॉइंट के साथ जुनून सातवें आसमान पर चढ़ता दिखता। किसी जश्न को यादगार बनाने के लिए सिर्फ मैदान सजाना काफी नहीं होता। कोर्ट पर खिलाड़ी चाहिए हैं, उनके साथ खड़े फिजियो और सपोर्ट स्टाफ चाहिए हैं, पर्दे के पीछे आयोजन की बारीकियों को संभालते लोग चाहिए हैं, दुनिया भर से आए मेहमानों के लिए मेहमान नवाज चाहिए हैं, और सबसे बढ़कर स्टैंड्स में उमड़ते वो दर्शक जिनकी तालियों से खेल में जान पड़ती है। इन सब ने मिलकर इसे सिर्फ एक विश्व चैंपियनशिप नहीं रहने दिया, इसे बैडमिंटन का उत्सव बना दिया। शायद इसलिए तो टूर्नामेंट के खत्म होने पर BWF की प्रेसिडेंट खुनियंग लिस्वाड्रा टूल ने कहा,
1: What a week New Delhi has given us. India waited 17 years for this moment and India made every year count. The BWF World Championships 2026 have won praise from every corner of our sport. That praise belongs to people.
0: Badminton Association of India के सचिव संजय मिश्रा भी भावुक नजर आए।
2: हम ये सक्सेसफुली कंडक्ट करेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंट था, हमारी टीम को पूरा विश्वास था कि ये टूर्नामेंट हम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इतना सक्सेसफुल होगा, इतने अच्छे से होगा, शायद इसकी हमको भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये पिछले 6 महीने की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की साई की और BI की टीम की ये मेहनत था और इसका हमको ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है।
0: आकाशवाणी की टीम को भी इस जश्न का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और रेडियो के जरिए हमने कोशिश की कि इसकी हर धड़कन आप तक पहुंचे, लेकिन उस धड़कन की असली रफ्तार तो कोर्ट पर उतरे खिलाड़ी ही होते हैं। 56 देशों से करीब 400 खिलाड़ी शिरकत करते नजर आए, कई कीर्तिमान स्थापित हुए।

0: भारत का प्रदर्शन भले ही मिला जुला रहा हो, लेकिन कांस्य पदक जीतने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी का प्रदर्शन सालों तक याद रखा जाएगा। आइए अन्य विजेताओं से आपकी मुलाकात कराते हैं। शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बेमिसाल कहानी फ्रांस के खिलाड़ियों की रही। 2026 से पहले इस देश ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कोई मेडल नहीं जीता था, पर इस बार हेडलाइंस फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने ही बटोरी है। मेन सिंगल्स में खिताब जीता एलेक्स लैनियर ने, फ्रांस के वो खिलाड़ी जिनकी भावनाएं अक्सर चेहरे पर नहीं उतरती, लेकिन कोर्ट पर उनका खेल रोकना नामुमकिन था। विक्टर लाई और कोडाई नारोका जैसे नामचीन खिलाड़ियों को इन्होंने धूल चटाई और गले में स्वर्ण पदक पहन लिया।
1: I think it's definitely huge for France, definitely huge. Felt all the support about the fans. We also got all the support from all the staff behind. And I think definitely today was a day for French badminton and it was a day for the whole staff also. I mean, I didn't feel that I won for me today. Today it was for friends.
0: Women singles में दक्षिण कोरिया की आन से युंग का खिताब जीतना किसी के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन अचंभा इस बात का है कि टूर्नामेंट के दौरान चोट से जूझती हुई आन से युंग ने एक भी गेम यानी एक भी सेट नहीं हारा। सेमीफाइनल में चीन की वांगजी ही के खिलाफ भले ही 1 घंटे 1 मिनट का संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन वहां पर भी सीधे सेटों में युंग ने जीत हासिल की और एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि क्यों उन्हें ऑल टाइम ग्रेट माना जाता है। वो कहती है,
2: There are a lot of people is supporting me. I want to thank all of my fans supporting me. This keeps me going and just giving me energy. So I'm so excited and very enjoy. I think it's support me. Yeah, cheering on me. This is my motivation. And I there are a lot of people, my team coach, head coach, my family, all fans, trainer, all supporting me. This is my keep going.
0: Men's doubles में चीन से आने वाली लियांग और वांग की जोड़ी ने मानो पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में मिली हार का बदला लिया। सामने 2 साल पहले ओलंपिक चैंपियन बनी एरन चिया और सोवी यिक की मलेशियाई जोड़ी थी, जिनको फाइनल में 2 सीधे सेटों में मात देकर चीन की इस जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
3: And now, our men's doubles world champion 2026 from China, Liang Weiqing and Wong Cheng.
0: वुमेन्स डबल्स में एक बार फिर दक्षिण कोरिया चमका। बेक और ली की जोड़ी ने चीन की टान और लियू की वर्ल्ड रैंक नंबर 1 जोड़ी को फाइनल में 2 सीधे सेटों में मात दी, और इस जीत के बाद भारतीय समर्थकों की हौसला अफजाई को भी अपने इस जोश भरे प्रदर्शन का एक कारण बताया।
4: She's saying that we are highly, you know, happy that after 31 years that our country has won a medal. They are very excited about the Delhi crowd, that while playing each and every match, they were really excited that the crowd were cheering for them. And as a player, it's a really great honor for them.
0: मिक्स डबल्स में भी इतिहास रचा गया। टॉम गिक्वेल और डैफनी डेलरू की जोड़ी ने फाइनल में एक बड़ा उलटफेर करते हुए चीन से आने वाली फेंग और हुआंग की जोड़ी को मात दी और बन गए विश्व विजेता।
5: Yeah, we are really, really happy, really proud. It's amazing. Like 10 years ago, no French player can thought about that. So it's amazing. We are really proud.
0: इसी के साथ इस विश्व चैंपियनशिप में फ्रांस ने 2 गोल्ड मेडल जीते। उनकी कोच टीना ने बताया कि कैसे जनवरी में हुए इंडिया ओपन का अनुभव उनके सभी खिलाड़ियों के काम आया।
6: I'm very, very happy, of course, and happy that the work that we've been doing is paying off on the right time. We had the World Championship as a number one goal for the year. We worked specifically on playing in this hall because we had already tested it in January. So we worked on how to improve the areas that we needed to be better in.
0: अब गौर करते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। शुरुआत ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी से, जो सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी। विश्व रैंकिंग में 39वें पायदान वाली इस जोड़ी से उम्मीदें ठीक ठाक प्रदर्शन की थी, लेकिन कोर्ट पर जिद, जुनून और जज्बे से भरा खेल दिखाते हुए इस जोड़ी ने वुमेन्स डबल्स में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही एक कीर्तिमान भी स्थापित

0: हुआ। 2011 से हर साल BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कम से कम एक पदक जीतने वाले अब सिर्फ दो देश हैं, बैडमिंटन का पावर हाउस चीन और दूसरा भारत। इस जीत पर और इसी हफ्ते अर्जुन अवार्ड मिलने की घोषणा पर ट्रीसा कहती हैं,
1: बीइंग इनटू दैट क्लब आई फील लाइक सो हैप्पी, देयर इज अ लॉट ऑफ जर्नी वी हैव इन फ्यूचर, आई फील लाइक दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, वी जस्ट नीड्स टू टेक दिस एज अ पॉजिटिव एंड इन अ कॉन्फिडेंस वे, आई फील लाइक दिस ऑल मोमेंट्स एंड गेटिंग दिस मेडल एंड इवन दैट अर्जुन अवार्ड दिस वीक व्हेन दे अनाउंस्ड, आई फील लाइक दैट ऑल्सो गिव अस सम अदर बूस्ट इन दिस टूर्नामेंट।
0: इसी श्रेणी में अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही काविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंह की जोड़ी भी थी, जिन्होंने पहले राउंड में दमखम दिखाते हुए अपना मुकाबला सीधे सेटों में जीता था, लेकिन यूं कहें कि ड्रॉ ने उनका साथ नहीं दिया। राउंड ऑफ 32 में सामना हुआ बल्गेरिया की मजबूत गैब्रियला स्टोविया और स्टेफानी स्टोविया की जोड़ी से, जिनके विरुद्ध उनको हार मिली।
2: इट वॉज प्रीटी ग्रेट एंड इंडिया में हो रहा है, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है एंड वी हैड दैट प्रेशर, यू नो लाइक एवरीबॉडी हैज दैट होप इन अस दैट यू नो यू शुड विन एट लीस्ट फ्यू मैचेस एंड व्हेन वी केम ऑन कोर्ट वी वर नर्वस, बट देन व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग वी केम इनटू द मोमेंटम, वी फॉरगॉट एवरीथिंग एंड वी वर देयर।
0: मेन सिंगल्स में चर्चा का केंद्र लक्ष्य सेन होने वाले थे, लेकिन पहले ही दिन डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड रैंक नंबर 1 शी यू ची को हराने के बाद आयुष शेट्टी भारतीय बैडमिंटन के पोस्टर बॉय बन गए।
3: प्लेइंग वर्ल्ड नंबर 1 इज नेवर इजी, इट्स अ फर्स्ट राउंड फॉर मी एज वेल, आई वुड से इवन आई हैव नॉट सेटल्ड इन, बट आई थिंक इट वाज अ टफ वन फॉर बोथ ऑफ अस एंड देयर वर नो बी मोमेंट्स एज आई सेड, बट या हैप्पी टू पुल इट ऑफ।
0: उनके शुरुआती परिणाम मानो किसी सुनहरे सपने जैसे थे, लेकिन फिर राउंड ऑफ 16 में आकर उनका ख्वाब चकनाचूर हुआ जब इंडोनेशिया के आलवी फरहान के खिलाफ उनको हार मिली।
3: डेफिनेटली अ लॉट टू लर्न, स्पेशली दिस मैच टफ वन टू डाइजेस्ट एज वेल, बट वील गो बैक एनालाइज एंड या आई थिंक लॉट ऑफ पॉजिटिव्स एज वेल फ्रॉम दिस टूर्नामेंट, बट आई थिंक डेफिनेटली लॉट टू लर्न एंड लॉन्ग वे टू गो।
0: दूसरी तरफ लक्ष्य सेन राउंड ऑफ 32 में USA के गैरेट टैन से हारे, जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। वुमेन सिंगल्स में जहां टीनेज सेंसेशन उन्नति हुड्डा का सफर राउंड ऑफ 32 में खत्म हुआ, तो वहीं पीवी सिंधु ने मानो घड़ी की सुइयां पीछे ले जाते हुए अपने पहले दोनों मुकाबलों को एक तरफा अंदाज में जीता, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल में उनके सामने चीन की वांग जी यी की कड़ी चुनौती थी, जिसको सिंधु पार ना पा सकी।
4: Sad about it. I should have converted that. That's how it is. That's how sport is. You lose a lot, you win a lot. I mean, when you lose, you need to deal with it and bounce back stronger from your mistakes. I think that's how it will be and it should be. थोड़ा और पेशेंस रहना था मेरे साइड से, बहुत अच्छा चल रहा था गेम 1, गेम 2 और गेम 3 भी बहुत इक्वल चल रहा था। The last 3 points just changed the game is what I felt. I should have been a little patient.
0: Men's doubles में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा खरुनन की जोड़ी राउंड ऑफ 32 के आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन चोट के बाद वापसी कर रहे गोल्डन बॉयज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी सराहनीय प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। वहां इवेंचुअल चैंपियंस लियांग और वांग ने उन्हें मात दी।
5: वी प्लेड डिसेंट, आई वुडंट से वी प्लेड बैड, बट जहां पर हमको लगा कि हमें पॉइंट मिलेगा, मिल नहीं पाया क्योंकि दे वर प्लेइंग क्वाइट अ सॉलिड गेम, अ लॉट ऑफ द पॉइंट हमें लगा फिनिश हो जाएगा, वो फिनिश हुई और काफी अच्छे से उन लोग उसको ऑफेंस में कन्वर्ट कर रहे थे। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट आई थिंक दैट इज हाउ स्पोर्ट इज।
0: मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका गाड़े एवं आसित सूर्या और अमृता प्रमुथेश के साथ भारत की तीन जोड़ियां हिस्सा ले रही थी, लेकिन केवल ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो ही राउंड ऑफ 16 तक पहुंच सके, जहां एक बार फिर भारत के आड़े चीन आ गया। कुल मिलाकर कई सकारात्मक संकेत देखने को मिले, और बताते हैं पुलेला गोपीचंद।
6: थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि थोड़े से क्लोज मैचेस हम लोग ने हारे हैं। विमेन सिंगल्स में दोनों मैच हम लोग काफी क्लोज हारे हैं, और मेन सिंगल्स में भी आयुष का पहला दिन बहुत ही अच्छा था, और द थर्ड डे वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिसअपॉइंट, बट ओवरऑल डिसेंट इन दैट सेंस, आई वुडंट बी टू वरीड अबाउट इट। सम डेज दीस थिंग्स डू हैपन, बट द नेक्स्ट टाइम अराउंड आई एम होपिंग दैट, और द एशियन गेम्स आई एम होपिंग फॉर बेटर।
0: कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनके लिए ये सफर सिर्फ कोर्ट तक नहीं था, ये अपनी जड़ों तक लौटने का एक खूबसूरत बहाना था। दुनिया के अलग अलग कोनों में पले खिलाड़ी इस बार सिर्फ भारत खेलने नहीं आए थे, शायद अपनी मिट्टी को थोड़ा और करीब से महसूस करने आए थे। जैसे UAE का प्रतिनिधित्व करने वाली खान बहने माइशा और ताबिया।
7: तो मेरी मम्मी मुंबई से, पापा मध्य प्रदेश से, तो वो लोग जॉब के लिए UAE में आए थे, तो हम लोग बॉर्न ब्रॉट अप UAE में है, स्कूलिंग सब उधर ही करा है, लेकिन अभी थोड़े साल पहले UAE को रिप्रेजेंट करना शुरू करा है। इससे पहले

0: स्टेट नेशनल सब इंडिया में एमपी की तरफ से खेलते थे।
1: उसी देश के झंडे के नीचे वुमेन सिंगल्स में खेल रही थी प्राकृति भारत।
2: आई एम फ्रॉम तमिलनाडु बट आई वाज सेटल्ड इन द गल्फ। आई लिव इन दुबई राइट नाउ एंड आई हैव जॉइंड द नेशनल टीम ओवर देयर एंड आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ ईयर एंड अ हाफ नाउ रिप्रेजेंटिंग यूएई।
1: अलवर में जन्मी इशिका जायसवाल ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई भी किया।
3: सो आई एम फ्रॉम अलवर राजस्थान एंड आई वाज बोर्न हियर सो आई एम स्टिल एन इंडियन पासपोर्ट। या आई फ्रीक्वेंटली कम हियर ऑल माय फैमिली इज हियर। देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियंस इन आवर एकेडमी एंड बट नाउ यू विल बी सीइंग अ लॉट मोर इंडियन।
1: मेडल आए, कुछ उम्मीदें टूटी और कुछ नई उम्मीदें जन्मी, लेकिन सबसे बड़ी जीत शायद ये रही कि बैडमिंटन ने एक बार फिर सबको एक साथ ला खड़ा किया। भारत अभी इस खेल की महाशक्ति नहीं, मगर मंजिल की ओर बढ़ते कदम साफ दिखाई दे रहे हैं, और जब कदम बढ़ते रहें तो सपने भी बड़े होते रहते हैं। इन सपनों के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से आप सभी का दिल से आभार। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2026 के हर दिन की डिटेल्ड रिपोर्ट आप हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी के साथ मैं दर्पण टिकिया।
4: शोर मचा ले ओ दिल्ली जब शटल हवा में उछले यहाँ। शोर मचा ले ओ दिल्ली जब शटल हवा में उछले यहाँ।
5: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
6: Himadas has done it. India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series.
7: Sports Pulse.
5: तो स्पोर्ट्स के लगातार डोज के बाद अब कार्यक्रम का नाम है स्पोर्ट्स पल्स। नमस्कार, मेरा नाम है कविता। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी आपने स्पोर्ट्स पर ही एक बहुत अच्छी अपडेट सुनी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप पर, जिसको हमारे सहयोगी दर्पण लेकर के आए थे। और अब मैं कविता आपको बताऊंगी हफ्ते भर की खेल गतिविधियों के बारे में, क्योंकि कार्यक्रम है स्पोर्ट्स पल्स, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं उन खेल खबरों से जो सप्ताह भर में घटित हुई होती हैं। तो चलिए सबसे पहले जिस खबर के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे वो जुड़ी है FIH हॉकी वर्ल्ड कप से, क्योंकि इंडिया की जो टीम है, जहां वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में इंडियन खिलाड़ी जो है वो जद्दोजहद कर रहे थे मेडल के लिए, ऐसे ही भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं हॉकी वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ पोजीशन पाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल खेले गए मुकाबलों से, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपना मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ किसी भी गोल के साथ नहीं जीता, और ये जो मुकाबला है दोनों ही टीमों के बीच में ड्रॉ हो गया। जी हाँ, भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अब खत्म हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर खत्म हुआ, और इसी के साथ भारत की आखिरी चार में जगह बनाने की कोशिश भी थम गई। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत जरूरी था, लेकिन दोनों टीमों के बीच कड़े मुकाबले में कोई भी गोल नहीं हो पाया। इस ड्रॉ के बाद भारत चीन और ऑस्ट्रेलिया के दो दो अंक रहे, हालांकि बेहतर गोल करने के रिकॉर्ड के चलते ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों का गोल अंतर -2 रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 गोल किए जबकि भारत के खाते में सिर्फ 2 गोल रहे। भारत ने अपने दोनों गोल चीन के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ किए थे, वहीं नीदरलैंड्स के खिलाफ भारत को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले पूल ई के अन्य मुकाबलों में नीदरलैंड्स ने चीन को 4-1 से हराकर ग्रुप में अपना दबदबा कायम रखा। नीदरलैंड्स ने तीनों मैच जीतकर पूल में शीर्ष स्थान हासिल किया। मैच के बाद भारतीय कप्तान सलीमा टेटे थोड़ी निराश नजर आई, और उन्होंने कहा कि टीम ने काफी अच्छे मौके बनाए लेकिन उन्हें गोल में तब्दील नहीं कर पाई, और अब भारत की नजरें जो हैं वो 5वें स्थान के लिए होने वाले क्लासिफिकेशन मैच पर होंगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। तो भारतीय महिला टीम का जो ये सपना था यहाँ पर मेडल लाने का, अभी फिलहाल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन क्लासिफिकेशन जो 5th और 6th पोजीशन के लिए जो मुकाबले होने हैं वो अभी बाकी हैं। इसके साथ साथ उम्मीदें बरकरार हैं हमारी पुरुषों की टीम के साथ, क्योंकि उनका जो मुकाबला है वो आज खेला जाना है रात को 6:15 पर, और अर्जेंटीना वर्सेस इंडिया आज पूल ई का पुरुषों का मुकाबला है। तो ये बहुत ही रोमांचक एक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि फिलहाल भारतीय पुरुष हॉकी टीम अगर विश्व कप सेमीफाइनल की दौड़ में जो है वो लगभग बाहर होने की कगार पर ही है। तो ऐसे में जो आज ये मुकाबला है वो करो या मरो

0: उनके भी उनको भी यहाँ पर जो एक हार है वो उम्मीद करनी होगी कि बड़े अंतर से दुआ करनी होगी कि हार जाए। भारत के लिए अर्जेंटीना को हराना आसान नहीं होगा, जिसने उसे इसी साल FIH प्रो लीग में राउरकेला में 8-0 से और 4-2 से हराया। इसके अलावा इंग्लैंड के विरुद्ध भी पिछले मैच में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन करके भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसे में भारत अगर 2 गोल से अधिक के अंतर से जीत दर्ज करता है तो ही अर्जेंटीना की टीम बाहर हो सकती है। अर्जेंटीना ने अभी तक 4 गोल स्कोर किए हैं जबकि भारत के 3 गोल हैं। इसके अलावा भारतीय टीम को नीदरलैंड्स की इंग्लैंड पर बड़ी जीत का भी इंतजार होगा। इंग्लैंड के खाते में 5 गोल हैं, लिहाजा भारत को इंग्लैंड से कम अभी जो है वो 4 गोल के अंतर की जरूरत है। तो देखना होगा कि अभी भारतीय हॉकी टीम आज जब ये मुकाबला खेलेगी तो किस तरह का प्रदर्शन यहां पर हॉकी में पुरुषों की टीम कर पाएगी।
1: इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
0: चलिए अब आपको हम लिए चलते हैं यहां पर फुटबॉल के मैदान पर, जहां पर डूरन कप 2026 जो है वो खेला जा रहा था। और डूरन कप में 2026 का जो खिताब है वो ईस्ट बंगाल FC ने अपने नाम कर लिया। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती मैदान में खेले गए फाइनल में ईस्ट बंगाल ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी मोहन बागान सुपर जॉइंट्स को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने 17वां डूरन कप खिताब जीतकर मोहन बागान के साथ प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम का दर्जा साझा कर लिया। ऐतिहासिक मुकाबला टूर्नामेंट के 135वें संस्करण का आयोजन 25 जुलाई से 23 अगस्त तक हुआ। डूरन कप 2026 में 24 टीमों ने हिस्सा लिया जिन्हें 6 समूहों में बांटा गया था। टूर्नामेंट के दौरान कोलकाता, रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में कुल 43 मुकाबले खेले गए। 6 ग्रुप विजेता और 2 सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान की टीमों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में ईस्ट बंगाल और मोहन बागान सुपर जॉइंट्स आमने सामने थे। मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4-1 से जीत दर्ज की और डूरन कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ईस्ट बंगाल के लिए यह खास उपलब्धि है क्योंकि यह 2004 के बाद उसका पहला डूरन कप खिताब है। 2004 में भी ईस्ट बंगाल ने फाइनल में मोहन बागान को 2-1 से हराकर ट्रॉफी जीती थी। इस बार के टूर्नामेंट में इंडियन सुपर लीग, इंडियन फुटबॉल लीग, आई लीग 2, भारतीय सशस्त्र बलों और श्रीलंका की डिफेंडर्स FC की टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबले कोलकाता, रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी के 6 स्थानों पर आयोजित किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित डूरन कप की शुरुआत 1888 में हुई थी और ये एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। ये टूर्नामेंट भारतीय घरेलू फुटबॉल सत्र के पारंपरिक उद्घाटन समारोह के तौर पर भी जाना जाता है। वहीं टूर्नामेंट के शीर्ष गोल स्कोरर रहे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के अलाउद्दीन अजराई, उन्होंने डूरन कप 2026 में कुल 9 गोल किए। मोरक्को के इस फॉरवर्ड ने ग्रुप चरण में 6 गोल किए और इसके बाद शिलांग लाजोंग FC के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की 5-2 की क्वार्टर फाइनल जीत में भी हैट्रिक लगाई। तो इस बार डूरन कप 2026 का समापन ईस्ट बंगाल की शानदार जीत के साथ हुआ।
1: इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
0: चलिए अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट में भी हर दिन कुछ ना कुछ चलता है और क्रिकेट से जुड़ी है हम सभी की बहुत सारी उम्मीदें। सो फिलहाल अभी अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में 23 से 17 अगस्त में खेला जा रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच, जो कि अभी भारतीय टीम जो है खेल रही है। और अगर कल के दिन यानी 23 तारीख से शुरू हुआ तो अगर पहले दिन की बात करें तो फिलहाल भारतीय जो टीम है उन्होंने 5 विकेट पर 300 रन स्टंप तक बना लिए थे। भारत इस टेस्ट श्रृंखला में ऑलरेडी 1-0 से आगे है और दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम ने पहली इनिंग में 5 विकेट पर 300 रन बना लिए थे और देवदत्त पडिक्कल ने सर्वाधिक 117 रन बनाए तो कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतक जो है वो यहां पर लगाया। फिलहाल ध्रुव जुरेल और सारांश जैन क्रीज पर नाबाद हैं इस वक्त। और अगर हम बात करें यहां पर KL राहुल की तो उन्होंने 18 रन बनाए। इसके साथ साथ ऋषभ पंत जो हैं उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए। रविंद्र जडेजा उन्होंने 43 रन की यहां पर अपनी जो पारी है वो खेली और इसके साथ ही भारत अभी एक जो अच्छी पोजीशन है उसके अंदर भारतीय टीम यहां पहुंच चुकी है, क्योंकि भारत ऑलरेडी

0: 300 रन बना चुका है 85 ओवर्स में फर्स्ट इनिंग अटेम्प्ट तक, क्योंकि भारतीय टीम ने टॉस जीता था और टॉस जीत कर यहाँ पर उन्होंने बल्लेबाजी ली थी। और इसके साथ साथ ये जो ग्राउंड की कंडीशंस हैं, इसमें भी जो टीम दूसरी में मतलब दूसरी पारी में जो टीम यहाँ पर बैटिंग करती है उनके लिए जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहती हैं। ऐसे में भारतीय टीम के पास अभी फ़िलहाल मौका है कि वो यहाँ पर कुछ अच्छा करे, और अच्छे करने के साथ साथ यहाँ पर जो अपनी पोजीशन है उसे और स्ट्रांग करके जो ये दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है इसमें भी जीत दर्ज करके श्रीलंका को क्लीन स्वीप इस पूरी ही इनिंग में किया जाए और एक जो रिकॉर्ड है इंडिया के पास हो जाए और अपनी पोजीशन जो है इंडिया आगे के लिए स्ट्रांग कर ले। तो फिलहाल देखना होगा कि आज जब मैच खेला जाएगा दूसरे दिन का तो भारत किस तरह की पोजीशन में और किस तरह की कंडीशन में दोनों ही जो बैट्समैन हैं भारत के फिलहाल जुरेल और सारांश क्रीज पर कितने रन अर्जित करते हैं।
1: इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
0: चलिए अब बात कर लेते हैं BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की। हालांकि आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी दर्पण टिकिया के साथ पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है BWF पर सुनी, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि BWF में भी भारतीय जो शटलर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और कई सारे जो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो निखर के आई। फिलहाल तो यहाँ पर भारतीय महिला जोड़ी ने त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने की कामयाबी हासिल की और इस जोड़ी ने एक कीर्तिमान भी बना दिया, क्योंकि भारत के लिए एक लंबा वक्त था जिसके बाद ये जो मेडल है ये आया इस चैंपियनशिप में। और एक उम्मीद जो है भारतीय शटलर्स ने यहाँ पर जितने भी फैंस मौजूद थे उनके लिए जगा दी, जिस तरीके से पूरा IGI स्टेडियम दर्शकों की भीड़ से भरा होता था। हर एक खिलाड़ी के लिए यहाँ पर जो चीयर हैं वो सारे के सारे दर्शक करते हुए नजर आते थे। और फिलहाल अगर हम इसके आंकड़े और इसके रिजल्ट कुछ आपको बताएं तो फिलहाल फाइनल के रिजल्ट जो है पुरुष एकल में एलेक्स लानियर ने कोडाई नाराओका को 21-11 21-11 से हराया। महिला एकल में आन से यंग कोरिया ने अकाने यामागुची जो कि जापान की खिलाड़ी है उन्हें 21-17 21-14 से हराया। पुरुष युगल में लियांग वेई केंग और चीन के आरोन चिया सो वी यिक को 21-16 21-17 से हराया। महिला युगल में बाक हान ना ली सो ही ने लियू शेंग शू तांतिंग को 21-15 21-15 से हराया। मिश्रित युगल में थॉम गिकेल डेल्फिन डेल्यूर ने फेंग यान झे हुआंग डोंगपिंग को 22-20 19-21 21-15 से हराया। तो इस तरह BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 का जो समापन है फ्रांस और कोरिया के दो दो स्वर्ण पदकों के साथ और भारत की त्रिशा और गायत्री की कांस्य पदक उपलब्धि के साथ जो है वो यहां पर हो गया है। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि भारतीय जो ये जोड़ी है इसमें अभी खेल पुरस्कारों की जो घोषणा हुई थी उसमें हमारी जो गायत्री हैं उनको अर्जुन पुरस्कार के लिए भी यहां पर नॉमिनेट किया गया और अर्जुन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो भारतीय जो खिलाड़ी हैं लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उम्मीद जो है दे रहे हैं सभी फैंस को यहाँ पे। और अब क्योंकि जो कार्यक्रम का समय है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि अभी फिलहाल जो लीग खेली जा रही है लुसाने डायमंड लीग, उसमें भारतीय जो जैवलिन थ्रोअर हैं हमारे नीरज चोपड़ा जिस पर हमेशा नजरें हम सबकी रहती हैं उन्होंने क्या किया है, तो आपको बता दूं कि भारतीय भाला फेंक के दिग्गज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में सीजन के सर्वश्रेष्ठ 88.05 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, जो कि श्रीलंका के रुमेश सरंगा पथिरागा ने सिर्फ 9 सेंटीमीटर उनसे पीछे रह गए वो, जिन्होंने 88.14 मीटर के साथ जीत हासिल की। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता का 88.05 मीटर का थ्रो 2026 सीजन की मुश्किल शुरुआत के बाद 88 मीटर की रेंज में एक मजबूत वापसी का प्रतीक बना। पाथिराज ने अपने तीसरे प्रयास में बढ़त हासिल कर ली और शेष राउंड में दोनों में से कोई भी एथलीट अपने प्रदर्शन में सुधार जो है वो यहां पर नहीं कर पाए। और इसी के साथ साथ जो एक और न्यूज है वो ये है कि सिलेसिया डायमंड लीग में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ ने एथलेटिक्स इतिहास में एक जो नया कीर्तिमान है वो स्थापित कर दिया है, क्योंकि यहां पर 9 खिलाड़ियों ने 10 सेकंड से कम समय जो है वो दर्ज किया और पहली बार है जब किसी ही एक दौड़ में 9 खिलाड़ियों ने इस परिस्थिति में 10 सेकंड की बाधा को पार किया हो। दौड़ में मौजूदा विश्व

0: चैंपियन ओब्लिक सेविले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9.83 सेकंड के समय के साथ जीत हासिल की। उनके पीछे अमेरिका के केनेथ बेथनारेक ने 9.87 सेकंड का समय निकालकर अपनी जो दौड़ है वो पूरी की। और अब ऐसे में क्योंकि जो समय है वो ऑलरेडी इस कार्यक्रम का समाप्ति की ओर है और हम आपको लगातार जो है खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियां हर सोमवार इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनवाते रहेंगे। फिलहाल स्पोर्ट्स पल्स कार्यक्रम में इतना ही। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है
2: Tampere, Hema Das has done it. India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series.
3: Sports Pulse.
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

8 बज चुके हैं। पेश है एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसनूरु गांव का दौरा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 थाई, 3 बांग्लादेशी, 4 नाइजीरियाई, 1 युगांडा और 1 गिनी नागरिक शामिल है। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनीजा ओपन का खिताब जीता। भारत आज कोलंबो में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी के 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। और अंत में मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। ये थे एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

बात तो है आज की मंडे मॉर्निंग में। Hey listeners, good morning and welcome back। आकाशवाणी रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं हमें और शो है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद मी ज्योति। और बिल्कुल एफएम रेनबो के साथ होते होते कोई तन्हा कैसे हो सकता है। 24/7 आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और देश के किसी भी हिस्से से, दुनिया के किसी भी कोने से आप हमें सुन सकते हैं। और आज है मंडे, और जो मंडे है ना वो सिर्फ एक कैलेंडर का दिन नहीं होता है, ये मन को फिर से रीसेट करने का दिन होता है। तो चलिए आपके मन को फिर से रीसेट करते हैं, मंडे मॉर्निंग में जोश भरते हैं और गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर के सफर को आगे बढ़ाते हैं एक और खूबसूरत से गाने के साथ। और फिर आज तो मौसम भी साथ दे रहा है।

दिल्ली NCR का मौसम कैसे रहने वाला है वो तो मैं आपको बता सकती हूँ। वैसे जो मौसम है ना, ये लाइफ की तरह है, कभी भी किसी भी तरह करवट ले लेता है मगर असली मज़ा और ताकत इससे भिड़ने में नहीं है, बल्कि इसे इंजॉय करने में है और सरेंडर करने में है। तो इसलिए आज का मौसम आपको बता देती हूँ। जैसा भी मौसम है, अपनी पूरी तैयारी के साथ बाहर निकलिएगा। और आज 24 अगस्त अगर बात करूँ तो दिल्ली NCR में मौसम बादलों वाला रहेगा। अभी भी मौसम काफ़ी प्लेजेंट है जहाँ मैं हूँ और सेंट्रल दिल्ली में हम हैं, और यहाँ का मौसम तो अच्छा है, आपके आसपास का भी अच्छा होगा। दोपहर तक हल्की बारिश हो सकती है कहीं कहीं जगह पर, कहीं कहीं थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो मिनिमम होगा 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम रह सकता है 34 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच। मगर हाँ, जैसे मैंने कहा कि मौसम बारिश कहीं कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कहीं कम होगी, मगर छाता लेकर निकलने में जाने में कुछ जाता है क्या? अपने साथ कैरी कीजिएगा छाता।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

यस लिसनर्स, वेलकम बैक. आपका फिर से स्वागत करती हूँ. आज मंडे मॉर्निंग है और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में ज्योति आपके साथ है. और आपको पता है कि आप मेट्रो स्टेशन में, मतलब मेट्रो नेटवर्क में, आप एक सर्टेन ड्यूरेशन तक ही रह सकते हैं. हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो यात्रा है वो शॉर्ट डिस्टेंस की है या लॉन्ग डिस्टेंस की है. मगर स्टिल अगर आप एक ही स्टेशन से घुस के दूसरे स्टेशन से निकल जाते हैं, निकलना चाहते हैं, तो तब भी आपके पास एक लिमिटेड ड्यूरेशन है जिसमें आप उसमें रह सकते हैं. और इन्हीं गतिविधियों को पकड़ने के लिए एनालॉग कैमराज लगाए गए हैं बहुत सारे स्टेशन पर, जिसकी जानकारी आपको दूंगी इस गाने के बाद. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ज्योति के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो.

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर में ज्योति के साथ। अब सुनिए एक और अपडेट जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेट्रो में घुसते हैं और उस नेटवर्क में घूमते रहते हैं, और मगर देर इज अ टाइम लिमिट, देर इज अ ड्यूरेशन, फिक्स ड्यूरेशन, जिसके दौरान ही आप उसके अंदर रह सकते हैं। तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अगर आपने शॉर्ट डिस्टेंस करना है या फिर आप एक स्टेशन से घुस के उसी स्टेशन से एग्जिट कर रहे हैं तो आप 20 मिनट से ज़्यादा अलाउड नहीं है अंदर। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट ट्रिप लेते हैं, यानी कि सपोज आप 9 स्टेशन तक की यात्रा करते हैं, तो आप 65 मिनट्स तक अंदर रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 14 स्टेशंस की जर्नी करते हैं तो आप 100 मिनट्स या 100 मिनट्स तक आप अंदर रह सकते हैं, और इससे लंबी यात्रा अगर आप करते हैं तो आप 3 घंटे तक उस मेट्रो नेटवर्क में रह सकते हैं। मगर अगर आप इससे ज़्यादा रहेंगे तो संदिग्ध माने जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी गतिविधि रोकने के लिए और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एक लिमिटेड ड्यूरेशन के दौरान ही आप मेट्रो के अंदर रह सकते हैं। ऐसे ही आप उसके अंदर मतलब बैठे नहीं रह सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं अगर आपने यात्रा नहीं करनी है तो। और ऐसा अक्सर कुछ लोग करते थे, वहाँ पर वेटिंग करते थे

और वहीं पे बैठ के बात करते हैं, फिर उसी स्टेशन से एग्जिट कर जाते हैं, और इस वजह से भीड़ तो बढ़ती ही है। और इसीलिए मेट्रो ने, दिल्ली मेट्रो ने कुछ ऐसे नए एनालॉग कैमरास लगाए हैं 76 स्टेशन पर, और जो इसकी निगरानी करेंगे, जैसे कि बहुत सारी ऐसी ऐसे इवेंट्स हैं जिनसे हम बच सकते हैं। और ये जो नए कैमरे हैं, ये ट्रैक पर किसी व्यक्ति के आने अगर कोई आ जाता है, या कोई लावारिस वस्तु मिलती है, या ज़्यादा भीड़ है, लंबी क्यूज़ हैं, या कोई कैमरे से छेड़छाड़ कर रहा है, या किसी व्यक्ति के लंबे समय तक एक ही जगह रहने और ट्रेन नहीं होने पर भी ट्रैक पार करने जैसी गतिविधियां जो होती हैं, उसको ये कैमरास जो हैं वो पहचान लेंगे। सो ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी है, आपकी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेट्रो नेटवर्क में इस तरह की कोई गतिविधि ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अब ये कैमरास जो हैं वो आपको पकड़ लेंगे और फिर आपको फाइन होगा। तो बी रिस्पॉन्सिबल। और एक और बात, मेट्रो में घुसने से पहले जो यात्री अंदर हैं उन्हें बाहर आने का मौका दें। सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो, एक और खूबसूरत सा गाना, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं? इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

एक और बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है स्टूडेंट्स के लिए. आज 24 अगस्त है और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज नीट पीजी 2026 एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं. आज के दिन अवेलेबल करा दिए जाएंगे, इनफैक्ट हो गए होंगे. तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप लॉग इन कर सकते हैं जो कि है natbord.edu.in. मैं रिपीट कर रही हूँ, natbord.edu.in पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं. आपकी जो भी लॉगिन डिटेल्स हैं उन्हें आप पंच करेंगे तो आपको नीट पीजी हॉल टिकट 2026 मिल जाएगा. उसे आप डाउनलोड कर लीजिए. एग्जाम 30 अगस्त को है. सो अपनी तैयारी पूरी रखिए और आज ही टाइम पर ये जो आज 24 अगस्त को जारी किए जाएंगे तो आप अपना टाइम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए. और इस एक और खूबसूरत से गाने के बाद आपको बताऊंगी कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने एक नया इतिहास रचा है. पहली बार रोबोटिक टेक्निक से एक सफल घुटना प्रत्यारोपण किया गया है. उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बस बने रहिए मेरे साथ. गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में.

मैं बताती हूँ क्या करना है, बस आकाशवाणी रेनबो सुनना है हर घंटे, क्योंकि हर घंटे आपको मिलती है नई नई जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेट्रो की एक जानकारी दी थी कि आप एक लिमिटेड ड्यूरेशन तक ही उसके अंदर रह सकते हैं, तो हमारी एक लिसनर ने अभी मैसेज करके बोला है कि लेकिन जो गलती से मेट्रो स्टेशन में रह जाते हैं या गलती से गलत मेट्रो लेकर कहीं और पहुँच जाते हैं, उनके लिए सही नहीं है, यही मंजिल पर जाने से पहले ही बाहर कर देंगे। तो वैसे बाहर तो आपको कोई नहीं करेगा, मगर हाँ, अगर आपने एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा वहाँ पर टाइम स्पेंड किया फॉर एनी रीज़न, चाहे जानबूझकर चाहे गलती से, तो आपको बाहर तो नहीं निकालेंगे, रिस्पेक्टफुली बाहर ज़रूर एग्जिट करवाएंगे, मगर हाँ, आपसे कुछ फ़ाइन लिया जाएगा इस वजह से, क्योंकि हो सकता है आपके इंटेंशन गलत ना हो, मगर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जिनके इंटेंशन गलत होते हैं, वो मेट्रो में जानबूझकर ज़्यादा समय बिताते हैं, रेकी करते हैं, और फिर ऐसी इवेंट्स होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जो अनप्रेजेंट होती हैं और जो हम नहीं चाहते हैं। तो बस सारी जानकारी के लिए, सारी अपडेट्स के लिए, हर अवेयरनेस के लिए आपको बस सुनते रहना है आकाशवाणी रेनबो 24/7। और जैसा कि आपको मैंने इस गाने से पहले बताया था कि सफदरजंग अस्पताल में पहली बार रोबोट असिस्टेड टोटल नी रिप्लेसमेंट किया गया है, और जिनका किया गया है वो 75 वर्ष के हैं, और जो वो मरीज थे वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, और उनकी ये सर्जरी हुई है। तो इसी के साथ रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी की शुरुआत हुई है, ये एक नया इतिहास है, नया अपडेट है, और ये एक अच्छी बात है। तो अगर आगे से, मतलब हमारे दिल्ली एनसीआर के लोग या बाहर से भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे इतने वेल इक्विप्ड इक्विपमेंट्स हैं और रोबोटिक सर्जरीज अब होनी शुरू हो गई हैं, तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है, आपके घर में किसी के साथ, तो आप ज़रूर आ सकते हैं, और इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सहायता से आप इजीली कोई भी ट्रांस

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

लिसनर्स, वेलकम बैक। आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, 8:55 और गुड मॉर्निंग डेली एनसीएन में मेरे जाने का समय बहुत नजदीक है, तो बस आपको जल्दी से बता दूं कि आज पूरा दिन रेनबो पर कौन कौन सी जानकारियां और कौन कौन से शोज आपके साथ रहेंगे। तो 9 बजे अभी आपके साथ जुड़ेंगे निखिल लेकर दिल के तराने, गाने नए पुराने। उसके बाद 10:02 से निहारिका आपके साथ जुड़ेंगे लेकर मैचलेस म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक शो है ये। इसके बाद आप आकृति खंडूरी के साथ सुन सकते हैं बॉलीवुड ट्रेल्स 11:02 से। 12:02 से निहारिका आपके साथ फिर होंगी लेकर प्ले इट कूल। 1:02 से आपके साथ आकृति खंडूरी फिर जुड़ेंगी लेकर रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज का टॉपिक है गैस्ट्रो इंटरटाइनल इश्यूज, जिसमें आपको आज आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। एक्सपर्ट हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोरा, जो कि आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हैं। उसके बाद रश्मि गुप्ता के साथ आप सुन सकते हैं आशियाना 2 बजे, 2:02 से आपके साथ होंगी। और डॉक्टर रेडियो डॉक्टर शो आप सुन सकते हैं, जिसमें आज का टॉपिक है जॉइंट प्रॉब्लम्स इन रेनी सीजन, और रेनी सीजन चल रहा है और ऐसे में इस तरह की दिक्कतें काफ़ी आती हैं, तो आज का ये जो शो है वो इट्स अ मस्ट शो, आप सुनिए ज़रूर। इसमें एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर दीपक जोशी, जो डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर दिल्ली से। और उसके बाद 4:02 से रश्मि आपके साथ फिर होंगी लेकर एल्फाजेन, और 5:02 पर विनीता बेदी के साथ आप सुन सकते हैं सिटी लाइट्स, सिटी की सारी हलचल। तो आज पूरा दिन FM रेनबो पर क्या क्या हलचल होने वाली है, क्या क्या शोज हैं, वो आपको मैंने बता दिया है। फिलहाल मैं चलती हूँ, मेरे जाने का टाइम आ चुका है। मिलती हूँ आपसे फिर इन्हीं एयरवेव्स पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय दिस सॉन्ग।

नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलोरू जिले के मुसनूरु गांव का दौरा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 थाई, 3 बांग्लादेशी, 4 नाइजीरियाई और 1 युगांडा तथा 1 गिनी का नागरिक शामिल है। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। शतरंज में भारत के ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन का खिताब जीत लिया है। भारत आज कोलंबो में मेजबान श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। और मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए FM Rainbow 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

और श्रोताओं आपको बता दें मेरे जाने के बाद आप कौन से प्रोग्राम सुन पाएंगे। तो निहारिका भवानी आपके साथ होंगे लेके वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर, जिसे आप सुन पाएंगे 10:02 पर। और फिर बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर के आएंगे आकृति खंडूरी 11:02 पर। निहारिका एक बार फिर आपके साथ होंगी 12:02 पर लेकर के प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का प्ले इट कूल। और आपको मैं बता दूं इसके बाद आकृति खंडूरी पेश करेंगे रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज हम बात करेंगे गैस्ट्रो इंटरनल इश्यूज़ पर। आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस इसमें आपको सुनने को मिल सकते हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जो कि आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट हैं, वो इस प्रोग्राम में आपके साथ होंगे, तो इसे आप ज़रूर सुनिएगा। फिलहाल मेरे चलने का समय हो चला है, हम लेते हैं आपसे इजाज़त, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।

0: Dolly Parton with Jolene on the Matchless Music Hour. Now, this is a song that was nominated at the Grammy Awards for Best Female Country Vocal Performance twice. Once in 1975 and again in 1976. And the 1976 nomination was for its live recording, its live version. And it's also been included on the Rolling Stone magazine's list of 500 greatest songs of all time. No wonder, you know, it strikes a chord with the audience, and it always puts you in a nostalgic mood whenever you listen to it. And up next, a very short, simple, sweet commercial break on the Matchless Music Hour, followed by more music. Stay tuned.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: 1981 is when this song came out. It belongs to the film Kaliya, starring Amitabh Bachchan. And there are multiple people who claim credit for this song, right? So R.D. Burman composed music for the film Kaliya. So that's one place where credit is due and it is rightfully owned. But then word is that this song is inspired by an Iranian-American song called Hele Mali by Iranian-American musician Zia Atabeh, which came out in 1977. So this song is said to be inspired by this Iranian-American song called Hele Mali. And although it's never been officially confirmed, but then there are striking similarities between the two tracks, and there are striking similarities between the music, the composition, and just the way the melody flows. So we'll leave that up to you to figure it out, whether there is actually inspiration there or not. But even if there is, that's how the world works, right? So one work inspires the other. Real life inspires fiction, and sometimes fiction also inspires real life. Well, it's all interdependent. So it's all really about creating a beautiful and healthy interdependence between everything in our world. And nothing can really exist in isolation, right? Well, that's a thought I'd want to leave you with. And also some important traffic updates. So in case you're heading from Horse Khas towards Greater Kailash, or in case you're heading from Horse Khas towards Shaheed Bhagat Singh College, there is likely to be a lot of traffic on the way. And, you know, that road seems a little chock-a-block at the moment. About 15 to 20 minutes, maybe 25 minutes. That's how much of a delay you can expect on that route. And it should ease up a little bit in some more time when the rush hour subsides and, you know, when everybody has reached their destination. But just a piece of information we thought was important to come your way. And with that, a short commercial break again coming your way, followed by some more music. You're with me, Niharika, on the Matchless Music Hour, Akashvani FM Rainbow. Stay tuned.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़. सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल.
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा.
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
5: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी.
6: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद. सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में.
5: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में. आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में.
6: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध.
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में.
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़. सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल.

0: is all about that. Not just dancing at a party with somebody that you love, but dancing through life effortlessly with your special someone's presence by your side. And up next, a short, simple, sweet break followed by more music.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: आपके घर के लिए भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

ही है, लेकिन आज की सबसे बड़ी बधाई जा रही है कान्हा को मेरठ से, जिन्होंने इस फिल्म का सही जवाब दिया है और बन रहे हैं आज के बॉलीवुड सरताज।

रेनबो पर हर घंटे एक अलग रंग के साथ हम आपसे मुखातिब रहते हैं। कुछ ही मिनटों में यानी कि 12:02 पर प्लेट को लेकर निहारिका एक बार फिर आपके साथ रहेंगी। 1 बजे रेनबो हेल्पलाइन में रूबरू मैं ही हूँ आपके साथ, लेकिन लाऊंगी एक खास मेहमान को, और वो हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोरा, जो कि आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं। और टॉपिक क्या होगा उससे पहले ये बात कह देती हूँ कि सुबह की चाय आप जल्दी जल्दी लेते हैं, खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, और दिन भर में पता नहीं पानी पीना तो चाहिए लेकिन पीना भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत बस प्यास लगती है, गला सूखता है तो ले लिया, और फिर क्या होता है आपका जो पेट है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कह रहा होता है कि थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में बहुत ही आम हो चुकी है। और इसीलिए आज रेनबो हेल्पलाइन में हम बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ के बारे में, और उनके आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस क्या हैं उस बारे में हमारी चर्चा रहेगी। और 2 बजे आशियाना प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगी रश्मि गुप्ता। मुझे यानी आकृति को फिलहाल इस घंटे के लिए दीजिए इजाजत। रेनबो हेल्पलाइन में 1 बजे एक बार फिर आपके साथ रहूंगी।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं? इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर 7 के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
5: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
4: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
6: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
7: इग्नोर नहीं, याद करो।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
9: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: क्या है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे

0: तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: Thank you.

नमस्कार, पेश है इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश के एलूर जिले के मुसनूरू पहुंचे, जहां राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में नवें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान के दौरे पर रहेंगे। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। देशभर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रिनेश एम ने हंगरी के नागी कानीजा में आयोजित प्रतिष्ठित कानीजा ओपन 2026 में जीत हासिल की है।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, ये हमारी हेल्थ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर डाइजेशन ठीक रहता है तो फिजिकल हेल्थ तो ठीक रहती ही है, साथ ही साथ हमारा मूड, हमारी एनर्जी, हमारा लाइफ फोर्स, हमारी लाइफ कंडीशन जो है काफ़ी अच्छी रहती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जो हैं, मतलब कि गैस्ट्रिक एसिडिटी, इंडाइजेशन आजकल बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन दवाई है या जीने का तरीका है या क्या है? आज की रेनबो हेल्पलाइन में हम जानेंगे आयुर्वेद के माध्यम से पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे कैसे डील किया जाए। और हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोरा साहब, जो कि आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरोरा आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू
1: जी। और सुनने वालों को बता दूं कि अगर आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू से जूझ रहे हैं या आपके परिवार में कोई जूझ रहा है या इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111026। और डॉक्टर अरोरा, इससे पहले कि हमारे श्रोताओं के सवाल हम तक पहुँचने शुरू हो जाए, मेरे खुद के बहुत सारे सवाल हैं। पहले तो आप ये बताइए हमें कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज होते क्या हैं?
2: देखिए, पाचन संबंधित बीमारियां
1: जी,
2: यानी कि आपको एसिडिटी होना, आपको गैस बनना, आपको कॉन्स्टिपेशन होना, आपको ब्लोटिंग होना, या पेट से रिलेटेड कुछ बीमारियां जैसे आईबीएस, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, उसके अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो ये सब जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में काउंट होते हैं, इंक्लूडेड हैं। तो मतलब जो अजीर्ण या अपच, जिसे एक सामान्य व्यक्ति बात करता है, मेरा हाजमा ठीक नहीं है, तो वो जो हाजमा ठीक नहीं है उसको हम मेडिकली जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। एक सामान्य भाषा में हाजमा ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल। अच्छा, बहुत लोगों आजकल हम देख रहे हैं कि गैस्ट्रिक होना, एसिडिटी होना बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो ये क्या कारण है जो इतना ज्यादा हो रहा है?
2: बड़े सिंपल, तीन कारण हैं
1: जी।
2: नंबर एक, हमारा खान पान ठीक नहीं चल रहा है। नंबर दो, हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। और नंबर तीन, हम गट में केमिकल्स को जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पहुंचा रहे हैं। तो तीन जो है बहुत बड़े कारण हैं जो डायरेक्ट कारण हैं, और एक इनडायरेक्ट कारण आकृति थी जो इन जनरल लोगों के दिमाग में नहीं आता, और वो आज के टाइम पे सबसे बड़ा कारण बन के निकल रहा है, वो है मानसिक तनाव, स्ट्रेस।
1: अच्छा, स्ट्रेस की वजह से?
2: स्ट्रेस की वजह से। अरे, ये मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि सबको लगता है कि हमारा खान पान ठीक नहीं है, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, इतना अधिक मेडिसिन एंटीबायोटिक खाना पड़ रहा है, पेन किलर खाना पड़ रहा है, तो हमारा पेट खराब हो जा रहा है। उनका ध्यान ही नहीं जा रहा कि एक इनडायरेक्ट कारण भी वो लेकर के बैठे हुए हैं, वो है मानसिक तनाव, जिसकी वजह से उनका जो है पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो रहा है। एंड उनको एज पर देयर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, ये जान लीजिए आकृति जी, काम एक ही होता है, परिणाम अलग अलग होते हैं, और परिणाम होते हैं बॉडी टाइप के हिसाब से। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कितनी अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग वाता पित्ता कफा सब करने लगे हैं ना, आपको भी करते हैं बहुत है ना, और न्यूज पेपर्स भरे हुए हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो वाता पित्ता कफा बेसिकली हमारे बॉडी टाइप्स है, हमारा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर आपको अजीर्ण हुआ, अजीर्ण मीन्स इनडाइजेशन हुआ, बट आप वातिक कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, आपका वात प्रीडोमिनेंस है, तो आपको बेसिकली सिम्टम्स आएंगे ब्लोटिंग के, सिम्टम्स आएंगे ऐसे कॉन्स्टिपेशन के, आपका मल जो है वो सूखना शुरू कर दे क्योंकि वायु डोमिनेट कर रहा है। अगर आपको पित्त टाइप का आपका बॉडी है तो आपको एसिडिटी के सिम्टम्स आएंगे। तो इस तरह से वेरिएशन ऑफ सिम्टम्स मिलता है, लेकिन सबके पीछे कारण रूट कॉज वही होता है कि खान पान गड़बड़ होना, लाइफस्टाइल गड़बड़ होना, केमिकल्स का हाथों में पहुंचना, एंड लास्ट मेंटल टेंशन।
1: जी जी, एक बार और बिकॉज हम लोग बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं कि आयुर्वेद पाचन तंत्र को किस दृष्टिकोण से देखता है?
2: ये पूरा अग्नि व्यापार है, जैसे आप बाहर अपनी किचन में खाने को पकाते हैं ऐसे ही शरीर के अंदर भी खाना पकता है। तीन लेवल अलग अलग होते हैं आकृति जी। पहला होता है हमारा इंटेस्टाइनल लेवल,
1: अच्छा,
2: जो हम कह सकते हैं सबसे ग्रॉस लेवल जो है।
1: अच्छा।
2: आप जो भी खाना खाते हैं वो अंदर जाकर के देखिए, आप कितना सिंपल है, आप खाना बाहर जब पका रहे हैं किचन में, तो बेसिकली खाना पकाना किसको बोलते हैं? खाने गलाने को। दाल गल गई मतलब दाल पक गई, चावल गल गए मतलब चावल पक गए, सब्जी गल गई मतलब सब्जी पक गई, तो बेसिकली गलाना होता है। तो आप उस सॉलिड को इतना लिक्विफाई कर देते हैं, इतना गला देते हैं कि आपकी बॉडी आपका मुंह उसे एक्सेप्ट कर ले, आपका गला जो है इसोफेगस फूड पाइप उसको नीचे पेट में जाने दे। अगर कच्चा होता है तो नहीं खा पाते ना चावल, है ना। तो एग्जैक्टली तो वो आधा काम आपने किचन में कर दिया। अब वापस फर्दर उसको गला करके इतना पतला जूस जैसा बनाने का काम जो है हमारी पेट की अग्नि जिसे बोलते हैं जठराग्नि, जठर मतलब पेट, तो पेट की अग्नि जो है फर्दर उसको गला के उसको बिल्कुल रस बना देती है। वो पोषक रस जो है वो बॉडी में एंट्री पाता है। फिर बॉडी में जाकर भी क्या होता है, एक पहला जठराग्नि, देखिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल कर लिया, पेट की अग्नि जठराग्नि, है ना, ये हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइनल लेवल पे। उसके बाद फिर शुरू होता है कि साहब अब हम बात कर रहे हैं टिश्यू लेवल पे, तो वो हमारे यहाँ कहला जाते हैं धातुवाग्नि, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सात धातुएं हैं जिनसे पूरा शरीर बना है। तो यहाँ पे हम बात करें टिश्यू, तो हमारी जो है सात धातुवाग्नि होती है, वो पोषक रस जो शरीर में पहुंचा। ये बहुत प्यारा साइंस आकृति जी, इसमें सुन के बड़ा मजा आता है। रस धातु की अपनी अग्नि है रसाग्नि, रक्त धातु की अपनी अग्नि है रक्ताग्नि, तो उस पोषक रस को रक्ताग्नि उठाती है, उसे पकाती है और पका करके रस को रक्त में बदल देती है। मांसाग्नि उस रस को उठाती है, उठा करके उसे मांस में बदलती है। अब सोचिए ना, अब खाते क्या है, आप आलू खाते हैं, गोभी खाते हैं, चावल खाते हैं, और बन क्या रहा है आपका, रस रक्त मांस मेद, आप देखिए ना मसल्स बन रही हैं, फैट बन रहा है
1: जी,
2: क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखिए किस तरह का है। तो ये सारा अग्नि व्यापार है। तो अग्नि उसे उतना पकाती है, मतलब दूध घर पे आ गया, अब आपका मन है उससे दही बनाएं कि उससे आप रबड़ी बनाएं कि उससे मलाई निकालें, क्या निकालें, पनीर बनाएं, तो अलग अलग फॉर्म हो गया ना। तो ऐसे ही टिश्यू लेवल पे हमारी धातुवाग्नियां होती हैं सात। उसके बाद फिर टिश्यू के बाद आता है सेल, फिर सेलुलर लेवल पे हम बोलते हैं भूताग्नि। जब हम बात करते हैं आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी पंच महाभूत, तो फिर सेलुलर लेवल पे हमारी पांच अग्नियां। तो इन टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पांच भूताग्नि, हमारी सात धातुवाग्नि एंड एक जो है हमारा जठराग्नि, ये सारा मिलाकर के कहलाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अग्नि व्यापार कि आप जो खाएं वो शरीर को जाके शरीर की हर धातु को पोषित करे।
1: तो जठर की अग्नि की अवधारणा को बहुत ही आसान शब्दों में आपने बताया। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हमारे साथ हैं, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज के बारे में आज के प्रोग्राम में रेनबो हेल्पलाइन में बात हो रही है। आपके सवाल भी हम तक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, जिस पर आप पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं को हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर अरोड़ा पूरे 2 बजे तक रेनबो हेल्पलाइन के स्टूडियो में रहेंगे। और फिलहाल डॉक्टर अरोड़ा, आप किशोर दा का ही गाना याराना फिल्म से बात कर रहे थे
2: तो बहुत सारे लोग हैं जो ना बहुत प्यारे हैं
1: जी,
2: तो सबको एक साथ
1: सबको एक साथ तेरे जैसा यार का

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
7: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
8: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
7: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
9: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और आज के प्रोग्राम में डॉक्टर परमेश्वर अरोरा, जो कि आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज के बारे में और आयुर्वेद के माध्यम से उनका क्या सोल्यूशन है, पाचन तंत्र से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो उनका समाधान आयुर्वेद क्या देता है, साथ ही साथ हमारी लाइफस्टाइल के बारे में, हमारे जीने के तरीके के बारे में, हमारे खाने और पीने के तरीके के बारे में भी आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बहुत जानकारियां डॉक्टर अरोरा से मिल रही हैं। आपने कहा खान पान ठीक नहीं है, डॉक्टर अरोरा क्या ठीक नहीं है?
11: देखिए, ये शब्द तो मेरे ख्याल से हम सब लोग बोलते हैं आज, कि सेहत क्यों खराब है, कि खान पान ठीक नहीं है, खाने और स्पेसिफिकली कहाँ ध्यान जाता है आकृति जी, कि क्वालिटी ऑफ जो ईटेबल्स हैं वो अच्छे नहीं मिल पा रही हमें, जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन

0: आज इस शो के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन पांच फैक्टर्स को हमेशा आपको कंसिडर करना चाहिए यदि आप अपने खान पान को ठीक करना चाहते हैं। उसमें नंबर एक पे मैं क्वालिटी बोलता हूं, नंबर दो पे क्वांटिटी बोलता हूं, नंबर तीन पे कॉम्बिनेशन बोलता हूं, नंबर चार पे टाइमिंग खाना खाने का समय बोलता हूं, और नंबर पांच पे खाना खाने का तरीका वे ऑफ ईटिंग बोलता हूं। एंड ये पांचों ही इंपॉर्टेंट है आकृति जी। हम केवल एक चीज की दुहाई देते हैं कि खाने की चीजें अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही अच्छी। अरे हम ये भी नहीं जानते कि कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। क्वांटिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये बताइए कि बहुत अच्छी गुणवत्ता की कोई चीज आपने अधिक मात्रा में खा ली तो आपको पोषण थोड़ी देगी, आपका पेट खराब कर देगी। ठीक है, तो क्वांटिटी भी हमको जानना है। नंबर तीन मैंने कहा कॉम्बिनेशन, कौन सी दो चीजें ऐसी हैं जो एक साथ खाई जा सकती हैं, कौन सी दो चीजें जो एक साथ नहीं खाई जा सकती।
1: अच्छा,
0: बहुत बड़े बड़े मिथ हैं। लोग आज बनाना शेक पी रहे हैं, मैंगो शेक पी रहे हैं, भाई ये आयुर्वेद इनका विरोध करता है।
1: अच्छा,
0: फ्रूट का दूध के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, दही का नमक के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है,
1: रायता जो खाया जाता है
0: नहीं, रायता इज डिफरेंट। अगेन रायता इज डिफरेंट।
1: अच्छा,
0: हाँ वहां पे आप काली मिर्च भुना जीरा वगैरह डाल के खा सकते हैं, लेकिन दही में नमक नहीं डाल सकते।
1: ओके,
0: तो इस तरह से जैसे आपने नॉन वेजिटेरियन फूड लिया, आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो चुका है। उसके बाद कुछ भी आपने अगर मिल्क प्रोडक्ट लिया तो आप प्रोन हो गए एलर्जीज के लिए। आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, आपको ल्यूकोडर्मा हो सकता है, आपको एक्जिमा हो सकती है, आपको सोरियसिस जैसी कठिन बीमारियां हो सकती हैं अगर आपने नॉन वेज खाने के बाद किसी भी फॉर्म में मिल्क प्रोडक्ट को। हम तो क्या करते हैं, पहले नॉन वेज खाते हैं, बाद में डेजर्ट के रूप में कोई ना कोई हम मिल्क प्रोडक्ट की कोई ले लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं कोई, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन हमें सीखने पड़ेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, दोनों अमृत है, घी और शहद, ठीक है, लेकिन दोनों को बराबर मात्रा में नहीं मिला के खा सकते, विष बन जाता है।
1: अच्छा,
0: उसके बाद टाइमिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप खाना खाना के लिए आपको एक टाइम फिक्स करना होगा। ऐसा नहीं है कि जब आपको टाइम मिला आपने खाना खा लिया। ये खाना खाने के लिए भी है टाइमिंग, और दूसरा खाद्य पदार्थ जो है उनका भी टाइमिंग है, सीजन के हिसाब से और दिन रात के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज तो आपको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे करके जाऊंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अब बड़ा फायदे की चीज है।
0: जैसे दही है, तो अब तीन सीजन ऐसे हैं जिसमें दही नहीं खाई जानी चाहिए।
1: अच्छा,
0: ठीक है, आप समझ रहे हैं, दही जैसे एक सेंसिटिव इशू पे मैं बोल रहा हूँ।
1: आजकल तो प्रोबायोटिक कहते हैं लेना ही लेना है।
0: एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि तीन सीजन ऐसे हैं जिनमें दही नहीं खाई जानी चाहिए। शरद ग्रीष्म चापी बसंतेशु प्रायसो दधि गरितम, ये शास्त्र बोलते हैं, वेद बोलते हैं। एक हमारी शरद ऋतु मतलब ऑटम, दूसरा ग्रीष्म मिस गर्मियों में समर्स में, एंड उसके बाद मैंने बसंतेशु मतलब स्प्रिंग में। मतलब आकृति जी, वो तीन सीजन जिसमें हम सबसे अधिक दही खाते हैं वो आयुर्वेद उन तीन सीजन में दही खाने को मना करता है।
1: अच्छा।
0: और मैं सूत्र आपको बता रहा हूँ,
1: मुझे लगा आप मॉनसून बोलेंगे कि बारिश नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
0: और तीन ऋतु जिसमें दही खानी चाहिए प्रशस्त है, तो वहां पर वो बोलता है हेमंत शिश्रे चापी वर्षाशु दधि सश्यते, अर्ली विंटर लेट विंटर और वर्षा ऋतु वहां पर जाए दधि प्रशस्त है। देखिए आकृति जी, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ। अब आप थोड़ा सा हो सकता है कि परेशान हो कि ये डॉक्टर साहब यहाँ FM रेनबो पे आके और ये सब चीजें बता रहे हैं जो इन जनरल प्रचलन में नहीं है। तो लेकिन मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंसेज। मैं बात करूंगा चरक संहिता की, सुश्रुत संहिता की, आचार्य वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय की, माधव निदान शारंगधर भाव प्रकाश और अथर्ववेद की। ये सात ग्रंथ
1: डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ
0: बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी टाइमिंग की बात की, अब ना नक्तम दधि मुंजीत, रात में दही बिल्कुल ना खाएं। पुराने आप गांव में जाइए, वहां बड़े बोलते थे कि दिन में कोई सोने के भाव दे तो लेके खाइए, लेकिन रात में कोई सोना साथ में दे तब भी मत खाइए। क्यों? उसके पीछे कारण था दधि अभिषंध्या नाम, दधि अभिषंधी है, मतलब वो पैसेज ब्लॉकर है। अगर आपने रात में खाया और उसके बाद फिर आप सुप्तावस्था में चले गए सो गए, तो आपको ब्लॉकेजेस करेगी, आपका यूरिक एसिड बढ़ाएगी, आपकी सूजन बढ़ाएगी, आपका पेन बढ़ाएगी।
1: ओके,
0: दही डायबिटीज को पैदा करने में तीसरा सबसे बड़ा कारण है।
1: रियली? ओके, आयुर्वेद के अनुसार,
0: चरक संहिता के अनुसार, आचार्य चरक तो हमारे फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब आप वहां जाके ये देखते हैं, देखिए मधुमेह जो होता है डायबिटीज, वो बड़ा चैप्टर है, उसमें कारण है कि डायबिटीज कैसे हो जाता है। तो एक हमारा सहज है जिसे हम कंजनाइटल बोलते हैं, एक कुलज है जिसको हेरिडिटरी बोलते हैं, लेकिन आज का जो डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, मतलब अपथ्यज जो सही नहीं था उसका सेवन किया जाना डायबिटीज में कारण होता है। तो वहां आचार्य चरक लिखते हैं आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम में उदक अनुप्रसा प्यांसी नव अनुपानम गुड़ वैकृतम च परमे हेतु कफ कृच सर्वम, चरक संहिता का श्लोक है। तो आस से सुखम, उस व्यक्ति को डायबिटीज होता है जो मुंह का सुख बहुत भोगता है, फिजिकल वर्कआउट करता नहीं है, खाता जाता है, मतलब कहीं ना कहीं इशारा मोटापे की तरफ है। नंबर दो, स्वप्न सुखम, यानी कि सिडेंटरी लाइफ स्टाइल, सो रहा है, ठीक है, कुछ दौड़ भाग नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं निष्क्रियता, बोला ओबेसिटी हो गई और आप एक तरह से निष्क्रिय भी हो गए। और नंबर तीन पे आता है दधीनी, दही का सेवन करना।
1: अच्छा,
0: नव अनपानम, नए अनाज का खाया जाना, गुड़ व्यकृतम चाहे, लोग आज के टाइम पे आकृति जी बड़े मिथ में जी रहे हैं, वो सोचते हैं कि चीनी ही कल्प्रिट है, गुड़ तो देसी है,
1: लेकिन और गुड़ का बड़ा प्रचलन है।
0: आकृति जी, आज से 125 साल पहले तो ये हमारी बहन आई थी चीनी, उससे पहले मीठे के नाम पे हमारे पास था क्या? गुड़ ही तो था। चाय किसमें बनती थी? गुड़ में। खीर किसकी बनती थी? गुड़ की। मिष्ठान किससे बनता था? गुड़ से। और जो चरक संहिता 5000 साल पुरानी हमारे पास है उपलब्ध, उसमें भी मधुमेह जो है उसमें लिखा है ना कि गुड़ और गुड़ से बनी चीजें।
1: अच्छा।
0: और प्रमेय है तो कफ के शर्म, वो कोई भी चीज जो कफ को बढ़ाए वो प्रमेय में कारण है। तो हमें अब ये सब चीजें जाननी चाहिए कि हाँ टाइमिंग क्या है, दही भी अच्छी चीज है लेकिन किस सीजन में खानी है, दिन में खानी है कि रात में। रात में दही जैसे अमृत एक चीज खा रहे हैं लेकिन आप नुकसान पहुंच रहे हैं, आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, दही को लोग ठंडा समझते हैं जबकि आचार्य चरक बोलते हैं दधि उष्णम, दही गर्म है। तो इसलिए हमें अब जो है केवल एक क्वालिटी क्वालिटी का जो हम रोना रोते हैं उससे बाहर निकलना होगा और अपनी थाली को देखते हुए 5 चीजों को सोचना है। एंड खाना खाने का तरीका,
1: हाँ वही मैं पूछ रही थी, वे आपने बोला था
0: वे ऑफ ईटिंग। अब आप सोचिए, मैं एक आज एक टेक अवे देके जाता हूँ इस पूरी कहानी का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ आकृति जी करते चले हम लोग। अगर कोई व्यक्ति देखिए, हमारी जो थाली होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक सॉलिड एक लिक्विड। सॉलिड से मेरा मतलब होता है रोटी है, चावल है, सूखी सी सब्जी पड़ी है, थोड़ा हो सकता है उसमें हल्का सा रसा भी हो लेकिन आई काउंट इट इन कि हाँ भाई ये सूखा पार्ट है थाली का। जो पानी साथ में लेके बैठे हैं, छाछ लेके बैठे हैं या आजकल हाँ ड्रिंक में क्या रखे तो जूस लेके बैठे हैं, कोल्ड ड्रिंक जो भी लेके, वो लिक्विड पार्ट है। तो वो व्यक्ति जो सॉलिड को, थाली के सॉलिड को यानी खाने के सॉलिड को पिएगा और जो वहां पे तरल है, जो द्रव है, लिक्विड है, उसको खाएगा, तो समझ लीजिए 50% तो उसकी एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन उसको वैसे ही नहीं होगी।
1: ओके,
0: केवल सॉलिड को पीना है और लिक्विड को खाना है।
1: अब थोड़ा समझा दीजिए,
0: सॉलिड को पीने का मतलब आकृति सिंपल है कि आपने मुंह में इतना उसको च्यू करना है कि व्हेन इट क्रॉसेस द फूड पाइप आपका ओएसोफेगस, तो वो बिल्कुल रस बनकर के नीचे उतरे, तो मतलब इसे बोलते हैं सॉलिड को पीना।
1: अच्छा।
0: और जब आपने अगर पानी सामने रखा है और आपने एक सिप पानी लिया और फिर एक सिप लेने के बाद आपने वापस से गिलास को टेबल पर रख दिया, अगेन आपने उसको गिलास को उठाया, फिर एक सिप लिया, फिर वापस से रख दिया, इसे बोलते हैं पानी को खाना।
1: ओके ओके, बिकॉज आजकल पानी बहुत ज्यादा पीने पे तो बड़ा प्रचलन है, 2.5-3 लीटर पर लोग एक साथ नहीं, एक बोतल का आज बड़ा कहा जाता है कि 3-3.5 लीटर हर दिन पानी पीना चाहिए।
0: ये भी बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। केवलम स औषधम पक्वम आमम उष्णम हितम चेतत समीक्ष है मात्राया युक्तम अमृतम विषम अन्यथा। इसका मोटा मोटा अर्थ बताता हूं आपको कि जल को केवलम अकेले पिया जाए, स औषधम पक्वम, औषधियों से सिद्ध करके, जीरे का पानी, अजवाइन का पानी, दालचीनी का पानी, ये चल रहा है ना,
1: तो
0: हाँ औषधियों से सिद्ध करके पिया जाए। आमम उष्णम मीन्स कच्चा ठंडा पिया जाए या कोसा करके पिया जाए। हितम चतत, आपके शरीर के अनुसार कौन सी इसका रूप, कौन सा स्वरूप आपके लिए हितकारी है, इसकी समीक्षा करके मात्राया युक्तम अमृतम, मात्रा में पिया गया जल अमृत है और नहीं तो विषम अन्यथा।
1: अच्छा।
0: विष है, इतना नुकसान पहुंचाता है,
1: ज्यादा पानी पीना भी नुकसान।
0: एग्जैक्टली, रिते शरद निदागाभ्याम पिबेत स्वस्थो अपि चल्पश, अष्टांग संग्रह वाग्भट अध्याय 6 को बोलते हैं दो ऋतु, एक शरद ऋतु यानी कि हम बात कर रहे हैं
1: सर्दियों की,
0: और उसके बाद फिर हम बात करते हैं शरद और ग्रीष्म ये गर्मी की, इन दो ऋतु में 4 महीने में आप सम मात्रा में जल पिए, बाकी बची 4 ऋतु मतलब 8 महीने स्वस्थो अपि च पिबेत अल्पम, स्वस्थ भी अल्प मात्रा में जल पिए।
1: अच्छा
0: आकृति जी, बहुत बड़े मिथ को आज इस शो के माध्यम से आप दूर कर सकती हैं हमारे एफएम रेनबो सुनने वालों के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अधिक पानी नहीं पीना है, पानी को शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही पीना है, अपनी प्रकृति के अनुसार जैसे प्यास लगे। पानी पीने के भी 2 समय हैं एसेंशियल, जब प्यास की बात नहीं करनी, नंबर 2 ऑन थर्स्ट कॉल, जब प्यास लगे तो पानी हमारा एक बहुत सेंसिटिव खाद्य पदार्थ है, जिसकी वजह से आज हम

0: बहुत बीमार पड़ रहे हैं।
1: ये भी एक नया रेवल्यूशन है डॉक्टर परमेश्वर आरोरा के माध्यम से। अच्छा, सुबह सुबह उठ के आजकल जो जीरे का पानी, मेथी का पानी, तरह तरह का पानी हम लोग पीते हैं खाली पेट, ये ठीक है आयुर्वेद के?
0: देखिए, हम आज के टाइम पे, मेरी अपनी एक पुस्तक है जल अमृत या विष,
1: अच्छा,
0: इंग्लिश में भी है, वाटर एलिक्जर और पॉइजन। तो मैंने
1: जी
0: पानी पे आकृति जी बहुत काम किया है, और मैंने
1: हाँ,
0: पिछले 10 साल से वैदिक जल क्रांति के नाम से एक अभियान छेड़ा हुआ है।
1: अच्छा
0: 10 करोड़ लोगों तक मैं पहुंच चुका हूं, उनको वैदिक तरीके से जल सेवन की विधि बता चुका हूं। आकृति जी विश्वास कीजिए, आई एम ए प्रैक्टिशनर, मेरे पास 100 पेशेंट ऑलमोस्ट एवरीडे आते हैं।
1: जी
0: आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल पानी को सही करके उनमें से 50% की एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन विदाउट एनी मेडिसिन ठीक हो गया।
1: पानी को ठीक
0: पानी को सही
1: करके,
0: करके, केवल
1: अच्छा
0: पानी को सही करने में भी सबसे पहले क्या हुआ, पहला मिथ, सुबह उठ करके वो 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास पानी नहीं
1: हाँ
0: पीना है। द मैक्सिमम वाटर विच कैन बी ड्रिंक बाय अस
1: जी,
0: इज 1 ग्लास, 250 ml, दैट्स इट।
1: और वो भी धीरे
0: इससे
1: धीरे
0: ऊपर
1: सिप बाय
0: आराम
1: सिप
0: आराम से
1: जैसे
0: सिप
1: आपने
0: सिप
1: बोला
0: करके
1: है।
0: सुबह उठ के
1: ऑल राइट
0: एक एक गिलास पानी, वो
1: हाँ
0: पानी बहुत अच्छा है। सुबह उठ करके अगर आप 1 गिलास पानी पीते हैं तो उसके
1: हाँ
0: लिए मेरा शास्त्र
1: खाली
0: बोलता
1: पेट
0: है,
1: हाँ
0: रोग जरा परिमुक्तो जीवेद वत्सर शतम सहस्रम, रोगों से मुक्ति मिलती है, जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता। ठीक है, आप 100 साल से भी अधिक जी सकते हैं, तो सुबह उठ के पानी पीना है, लेकिन 1 गिलास। नंबर दो, आज एक मिथ और ब्रेक कर रहा हूं, अगर आप हिल
1: जी
0: जाएंगी,
1: जी
0: अभी तक आपने शायद ये सुना होगा कि खाने के साथ पानी नहीं
1: नहीं
0: पीना
1: पीना
0: है,
1: है, मना
0: बट
1: करते
0: मैं
1: हैं।
0: ये पूछता हूं कहां लिखा है। चरक दिखाइए, सुश्रुत दिखाइए, वाग्भट दिखाइए, माधव दिखाइए, शार्ङ्गदा दिखाइए, भाव प्रकाश दिखाइए, जो अथेंटिक, जो हमारी
1: बिल्कुल
0: भारत सरकार ने,
1: या
0: आयुष डिपार्टमेंट ने जिन बुक्स को एज ए रेफरेंस बुक
1: जी
0: अलाउ किया हुआ है, उन बुक्स की बात दिखा करिए, उसमें दिखाइए कहां लिखा है कि भोजन के साथ पानी ना पिए। क्योंकि मेरा आयुर्वेद तो बोलता है भोजने च अमृतम वारी, भोजन के साथ पिया गया जल तो अमृत के जैसा होता है। भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्नि साधम कृशंगताम। अब देखिए, फिर मैं आकृति जी श्लोक इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि सेंसिटिव इश्यू है, आप कहेंगे ऋषभ
1: हाँ,
0: क्या
1: वो
0: बोल गए
1: आप
0: आप।
1: प्रूफ दे रहे हैं मुझे।
0: वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग संग्रह उठाइए, अध्याय 6 खोलिए और सूत्र नंबर 41-42 खोलिए,
1: अच्छा
0: उसमें लिखा भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्नि साधम कृशंगताम। अगर भोजन से पहले जल पिया तो आपकी अग्नि बैठ जाएगी, अवसादित हो
1: शांत हो
0: जाएगी,
1: जाएगी
0: ठीक है,
1: जठर की
0: और
1: अग्नि।
0: आप दुर्बलता महसूस करेंगे। अगर आपकी प्रवृत्ति यह है कि पहले पानी पीते हैं तो आप दुर्बल होते जाएंगे, कमजोर महसूस करेंगे। अंतः क्रोति स्थूलतम ऊर्ध्वम चा माशात कफम। अगर आप भोजन के अंत में खाना खा लिया फिर 1-2 गिलास पानी पीने की आपकी टेंडेंसी है तो आप मोटे रहेंगे और आपको पेट के ऊपर कफ के विकार होंगे। और मध्य मध्यांगताम साम्यम धातु नाम जरणम सुखम। अगर भोजन के मध्य में जल पीते हैं तो आपके धातु भी सम रहेंगे, आपके अंग भी सम रहेंगे, जरणम सुखम मतलब जरणम इस पाचन की क्रिया भी सुखपूर्वक शुरू हो जाएगी। इसलिए भोजन के मध्य में जल जरूर पीना चाहिए। और भोजन के मध्य में कैसे जल पीते हैं वो इस गाने के बाद।
1: और ये गाना भी डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा का पसंदीदा गाना है, किशोर साहब का ही सागर किनारे।
0: जी।

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाह रही हूँ कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज जिसको लेकर हम लोग सब इतने परेशान होते थे, उसके पीछे का कारण हमारा खाना पानी, खाने पीने का तरीका। आपने बताया क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉम्बिनेशन, टाइमिंग्स एंड तरीका, वे क्या है। डॉक्टर परमेश्वर अरोरा बहुत ही रेवोल्यूशनरी मुझे तो लगता है कॉन्सेप्ट हमें दे रहे हैं। कई चीज़ें जो हम अलग तरीके से समझते थे उसको ऑथेंटिसाइड करते हुए, ऑथेंटिक सोर्सेस के माध्यम से आप हमें बता रहे हैं। आपने खाने पीने का तरीका बताया, आपने कहा पानी पीने से नुकसान नहीं होता, जो हम लोग कहते हैं कि पहले या बाद में या साथ में नहीं लेना चाहिए, आपने कहा भोजन के मध्य में पानी लेना चाहिए।
1: जी जी जी।
0: तो इसको थोड़ा सा बताएं,
1: इसको भी थोड़ा सा डिटेल करते हैं।
0: जी।
1: तो वहां पर भाव प्रकाश ने इसको बड़ा डिटेल किया है, हमारे आचार्य में भाव प्रकाश। तो उन्होंने बोला है कि बीच में भी अति अम्बु पानाच, अगर आपने अधिक पानी पी लिया तो अविपच्यते अन्नम, तब भी अन्न नहीं पचेगा। और निरम्बु पानाच, आपने बिल्कुल नहीं पिया, सैव दोष है, वो भी गलती है।
0: अच्छा।
1: तो तस्मान नरो वन्नी विवर्धनाय, ऐसे में आदमी क्या करे कि उसकी अग्नि भी प्रज्वलित रहे और हाँ। जल भी जाए।
0: हाँ।
1: देखिए आपके दिमाग में आता ना कि
0: जी, जी, जी।
1: जठराग्नि प्रज्वलित हो रही है, आप पानी पियेंगे तो वो शांत हो जाएगी, है ना।
0: जी।
1: तो वो बोलते हैं कि ऐसे में आदमी क्या करे कि अग्नि भी प्रज्वलित रहे और जल भी जाए। तो बोलते हैं मुहुर मुहुर वारी पीबेत अभूरी। मुहुर मुहुर का मतलब बार बार, वारी मिस पानी, पीबेत मिस पिए, अभूरी मिस थोड़ा थोड़ा। तो आफ्टर एवरी 2-3 बाइट्स हैव 1 सिप ऑफ वाटर। तो आपको 200 ml पानी जो है वो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ मील जो है,
0: मतलब एक ग्लास पानी,
1: एक ग्लास पानी, छोटा ग्लास पानी आपने पीना ही पीना है। आकृति जी मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ पे आज आपके शो में बैठा हूँ, आप जानते नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये मैं विद रेफरेंसेज बात करता हूँ। जो लोग ये बोलते हैं ना खाने के साथ पानी मत पियो, तो बस उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो भी आए, वो भी गुजारिश करें आकृति जी से कि मुझे आपके स्टूडियो में बैठे, वो मुझे रेफरेंस बताएं आखिर कहाँ लिखा है। नाम आयुर्वेद का लेके, नाम वाग्भट का लेके जो मना किया जा रहा है कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, मैं तो पूछता हूँ कहाँ लिखा है। क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अध्याय 6 सूत्र संख्या 41-42, आप कौन सी वाग्भट की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली आकृति जी, जो भी आज समय आ चुका है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो इसमें हम व्हाटएवर वी से, वी शुड से विद रेफरेंस कि

0: इस किताब में ये लिखा है, एंड वो किताब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए कि एज ए प्रूवन रिसर्च डॉक्यूमेंट. आज हम चरक सुश्रुत वाग्भट के रेफरेंसेज को बिना किसी डर के, क्योंकि आयुष मंत्रालय एंड हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो प्रूवन रिसर्च डॉक्यूमेंट है, वो एक तरह से प्रूवन है, तो उनके हम जो रेफरेंस उनको कोड करते हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं और करके देखिए. हम तो रोज रोज सुनते हैं, अब जिसने मानना है उसको फायदा होगा, जिसने नहीं मानना उसके भगवान बनी
1: जी,
0: करे.
1: जी हमारे बहुत से श्रोता हैं जो बहुत से सवाल आपसे पूछना चाहते हैं. पैंथर तोमर साहब कहते हैं कि आजकल सुबह उठते ही लोग चाय का सेवन करते हैं, तो डॉक्टर अरोरा बताएं ठीक है या नहीं है.
0: नहीं, चाय का सेवन सुबह सुबह जो है बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है. आप उसकी जगह जो है आप सौंफ थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल लीजिए, हैं उसमें आपका मन करे तो गुड़ मिला लीजिए. आपका अजवाइन जो है उसका आप ले सकते हैं, आप धनिया का ले सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द टाइप. आप दालचीनी की चाय बना लीजिए. अगर आपको देखिए एसिडिटी रहती है तो आप धनिया की चाय पीजिए. आपको गैस बनने की टेंडेंसी है, आप अजवाइन की चाय पीजिए. अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप दालचीनी की चाय पीजिए. तो आपको डेफिनेटली कुछ लोगों को आदत है कि कुछ गर्म चाहिए सुबह उठते समय, तो आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं.
1: और अगर चाय और दूध और चाय पत्ती वाली जो चाय है अगर पीनी है तो कोई समय बता सकते हैं क्या? कई लोग कहते हैं कि ताजगी नहीं मिलती, पेट नहीं खुलता.
0: आप लीजिए, लेकिन खाली पेट इन जनरल नहीं लेना चाहिए. आप ब्रेकफास्ट के साथ उसको जोड़ सकते हैं, या आप कभी भी कुछ साथ में जाएगा तो ये कम नुकसान करेगी. अब इसमें भी नुकसान करने वाली चीज तो देखो होती ही है. बहुत सारे पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो गैस्ट्राइटिस से परेशान हैं, एसिडिटी से परेशान हैं, एंड वो अपने आप बोलते हैं कि चाय छोड़ी तो फिर हम ठीक हो गए. तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कब कम नुकसान करेगी, तो मैं कह रहा हूँ कि जब कुछ खा रहे हो उसके साथ कम नुकसान करेगी, खाली पेट तो बहुत नुकसान करेगी.
1: खाली पेट नहीं लेना चाहिए. खुशबू रोहिणी से हमें बोलती हैं कि इनके हाथों और पाँव दोनों में बहुत खुश्क जो है त्वचा रहती है, तो
0: बस तेल से नाता जोड़ें और खुशकी को भगाएं. तो एक्चुअली आज के टाइम पे आकृति ये भी एक दिक्कत आ रही है मैम कि तेल जो है लोग दूर करते जा रहे हैं, घी को दूर करते जा रहे हैं.
1: कम
0: तो
1: से कम
0: आप मुझे बताइए, जब हम कंप्लीट डाइट की बात करते हैं तो क्या उसमें फैट नहीं है? क्या
1: होता है
0: तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट तीनों मिलकर ही तो हमारे कंप्लीट डाइट बनती है. उसमें से आप एक हटा दीजिए. अगर तेल और घी इतना बुरा है तो इतने बैठे हैं ना ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, वो हटा दें इसको. है ना, आप जानते हैं ये तेल से जो दूरी हो रही है, ये तेल से दूरी हमारे शरीर में वात दोष को बढ़ा रही है. और ये वात दोष हमारा रोग उत्पादक दोषों में मेन है, कल्प्रिट है. तो इसलिए जितना हम वात से दूरी, तेल से दूरी बना रहे हैं, उतना हमारे शरीर में वात प्रकोपित हो रही है. क्योंकि तैलम वात राणाम श्रेष्ठम, तेल जितना लगाएंगे और जितना नहीं, जितना खाना चाहिए उतना खाएंगे, तो हमारे शरीर में वात दोष जो बायबादी बोलते हैं ना, बायबादी वो नहीं होगा. ना आपकी स्किन में खुश्की आएगी, ना आपको दर्द होंगे, ना आपकी नींद उड़ेगी. ये खुश्की है जो नींद उड़ी हुई है, ना आपको इरिटेबिलिटी होगी जो इतना जल्दी एंगर हमारा हो जाता है, वो सब नहीं होगा. ये बात दोष को हम बढ़ा रहे हैं तेल और घी से. आप जानते हैं, अब इन जनरल जब आप किसी डॉक्टर के पास जाके अपनी कमजोरी की बात कहते हैं तो आप खुद ही कह रहे होते हैं, डॉक्टर साहब कुछ विटामिन लिख दीजिए, बोलते हैं ना,
1: बिल्कुल
0: है ना. अब ये बताइए कि विटामिन ए बी सी डी ई ये सब विटामिन है ना जो कॉमन है आज के टाइम पे सबको. विटामिन डी कमा रहा है, विटामिन ए कमा रहा है, विटामिन ई कमा रहा है. क्यों कमा रहा है जानते हैं? घी नहीं है आंतों में. विटामिन बी एंड सी, ये दो विटामिन जो वाटर सोल्यूबल हैं.
1: जी.
0: ए डी ई ये फैट सोल्यूबल है. जब आप खाते हैं इनको, अगर आंतों में फैट है तो एक माइसिली फॉर्मेशन होता है, एक सुरक्षा कवच बनता है उनके ऑल अराउंड, एंड देन दे गेट अब्जॉर्ब इनटू द बॉडी, तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आते हैं. अगर घी तेल नहीं है पेट में तो वो हाइड्रोफोबिक है, वो वहां की जो आर्द्रता है, जो वहां की जल है, उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. मतलब मैं मोटा मोटा ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने विटामिन ए को दिमाग में रख के और बहुत बड़ा गाजर के जूस का गिलास, इंपोर्टेड गाजर मंगाई, ऑर्गेनिक गाजर मंगाई कि बहुत बढ़िया, आप जान लीजिए अगर घी नहीं है पेट में तो आपका वो बिकार गया, वो एक एक परसेंट भी विटामिन ए एब्जॉर्ब भी नहीं होगा.
1: अच्छा.
0: सो कहने का मतलब है कि हम अच्छे स्वास्थ्य की तलाश में अज्ञानता के चलते बहुत बड़ी बड़ी चूक कर रहे हैं. दैट्स वाई आज के इस इरा में जब सो कोल्ड हम पढ़े लिखे हैं, हम धनी हैं, हम टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, हमारे पास हेल्थ अवेयरनेस के लिए हम रूटीन टेस्टिंग करा रहे हैं, मल्टी विटामिन खा रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल में कैल्शियम आयरन खा रहे हैं, मैडम कहाँ जा रहा है स्वास्थ्य? कहाँ जा रही है एज? अब देखिए ना कि एज कहाँ जा रही है, 75 पहुंचना मुश्किल हो गया.
1: एक्चुअली
0: एंड जो पहले 80 साल तक लोग बोलते थे हमने दवाई नहीं खाई, आज हमारा 8 महीने का बच्चा भी दवाई खा रहा है.
1: हाँ.
0: So, कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अनजाने में ही गलतियां हो रही हैं और बड़ी चूक हो रही है. और अनफॉर्चुनेटली कुछ हेल्थ एक्सपर्ट जो है उनको ये सलाह देते हैं कि अब जो है छोका भी तेल में क्यों लगाते हो, पानी में लगाओ.
1: आजकल तो हो रहा है ड्रॉप्स ऑफ ऑयल्स.
0: अब आप ये बताइए कि किस लिए तेल चाहिए नहीं क्या? जो हमारे ज्वाइंट हैं उनको लुब्रिकेशन चाहिए, जो हमारा दिमाग है उसको लुब्रिकेशन चाहिए. और बहुत बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आती हैं कि आप यत्र पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हम बाहर देखते हैं आकृति जी वही हम शरीर में देखते हैं. बाहर जब कोई चीज हमारी कोई मशीन जाम हो जाए, हमारा कोई लॉक ताला जाम हो जाए, तो हमें क्या चीज याद आती है? उसे चाबी घूम जाए, मतलब चलायमान हो जाए, मोबाइल हो जाए, तेल. तो वो तेल बाहर तो चीजों को चला रहा है और अंदर जाके वो तेल ब्लॉकेज कर रहा है. एक्चुअली हम अगर वो ब्लॉकेज कर रहा है तो इसका मतलब वो तेल है ही नहीं. अगर वो ब्लॉकेज कर रहा है तो इसका मतलब वो घी है ही नहीं. तो हमने एक्चुअली जो एक नेचुरल फॉर्म था ऑयल का और घी का, उसको हमने जो कन्वर्ट किया कभी रिफाइंड के नाम पे, कभी कोई और, तो वो सब चीजें गड़बड़ हो रही है. वापिस से हमें नेचर की तरफ बढ़ना पड़ेगा.
1: जी जी, समय जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सवाल मेरे पास फहरिस्त जो है उसकी बहुत लंबी है. बहुत से लोग पूछना चाहते हैं. राहुल का नोएडा से है, नेहा दिल्ली से पूछ रही हैं, ये गुरुग्राम से शालिनी का भी है कि हमें पेट में बहुत भारीपन होता है, एसिडिटी होती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर अरोरा बताएं आयुर्वेद के माध्यम से क्या उपाय अपनाया जाना चाहिए.
0: देखिए, जिन लोगों को भी इनडाइजेशन है, बेसिक बात कर रहा हूं
1: जी,
0: तो उनको खाना खाने के 15 मिनट पहले एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा सेंधा नमक मिलाकर के खा लेना चाहिए.
1: अच्छा,
0: तो आपकी अग्नि जो है बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो जाएगी, फिर आपको भूख भी लगेगी और जो आप खा रहे हैं उसकी पाक की क्रिया यानी उसका पाचन भी अच्छे से शुरू हो जाएगा. तो मेरा पहला रिकमेंडेशन तो है कि आप जो है अदरक का छोटा सा टुकड़ा, थोड़ा सा सेंधा नमक लगा करके जो है आप उसे खाने के 15 मिनट पहले लें. दूसरा, दिन में दो बार कम से कम, अगर आपको गैस की टेंडेंसी है, मतलब पेट अफारा जिसे बोलते हैं, फूलता है, ब्लोटिंग होती है, तो अजवाइन जो है वो आपको चौथाई चम्मच टीस्पून ये दो बार गर्म पानी के साथ कभी भी फाके मार लीजिए, उसको खा लीजिए. और अगर आपको एसिडिटी की टेंडेंसी है तो वहां पे सौंफ जो है उसको आप ले लीजिए.
1: अच्छा.
0: तो ये करने से एक बेसिक डाइजेशन जो आपका है वो आप अचीव कर लेंगे. और फिर एक चीज और वापिस से कहना चाहूंगा, खाने के साथ पानी जरूर पिए. भोजने च अमृतम वारी, भोजन के साथ पिया गया जल अमृत के जैसा होता है. ऐसा ना हो कि आप खाने के बाद या खाने के पहले तो पिए लेकिन खाने के साथ ना पिए. खाने के साथ पीजिए, देखिए आपकी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएगी.
1: अपने आप ही. आजकल प्रोटीन लेने का बड़ा, सप्लीमेंट लेने का चलन चला है कि मसल स्ट्रेंथ के लिए, और हर किसी को, किसी भी जेंडर हो या उम्र है, प्रोटीन के लिए बला कहा जाता है. अजय चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि सर क्या ज्यादा प्रोटीन लेने से कोई दिक्कत आती है डाइजेशन में?
0: अति सर्वत्र वर्जित, अति तो किसी चीज की नहीं करनी. ठीक है जी, तो आपको हर चीज सम मात्रा में लेनी है. एंड कोशिश कीजिए कि आपका जो सोर्स है वो बिल्कुल प्राकृतिक हो. हमारे पास इतने अच्छे सोर्स हैं, आप दालें खाइए ना, प्रोटीन है. अगर आपके पास दूध अच्छा है तो पनीर बना के खाइए ना, प्रोटीन है.
1: बिल्कुल,
0: तो सोयाबीन खाइए, प्रोटीन है. लेकिन आपको रिफाइंड की तरफ जब हम जाएंगे, तब आपको प्रॉब्लम आती है. क्योंकि बहुत बच्चे आते हैं जो जिम वगैरह से हमारे पास पेट खराब करके और IBS लेके, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम. मैंने बताया ना, आप आर्टिफिशियल चीजों को या रिफाइंड चीजों को जब आंतों में डालते हैं तो दे बिकम इन्फ्लेम्ड, फिर उसके बाद फिर वो इरिटेबल हो जाती हैं वो, क्योंकि वो कहते हैं क्या डाल रहे हो भाई, तो फिर IBS बन जाता है.
1: तो IBS का आयुर्वेद में है सोल्यूशन?
0: आयुर्वेद में ही है सोल्यूशन. आकृति जी, IBS का पेशेंट जानते हैं, IBS इसको आयुर्वेद में संग्रहणी रोग कहा गया है
1: जी.
0: संग्रहणी के लिए एक शब्द आया है, दुर्विज्ञेयो दुश्चिकित्सयो चिरकाल उर्मंदी. अगर आपको एक बार संग्रहणी हो गई तो दुर्विज्ञेयो उसको जानना मुश्किल है. डायग्नोसिस ही नहीं बन पाती. कितने कितने साल, 10-10 साल, 15-15 साल. दुर्विज्ञेयो दुश्चिकित्सयो, चिकित्सक के लिए इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि पेशेंट आके बैठता है हमारे सामने, आकृति जी, बोलता है कि डॉक्टर साहब क्या पेट की हालत होगी, कुछ खाओ फ्रेश होने जाओ, कुछ खाओ फ्रेश होने जाओ. मतलब दिन में 4 बार से लेके 12 बार तक वो जाता है. ठीक है, अब आप सोचते हैं कि अरे डॉक्टर साहब जरा सा पानी का गिलास पियो, उससे भी प्रेशर बन जाता है. तो आपका दिमाग चलता है इसको रोकने की मेडिसिन देनी है. मतलब इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ी हुई है, इमीडिएटली कान में एक आवाज आती है कि डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं होता. डॉक्टर ना, आकृति जी, अपना पेन रख देता है नीचे वो कहता है इसको अब मैं लाने की दवाई दूं, मैं रोकने की दवाई दूं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके बारे में दुर्विज्ञ दुश्चिकित्सियों चिरकाल अनुबंधी, एक बार अगर किसी को आईबीएस बन गया तो चिरकाल अनुबंधी, फिर आपको लंबे समय तक वो रहेगा, जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती। एक कुशल गृहिणी, एक संग्रहिणी। सुनो, और एक कुशल गृहिणी की खास बात भी होती है, और इंडियन कुशल गृहिणी की तो खास करके
1: जी,
0: वो इस बीमारी के लिए मैं बोलता हूँ कि जान नहीं लेती लेकिन जीने भी नहीं देती। ऐसी ही संग्रहणी, ऐसी ही कुशल गृहिणी आपको तंग भी करेगी, फिर करवा चौथ रख के आपको कह देगी आपको मरना भी नहीं है, फिर साल भर तंग करेगी, फिर करवा चौथ रख के नेक्स्ट ईयर भी। तो आकृति जी, ये बहुत एक बहुत ही इरिटेबल सी बीमारी है संग्रहणी आईबीएस। इसमें जो है मुझे लगता है कि आयुर्वेद की शरण में पहुंचना चाहिए लोगों को, वहां पे उसको इलाज मिलेगा और उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन खान पान और जीवन शैली बहुत जरूरी है सही करना।
1: जी, पूछूंगी आपसे जीवन शैली के बारे में भी, आपने मेंटल स्ट्रेस जो है डाइजेशन पे क्या असर डालता है। लेकिन उससे पहले आकाश का सवाल है दिल्ली से, और वो कहते हैं कि फ्रूट खाने का सही समय क्या होता है, खाने के बाद या खाने के साथ फ्रूट खा सकते हैं, या कोई समय है कौन सा फ्रूट खाना है?
0: हाँ, मेरे हिसाब से फ्रूट खाने का सबसे अच्छा समय है समवेयर बिटवीन, या तो आप सुबह खाइए, ठीक है, ब्रेकफास्ट में।
1: खाली पेट खा सकते हैं? हाँ, तो कहते हैं कि आपके ब्लड शुगर हाई हो जाता है।
0: नहीं, आप बिल्कुल आप खा सकते हैं, खा सकते हैं। आपको आफ्टरनून से पहले पहले, मतलब समवेयर या तो मॉर्निंग में या बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच,
1: ओके,
0: द बेस्ट टाइम, क्योंकि उस समय कुछ क्रेविंग होती है कुछ खाने की, तो यू कैन हैव वन एप्पल, यू कैन हैव, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित। फिर मैं कह रहा हूँ वो जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वजन से 1/10 और वजन से इतना,
1: तो अति किसको कहते हैं? एक फ्रूट लाइक एप्पल लिया,
0: अति देखिए अति जो है सबके लिए अलग अलग है।
1: अच्छा,
0: आकृति जी, आयुर्वेद बहुत प्यारा विज्ञान है, एकदम मतलब वैज्ञानिक भी है और मतलब करेक्ट भी है, 100% करेक्ट है। यही जो क्वेश्चन आपने पूछा, अति किसे बोलते हैं?
1: हाँ।
0: तो ऐसे ही चरक संहिता में हमारे जैसे किसी शिष्य ने आचार्य चरक से पूछा कि आहार की मात्रा कितनी लेनी चाहिए और कितना भोजन करे एक व्यक्ति, तो जवाब में जानते क्या आया? 5,000 साल पहले उन्होंने कहा कि आहार की मात्रा अग्नि बल के हिसाब से, हर व्यक्ति का अग्नि बल आकृति जी अलग है। एक व्यक्ति आपके घर में है वो बहुत पतला है लेकिन उसकी खुराक 4 रोटी की है, हम मोटे तकड़े हैं लेकिन हमारी खुराक 2 रोटी की।
1: बिल्कुल।
0: हम 2 रोटी से अगर 4 पे जाएंगे तो हमें दिक्कत होगी, और उस बच्चे को जो पतला सा है उसको 4 से 2 पे लाएंगे तो उसे भी दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो हम किसी के लिए भी फिक्स ही नहीं कर सकते, आहार की मात्रा कैन नॉट बी फिक्स्ड। और देखिए कितना रेलिवेंट था जवाब, 5,000 साल पहले मुझे नहीं पता लोग 20 चपाती खाते थे, क्योंकि मैंने 25-30 साल पहले हम नाश्ते में 4 रोटी खाते थे, लेकिन आज हमारे बच्चे 1 खा ले तो हमें बहुत अच्छा लगता है, है? तो अब देखिए किस तरीके से, लेकिन जवाब बिल्कुल करेक्ट, उस समय भी रेलिवेंट था और करेक्ट था कि अपने अग्निबल जितना आप पचास के उतना खाइए। अब क्वेश्चन ये निकल के आया कि कैसे हमें पता लगे कि हम खाना सही से पचा रहे हैं? एग्जैक्टली ना, फिर जवाब आया, उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगो उत्सर्गो यथा उचित है लघुता अच्युत पिपासा चाहे जीर्ण आरस्य लक्षणम। आपने आहार आपने सही से जीर्ण हो गया, सही से पचा लिया, उसका क्या लक्षण है? बोले उद्गार शुद्धि, आपको शुद्धि की उद्गार है, आपको खट्टी डकारे ना है। उत्साह, आपने खाना खाया, आप बोलो लाइए आकृति जब मेरा भोजन हो गया काम क्या करना ये बताइए। बोलो अधिकतर हमेशा अधिकतर लोग तो खाना खाने के बाद कहते सो जाओ एक नैप ले लो। अब समय ने बात को कितना उल्टा हो रहा है, वो कह रहा है कि खाना खाने के बाद काम करने का उत्साह आए
1: और आना चाहिए,
0: ठीक है, उद्गार शुद्धि उत्साह
1: मात्रा। हाँ।
0: वेगो सर्गो यथोचित है, 2 वेग हैं मेन हमारे, एक मल का एक मूत्र का
1: जी।
0: तो मल मूत्र एकदम सही समय पे आए, लघुता शरीर में हमेशा हल्कापन बना रहे, छुत पिपासा चाहे समय पे प्यास और समय पे भूख लगे, तो जीर्ण आहार, तो आपके आहार की क्वालिटी भी ठीक है, क्वांटिटी भी ठीक है, कॉम्बिनेशन भी ठीक है, टाइमिंग भी ठीक है और फिटिंग भी ठीक है।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। आजकल एक और प्रचलन है कि शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना है तो खाने के बाद आपको 20 मिनट का वॉक करना है, ये भी एक काफी चलन में है।
0: बिल्कुल वॉक करना चाहिए।
1: जी जी, लता जयपुर से हमें मैसेज भेजती है कि सर डॉक्टर अरोरा बताएं कि उम्र के बढ़ने के साथ डाइजेशन का वीक होना क्या ये एक सामान्य बात है, आयुर्वेद क्या कहता है इस विषय में?
0: देखिए हमेशा जब भी उम्र बढ़ती है तो वात दोष बढ़ता है शरीर में, और वात जो है वो अग्नि को मंद करता ही करता है, डिजेनरेटिव चेंजेस, हम कमजोर हो रहे हैं या हमारे बुढ़ापा आ रहा है, तो वो वात दोष के कारण आता है। आपको कोई भी चीज डिजनरेट करनी है आप हवा में छोड़ दीजिए।

0: और वापस बॉडी पे तेल की मालिश करना शुरू कीजिए। तेल खाइए, तेल लगाइए, देखिए वात कंट्रोल में रहेगी, ना जल्दी से बीमारी होगी और ना जल्दी से बूढ़े होंगे। तो भरे बड़े देखो तेल की मालिशें कितनी
1: करते थे। स्ट्रेस के बारे में भी जानना चाहूंगी, आयुर्वेद क्या कहता है, किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए, कैसे मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल में रखा जाए।
0: देखिए उसमें क्या है कि हमारी मेध्य रसायन, हमारे आयुर्वेद की एक खूबसूरती यह है कि हर सिस्टम के लिए हमारे पास हर्ब्स हैं। अगर आप लीवर मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे पास चिरायता, कुटकी, कालमेघ, कासनी, मकोए, ये सब चीजें हैं। तो ऐसे ही हर सिस्टम के लिए, अगर आप ब्रेन को नरिश करना चाहते हैं तो आपको एक सही फॉर्म में, सुटेबल फॉर्म में, आपको अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, ज्योतिषपति, ये वो हर्ब हैं जो सीधे आपके ब्रेन को नरिश करती हैं। आप जानते हैं आकृति जी, अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम देखें पिछले 10-20 साल में, हम फिजिकल वर्क क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बट हम 24 घंटे इवन सोते समय भी हमारा दिमाग चल रहा होता है
1: जी।
0: लेकिन हमने दिमाग को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन क्या दिया? नहीं,
1: कुछ नहीं।
0: अभी भी हम रोटी चावल दूध लेकर के अपने शरीर को पोषित कर रहे हैं, लेकिन काम किससे ले रहे हैं? दिमाग से। तो इसलिए दिमागी बीमारियां बढ़ गई
1: जी, जी।
0: काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिंता, उद्वेग, ये सारा पूरा साइकेट्रिक जो मैंने बोल दिया, ये रज और तम से सब आ गया। और रज और तम किससे बढ़ते हैं? वात से। या जब हमारे दिमाग में खुश्की होती है, जब हमारे ब्रेन को नरिशमेंट नहीं मिलता, तो सीधी सी बात है मानसिक तनाव को दूर रखना है तो कहीं ना कहीं कुछ तो विचारात्मक चीजें भी करनी होंगी
1: जी।
0: हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना होगा
1: जी।
0: हमें वो कम्पिटिटिव जो एक अनफेयर जो हमारा एक मूवमेंट है उसको रोकना पड़ेगा, तो कंपटीशन कर रहे हैं वो रोकना होगा। लेकिन साथ ही साथ जो हम बिल्कुल पक्का पक्का कर सकते हैं वो ये कि ब्रेन को नरिश करने वाले कुछ आयुर्वेदिक उत्पाद जैसे सुप्रज्ञा वगैरह, हमारे अर्क है, डिस्टिलेशन में पानी जैसा होता है, लेकिन वो अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ओहो मैं कहता हूँ कि 15 दिन पीजिए ना, फिर आप देखेंगे कि आपका अपना बात करने का तरीका बदल जाएगा
1: जी।
0: क्योंकि आपका ब्रेन नरिश्ड होगा, आप कूल होंगे, काम होंगे। तो मेध्य रसायन का सेवन जो है वो करना चाहिए, और नहीं तो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, आज के टाइम पे आकृति जी हर बीमारी को बोलते हैं साइकोसोमेटिक, पहले दिमाग खराब होता है बाद में शरीर
1: जी।
0: तो इसलिए साइकोसोमेटिक डिजीज से बचना है तो मेध्य रसायन यानी कि दिमाग को ताकत पहुंचाने वाली जड़ी बूटियां जो आयुर्वेद में वर्णित है उनसे बने डिफरेंट डिफरेंट आयुर्वेदिक उत्पाद, जैसे सुप्रज्ञा मैंने नाम लिया, बहुत पॉपुलर है, इनका सेवन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा
1: जी। जी आपसे बात करते करते कैसे एक घंटा निकल गया पता ही नहीं चला, मुझे तो लग रहा है अभी बहुत घंटे चाहिए, क्योंकि आप नई तरीके, बहुत सारे मिथ्या हैं जो हमने अपने जीवन आचरण में अपना ली हैं, उनको आपने दूर किया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर परमेश्वर अरोरा फॉर बीइंग विद अस। और मैं भी रेनबो हेल्पलाइन से, मैं आकृति आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने ये जाना, आपने ये जाना कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो केवल हमारी पेट से ही नहीं जुड़ा हुआ, मुझे लगता है पूरा लाइफस्टाइल डॉक्टर अरोरा ने हमें बताया आयुर्वेद के माध्यम से इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और बीमारी का हमें इंतजार नहीं करना है, अपने जीवन, खाने के, पीने के, सोचने के, हर तरह तरीके को ट्रांसफॉर्म तो करना जरूरी होगा। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं आकृति भी ले रही हूँ विदा, नमस्कार।

और अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू पहुंचे, जहां राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता कल चीन में होगी। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मास्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान के दौरे पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2,00,000 से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर कई वरिष्ठ मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। देश भर में श्रावण मास के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रवेश एम ने हंगरी के नागी कानिजा में आयोजित प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में जीत हासिल की है। और भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो के सिहली क्रिकेट क्लब मैदान पर खेला जा रहा है। टीम इंडिया के विकेटकीपर

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और आपकी वाणी आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर पहुंच गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त एंड होस्ट रॉकिंग रेशमी। प्रोग्राम है आशियाना, और आशियाना में आज हम किसकी याद में बात करें, बताइए। देखिए ना दोस्तों, सावन का महीना है और आज आखिरी सोमवार है, जैसा कि अभी आपने न्यूज़ में भी सुना। लेकिन साथ साथ आज जो बरखा रानी है वो इतनी ज़्यादा मेहरबान हो गई है कि दिल्ली के लगभग हर हिस्से में आज मूसलाधार झमाझम बारिश हो रही है, है ना। और ऐसे में सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है, बताइए। सबसे ज़्यादा याद आती है दोस्तों की, और दोस्त भी वो जिनके साथ आपने अपना बचपन गुजारा हो, जिनके साथ आप बड़े हुए हों, और जिनकी याद में आपका मन अब तरसता हो। तो याद कर लीजिए उनको, क्योंकि सावन के साथ साथ मेघा भी बरसे हैं जनाब, और मेघा के साथ साथ आपके किसी पुराने दोस्त या फिर सहेली या फिर किसी अपने की याद तो आई है, और वो याद आई है तो आपको क्या करना चाहिए, उनके साथ करनी चाहिए रीयूनियन।

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि समय बीत जाता है, चला जाता है आगे, रास्ते बदल जाते हैं, लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होते चले जाते हैं। खास तौर से जो स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग होते हैं जो टच में रहते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं, और भले ही उनका आपस में मिलना ना हो लेकिन उसके बावजूद दिल ही दिल में मिलने की प्लानिंग ज़रूर चलती रहती है। तो मुझे लगता है इस सावन के महीने में, हालांकि अब सावन का महीना थोड़े ही दिनों का बचा है, लेकिन उसके बावजूद आगे के महीनों में भी आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जो आपकी यारी है, आपकी जो दोस्ती है, उनके साथ आप एक बार फिर से मिलने का प्रोग्राम बनाइए। देखिए ना, यादों की खुशबू हो और रिश्तों की गर्माहट को नई ताजगी देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रीयूनियन ज़रूर करें। बिल्कुल सही मैं कह रही हूँ, क्योंकि जो रीयूनियंस होती हैं ना, वो हमेशा ही आपको एक नए उत्साह, एक नए जोश के साथ भर देती हैं। आप सच सच बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अपने स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ टच में हैं, और यदि हैं तो क्या आपने कभी मिलने का प्लान किया? और यदि किया है तो कैसा लगा आपको, आप हमें बता सकते हैं जनाब। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रॉकिंग रश्मि।

0: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
4: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
3: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
5: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
6: इग्नोर नहीं, याद करो।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
9: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
10: जी हाँ, और फिलहाल FM रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना और आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि। दोस्तों देखिए ना, जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वाकई में बहुत सारे लोग हमारे पीछे छूटते जाते हैं। हालांकि मुझे लगता है आज की जो जनरेशन है ना, इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि उनको बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे मिले हैं जिसके थ्रू वो अपने फ्रेंड्स के साथ लगातार टच में रहते हैं। भले ही वो दोस्त आज उनके साथ स्कूल में या कॉलेज में या फिर नेबरहुड में साथ में नहीं हों, लेकिन जो पुराने लोग थे या ये कह लीजिए मिलेनियल्स जो हैं या उससे पुराने जो साइलेंट जनरेशन है, बहुत सारे लोग ऐसे भी

हैं जिनके दोस्त, पुराने दोस्त पूरी तरह से छूट गए हैं, लेकिन उन्हें यही कहना चाहूंगी कि यदि अभी आपके पास कोई भी आपके पुराने दोस्त हैं ना, तो प्लीज प्लीज प्लीज उनके साथ एक बार रीयूनियन जरूर कीजिए. ढूंढ लीजिए जनाब, सोशल मीडिया के थ्रू या एक दूसरे के साथ बात करके ढूंढ लीजिए अपने उन दोस्तों को जिन्हें कहीं ना कहीं आपने जीवन की आगे चलती जो रास्ते हैं उनमें आप भूल चुके हैं या उनको खो चुके हैं. देखिए, वैसे भी कहते हैं कि जो ये रीयूनियंस होती है ना, ये केवल लोगों के मिलने मिलाने के लिए नहीं होती, बल्कि जो आपकी यादें हैं ना, उन्हें आप एक बार फिर से जी लेते हैं, फिर से उन्हें जिंदा कर लेते हैं. आपस के रिश्ते को, आपस के प्यार को और ज़्यादा खिल के खुल के जीने का मौका मिलता है. और साथ साथ हमें ये भी याद दिलाता है कि भले ही ज़िंदगी में कितने भी आप बिज़ी क्यों ना हो जाएं, लेकिन जो अपने दोस्त हैं, अपने लोग हैं, उनके लिए आप वक्त निकाल सकते हैं. तो भाई, यदि आपको भी ऐसा कोई दोस्त याद है, वो पुराने दिन याद हैं, तो बस निकल पड़िए, जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलिए और ढूंढ लीजिए अपने वो पुराने दिन और पुराने दोस्त, और ढूंढ लीजिए उन पुराने दिनों की याद उन दोस्तों के साथ एक बार फिर से मिलकर.

0: कोयल सी तेरी बोली, कु तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: जी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना और आपके साथ हूँ मैं आपकी अपनी रश्मि। आज हम बात कर रहे हैं रीयूनियंस की, और ख़ास तौर पे रीयूनियंस की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि सावन का महीना है, बहुत कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, पुराने दोस्त याद आते हैं। तो मुझे लगता है इस सावन आपको डेफिनेटली ये प्लान बनाना चाहिए कि आपको अपने पुराने दोस्तों से मिलना है। होता क्या है आजकल रीयूनियन वैसे लोग काफ़ी करने लगे हैं, लेकिन कई बार आप व्यस्त होने के कारण ना नहीं जाते हैं। तो भाई इस बार ज़रूर जाइए और प्लान कर लीजिए, भले ही आप 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, ज़रूरी नहीं कि सब लोग मिले, लेकिन जितने भी फ्री हों ज़रूर मिलिए, क्योंकि ये रीयूनियंस आपको एक बार फिर से ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से खिल के खुल के जीने का मौका देती है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए

0: और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए
0: जी। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले, संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं
0: जी। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
0: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
2: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागु ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागु में हर साल कोडागु हॉकी उत्सव मनाया जाता है।

0: जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
0: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं
1: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
0: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा
1: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
1: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं कि नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओ, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए
1: जी। और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800-440-559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय।
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे।
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है।
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी, तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था, और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
3: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
4: अलग होकर खिसकने लगे?
3: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
4: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
3: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
5: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
4: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
3: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई, दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
5: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
4: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
3: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
4: जी।
3: देखो विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
4: फिर क्या हुआ सर जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
3: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
4: अच्छा?
3: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
5: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
3: हाँ बेटा क्यों नहीं।
5: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
3: बहुत अच्छे, और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही हैं। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
4: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते

0: कहते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
1: सर, एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
2: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
3: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थीं।
4: Marvelous.
2: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
5: ये किस तरह की मूर्ति है?
6: ये किस तरह की मूर्ति है?
7: ऐसी मूर्ति तो मैंने
8: वाओ वंडरफुल।
3: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा?
2: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
3: मूर्ति के हाथ नहीं थे लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
2: लोग सोचने लगे, भलाई कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
3: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
5: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?

0: ग्रेई, मार्वेलस।
1: हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है।
0: वंडरफुल।
2: हम सहमत हैं।
3: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है। कलाकार ने बताया,
4: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है, यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
3: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
5: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
3: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
5: कहीं ऐसा ना हो कि
3: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। इसी के साथ रश्मि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के

अरुणाचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के संस्करण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नेहा और आज के कार्यक्रम में किस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं? अब देखिए भाई, बारिशों का मौसम चल रहा है, ऐसे में आपको जोड़ों की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं। ज्वाइंट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी कि बरसातों में ज्वाइंट्स में जो समस्या आ जाती है, आपके जोड़ों में जो तकलीफ होती है, उसका कैसे निदान करें, क्या कारण होते हैं और किस तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं जब जोड़ों की बात आती है इस मौसम में, तो इसी विषय पर आज होगी बहुत सारी बातचीत। और हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ होने वाले हैं डॉक्टर दीपक जोशी। आप प्रोफेसर हैं, साथ ही ऑर्थो सर्जन हैं, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। विषय एक बार फिर से आप सभी को बता दूं, आज के रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में बातें होंगी ज्वाइंट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेनी सीजन विषय पर, यानी बरसातों में जोड़ों की समस्याएं। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं और आज बातें इसी विषय पर होंगी। बस एक गाना सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा और बहुत जल्द इस विषय पर होगी हमारी बातचीत।

0: भाई इनकी तरह अगर आप भी ठुमकना चाहते हैं तो ऐसे में आपके जोड़ आपका साथ दें, ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन जब बातें बरसातों की आती है, मॉनसून का मौसम होता है ना, तो ऐसे में जोड़ों में बड़ी सारी समस्याएं होती हैं। खासकर जो उम्र दराज लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ होती है जोड़ों में। लेकिन ऐसे में क्या हम सावधानी बरत सकते हैं, किन बातों का हम ख्याल रख सकते हैं ताकि मौसम चाहे कोई भी हो हमारे जोड़ों में कोई समस्या ना आए, तो इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में हम आपके साथ बिल्कुल यहां पर जुड़ चुके हैं। आज का विषय है जॉइंट प्रॉब्लम्स इन रेनी सीजन। हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक जोशी हमारे साथ हैं। आप प्रोफेसर हैं, ऑर्थो सर्जन हैं, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत एफएम रेनबो दिल्ली पर।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।
0: ऑलराइट डॉक्टर साहब, हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले तो यही मेरा एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि किस तरह की जोड़ों में समस्याएं होती है मॉनसून्स में।
1: मॉनसून या रेनी सीजन या विंटर्स ले लें, जैसे जैसे तापमान थोड़ा सा कम होता है तो जो कोलेजन है बॉडी का वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। तो जो ऑलरेडी डैमेज जॉइंट्स होते हैं, जैसे जो बुजुर्ग जैसे आप कह रहे हैं, तो उनमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है और ऑलरेडी जॉइंट में इन्फ्लामेशन, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है या इन्फ्लामेशन जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, तो इनके जो सिम्टम्स हैं, इनकी जो तकलीफें हैं, वो बढ़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब जोड़ों में स्टिफनेस और दर्द जो है वो बढ़ जाता है आमतौर पर इन ऐसी सिचुएशंस में।
0: और ऐसे में फिर रोजमर्रा के जो काम होते हैं,
1: बैठना उठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, उसमें समस्या आ सकती है।
0: अच्छा, ये बुजुर्गों में ज्यादा होती है जैसा कि अभी आपने मेंशन किया।
1: हाँ, बुजुर्गों में, क्योंकि मेनली है कि जो ज्वाइंट डैमेज्ड है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है देन जो प्रिस्टीन ज्वाइंट होता है उसमें छोड़ के। तो डैमेज ज्वाइंट जो एजिंग प्रोसेस जो होता है बॉडी में, उसके हिसाब से जो कार्टिलेज थोड़ी बहुत डैमेज होती रहती है विद एज के साथ साथ, तो इसलिए सारा का सारा जो दारमोदार वो लिगामेंट्स और मसल्स के ऊपर ही रहता है इन लोगों का। मतलब जो बेसिकली जिनको स्ट्रांग करना होता है, तो मोस्टली फिर ये जब इस तरह का मौसम होता है, थोड़ा सा तापमान गिरेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो ये जो कोलेजन जो बॉडी का होता है वो स्टिफ होना स्टार्ट हो जाता है।
0: अच्छा।
1: तो स्पेशली ये जो डैमेज्ड कोलेजन है ये ज्यादा स्टिफ होता है, इसमें इलास्टिसिटी कम होती है, इस वजह से जो दर्द है जोड़ों के वो बढ़ जाते हैं।
0: अब बहुत सारी बातें करने को है यहाँ पर कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर लाइन पर है। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम सुनील जुनेजा है, मेरी एज 56 है।
0: जी जी, सुनील जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: दिल्ली लक्ष्मी नगर से।
0: बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए।
2: सर से पूछना था, मेरे ना बैक बोन में कई सालों से पेन रहती है बहुत, क्योंकि एक्चुअली मेरी मदर को ना पहले पैरालिसिस था, तो मैं उनको नहलाने धुलाने के लिए उठाता था
0: जी।
2: तब से मेरे को ये पेन है, और ये पिछले साल मैं एक बार सीढ़ियों से भी गिर गया था, तो मेरे छत से मतलब सीढ़ी बैक साइड, मतलब रीढ़ की हड्डी वाली साइड से ना बैक पीछे था मेरे, उससे बच गया मैं, लेकिन उस टाइम से मतलब काफी पेन में आती है मतलब। और तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले चेक भी करा था, विटामिन डी भी बहुत कम आया था मेरा।
1: 56 ईयर जो इस एज है, इस एज में आमतौर कैल्शियम, विटामिन डी और ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम काफी होती है, इसकी वजह से भी कमर में दर्द काफी देखने को मिलता है। दूसरी है कि क्योंकि आप काफ़ी मेहनत वाला काम करते थे, काफ़ी मतलब हार्ड वर्क करते थे उठाने में उनको, तो उस वजह से भी जो डीजनरेशन है बॉडी को, जितना बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना डीजनरेशन बढ़ता है, तो चांसेस हैं कि आपको लंबर स्पॉन्डलोसिस हो या हो सकता है थोड़ी बहुत डिस्क की प्रॉब्लम भी हो। तो आमतौर पर अगर बहुत ही दर्द ज़्यादा है और पैरों तक जा रहा है, तो आपको बहुत मतलब आपके दिन डेली एक्टिविटीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको किसी डॉक्टर को डेफिनेटली स्पाइन सर्जन को दिखाना चाहिए। अगर बहुत माइल्ड है और आपने बताया जैसे विटामिन डी कम है, तो आपको विटामिन डी और कैल्शियम एडिक्वेट मात्रा में रहना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली इस एज में हमें 1300 mg के करीब कैल्शियम चाहिए होता है, तो आप अपनी डाइट में देख लें कि उतना है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप सप्लीमेंट करें उसको टैबलेट्स के साथ, और साथ में आप विटामिन डी डेफिनेटली, अगर बहुत कम है, अगर 10 से कम है तो आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा 20-25 के आसपास है तो आप दवाइयां ले सकते हैं, हफ्ते में एक गोली ले सकते हैं करीब 3-4 महीने तक। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, जो लंबर स्पाइन की एक्सटेंशन और फ्लेक्शन एक्सरसाइज है वो करनी है। वो किस तरह की एक्सरसाइज करनी है वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर बताएंगे आपका एक्सरे देख के।
0: उम्मीद करती हूँ सुनील जी आपने डॉक्टर साहब की बात नोट की है, और जैसा जैसा उन्होंने कहा है आप बिल्कुल वैसा करें और आपकी समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो।
3: हेलो
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: जी नमस्कार जी, मैम मैं अंशुल बात कर रहा हूँ मेरठ से।
0: अंशुल जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछें।
3: सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि हम जब एसी में सोते हैं ना, एसी चलाते हैं
0: जी,
3: तब हमें पेन होता है, यानी कि खिंचाव सा होता है, तो क्या इस कारण एसी भी समस्या का कारण बन सकता है?
1: आपकी उम्र कितनी है?
3: जी 25 साल।
1: 25 साल, हाँ। कुछ लोगों को जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कहते हैं हम लोग, उनको एसी के अंदर आमतौर पे देखा गया है कि जोड़ों के दर्द और पेन्स बढ़ जाते हैं। मतलब बेसिकली एसी, आप एसी के बिल्कुल आगे सामने सोएंगे, बिल्कुल हवा आपके ऊपर आ रही है, तो वो उस तरह ही काम करेगी जैसे ठंड का मौसम आ गया हो। तो जैसे ठंड में जो कोलेजन है वो बॉडी का स्टिफ हो जाता है और स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो बेसिकली आपको अपने टेस्ट वगैरह कराने चाहिए। मतलब आमतौर पर लोगों में होता नहीं है ये इस एज में, 25 साल की उम्र में। अगर आपको अपने टेस्ट सारे चाहिए, विटामिन डी लेवल और कैल्शियम लेवल और विटामिन B12 लेवल आपको अपना कराना चाहिए। अगर वो कम है तो आपको एडिक्वेट अमाउंट में लेना है। और एक्सरसाइज डेफिनेटली एज यूजुअल, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे ओल्ड है, सबको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए।
0: और ये सुझाव उन तमाम सारे लोगों के लिए है, उम्र चाहे जो भी है, एसी में सोते हैं क्योंकि मौसम ऐसा है, एसी के बिना रहा भी नहीं जाता। तो अपना ख्याल रखें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, डाइट पे फोकस करें, तो ये समस्या थोड़ी आपकी कहीं ना कहीं कम जरूर हो जाएगी। हेलो।
4: हेलो
0: जी, नमस्कार, नाम बताएं।
4: नमस्कार, GS चट्ठा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्ते
0: जी
4: डॉक्टर साहब। जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, मेरे घुटने में दर्द होने लग जाता है, तो एंटीबायोटिक खाते हैं या पेन किलर खाते हैं तो पेट खराब हो जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाए? ऑइंटमेंट लगाएं तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। खान पान में क्या लें ताकि इससे थोड़ा सा फायदा हो जाए और दर्द ज्यादा ना हो?
1: देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है जी, जैसे ये जो मौसम है, मॉनसून है, इसमें चलो टेम्परेचर तो कम होता है लेकिन साथ साथ ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है, तो जो पानी का लॉस है, स्वेटिंग है, वो काफ़ी होती है। हमारा शरीर से पानी काफ़ी निकलता है स्वेट बन के, तो जो हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स, ये भी बहुत कॉमन है इसमें। तो जो नॉर्मल आप पानी पीते हैं करीब 2 से 2.5 लीटर ज़रूर पीना चाहिए, लेकिन इस मौसम में अगर आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो इसको इंक्रीज करके करीब 2.5 से 3 लीटर कर देना चाहिए। दूसरा, आपको कैल्शियम और विटामिन डी रेगुलर लेना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी मसल्स को, एज के साथ साथ जो है जॉइंट्स खराब होते हैं लेकिन मसल्स हमेशा जवान रहती हैं, अगर आप मसल्स को स्ट्रांग करेंगे तो आपका जो फोर्स है मसल्स लेंगी और जॉइंट्स नहीं लेंगे, तो आपको पेन कम होगा। तो एक्सरसाइज, अच्छी डाइट में आपको बेसिकली जो ग्लूकोसामीन ज़्यादा लेने हैं, या तो आप टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं जो, या आप लीफी वेजिटेबल, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और गूदे वाले जो फ्रूट्स होते हैं, इनमें ग्लूकोसामीन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और इस मौसम में तो ये अवेलेबल भी हैं। आई थिंक आप ये खाने में आप ये इंक्रीज कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। एक और कॉलर है लाइन पर। हेलो।
5: हेलो
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
5: नेहा बेनीवाल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
0: नमस्कार जी, सवाल पूछें।
5: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
1: हाँ नमस्ते
5: डॉक्टर साहब। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब ये बरसात का मौसम आता है ना,
1: हाँ जी,
5: तब मेरे घुटनों में पेन तो इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती है।
1: हाँ।
5: तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ड्राई फ्रूट में क्या लिया जाए जिससे ये दिक्कत दूर हो जाए, कृपया बताने का कष्ट करें।
1: ड्राई फ्रूट में आप अखरोट लीजिए। अखरोट में, अखरोट मतलब जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भी लेना। अखरोट और बादाम आप ले सकते हैं, लेकिन अखरोट से माना जाता है कि वो कार्टिलेज के लिए काफी अच्छा होता है। डाइट में आप ये लें, लेकिन एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही बताया, पानी इनटेक एडिक्वेट होना चाहिए और साथ में एक्सरसाइज करें।
0: जी डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जब ड्राई फ्रूट्स की बात आती है तो ये एक मन में बड़ी संशय होता है कि भाई इसको भिगो के खाएं कि डायरेक्ट खा सकते हैं।
1: हाँ, कुछ लोग जैसे हम लोग भी हैं, हम भिगो के ही खाते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट खाएंगे तो कई कुछ लोगों को मुंह में एलर्जी या अल्सर्स, इस तरह की प्रॉब्लम
0: निकल आते हैं,
1: इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो भिगो कर ही खाना चाहिए,
0: चाहे वो अखरोट हो या फिर बादाम हो।
1: और एडिक्वेट मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, लिमिट में खाना,
0: लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखें जो लोग ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं। हेलो।
6: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
6: नमस्कार जी मैडम, सदाशिव पालकर, महाराष्ट्र, नवी मुंबई से।
0: नमस्कार भाई साहब, सवाल पूछे। सवाल,
6: हाँ, मेरा डॉक्टर साहब को सवाल है। डॉक्टर साहब जी नमस्कार।
1: नमस्ते नमस्ते
6: साहब जी, मेरी एज है अभी 67।
1: हाँ जी।
6: अभी तक मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, जोड़ों का या गुड़गे का या कमर का कोई भी तकलीफ नहीं है।
1: बहुत बढ़िया,
6: बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, क्योंकि सुबह शाम मैं कंपलसरी योगा करता हूँ।
1: हाँ, इसी वजह से। और इसी,
6: लेकिन आगे चल के मुझे ना हो तो उसके लिए प्रतिक्रिया कुछ बता दीजिए, क्या खाना और कैसा चलना वो जरा प्लीज।
1: योगा आप करते रहें, योगा से बढ़कर कुछ नहीं है, और एक्सरसाइज करें, वॉक करें और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, कमर की घुटने की जो सिंपल, वो योगा में भी आप करते होंगे वही सब। अभी तक आप ठीक हैं तो आगे भी ठीक रहेंगे। डाइट में अपना आप कैल्शियम विटामिन डी साल में 3 महीने लीजिए, और साथ में या और एडिक्वेट अमाउंट अपने दूध और ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स आप अपने आप कम करिए इस एज में, और मेरे ख्याल से एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी।
0: वो ऑलरेडी अपना इतना अच्छा ख्याल रख रहे हैं तो आगे भी मेंटेन करेंगे। डॉक्टर साहब एक मैसेज ले लेते हैं, गोलू का मैसेज आ गया है मेरठ यूपी से, कहते हैं 23 वर्ष के हैं और इनके घुटनों में और लेग्स में कई बार कट कट की आवाज आती है, तो ये क्या वजह हो सकती है?
1: ऐसा है गोलू जी, दो तरह की, एक तो होता है कि पूरी बॉडी में कट कट की आवाज आती है, ये नॉर्मल होती है, 1 in 1000 मतलब 1000 में 1 इंसान में इस तरह की नॉर्मल आवाज आती है। नॉर्मल इसमें कुछ नहीं करना होता है, ये जनरली आपको वैसे फील होता होगा लेकिन ये कुछ करना नहीं होता, लेकिन अगर आपको इसमें तकलीफ है, दर्द हो रहा है और आपकी लॉक हो रहा है नींक हो, या आपका नींक फंस जाता है किसी पोजीशन में, तो ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम, डिस्कॉइड मेनिस्कस हो सकती है, या मेनिस्कस का टेयर, वॉशर का टेयर हो सकता है, या वॉशर की बनावट चेंज हो सकती है, तो उसका इलाज पॉसिबल है सर्जिकली या एक्सरसाइज से पॉसिबल है, तो वो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पर एज सच जो आवाज आना जोड़ों में से, ये काफी पेशेंट्स में, काफी लोगों में नॉर्मल होता है,
0: नॉर्मल होता है। डॉक्टर साहब एक और मैसेज है, हमारे बड़े रेगुलर लिसनर हैं प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर जिला बिजनौर से, ये 58 इयर्स के हैं, कहते हैं कि ये अपने जीवन में एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह रहे हैं और अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभी ये पनीर दाल और चावल जैसी जब चीजें खा लेते हैं तो इनके जोड़ों में बड़ी तकलीफ होती है।
1: अब ये पनीर जो आप रिलेशन बता रहे हैं तो अपना यूरिक एसिड जरूर टेस्ट कराएं, क्योंकि जो प्रोटीन से रिलेटेड ज्वाइंट पेन्स होती हैं उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो इसमें लो प्रोटीन डाइट हमें देनी होती है। तो अपना अगर आपका यूरिक एसिड ठीक है तो आई थिंक थोड़ा आप रिड्यूस करके देख सकते हो, पर अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसकी दवाई लेनी पड़ेगी और प्रोटीन्स की मात्रा कम करनी पड़ेगी।
0: इसके लिए फिर कौन सा टेस्ट कराना होता है अगर हमें?
1: सेरम यूरिक एसिड कराना है आपको।
0: चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो,
7: हेलो जी।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
7: जी मेरा नाम राजेश है जी, मैं सुकुरबस्ती से बोल रहा हूँ।
0: राजेश जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछे आप।
7: सवाल ये है जी कि जब सर्दी ज्यादा होती है तो तब भी घुटनों में दर्द रहता है, और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है तब भी घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है।
1: जी सर्दी और गर्मी दोनों में दर्द हो सकता है। जो गर्मी में दर्द होते हैं वो होते हैं क्रैम्प्स की वजह से, वो हीट क्रैम्प्स आ जाते हैं क्योंकि बॉडी से जो पानी है काफी मात्रा में बाहर निकलता है स्वेट बन के, ठीक है, पसीना बन के निकलता है, तो आपको जो पानी है वो करीब 2.5 से 3 लीटर इंक्रीज करना पड़ेगा। और गर्मी सर्दियों का दर्द अलग है, जो मौसम ठंडा होता है तो वो कोलेजन स्टिफ हो जाता है जो मैंने पहले भी बताया, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो
8: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
8: मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ।
0: स्वागत आपका कार्यक्रम में, आप सवाल पूछें।
8: जी जी डॉक्टर नमस्कार।
1: नमस्ते राजा जी।
8: सर खास करके बरसात के मौसम में और गर्मियों के मौसम में हमको जो परेशानी ये होती है कि पैरों के टखने, घुटने और पैरों के पंजे, इनमें जो है बहुत ज्यादा हमें दर्द महसूस हुआ करती है। ये जो ज्वाइंट जितने भी हैं ये पैरों में, टखने में, घुटनों में और पंजों में, ये दर्द हमको हुआ करती है। अच्छा, और ये लगभग 1 या 2 बजे इधर से और शाम को लगभग 6-7 बजे तक महसूस

0: होगी, फिर अपने आप से खत्म हो जाती है, तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं?
1: हाँ, ये जो जोड़ों में दर्द है, जो डिस्टल जॉइंट्स हैं, जैसे हाथों की उंगलियों या पैरों में भी जो डिस्टल जॉइंट्स में दर्द हैं, तो इनमें जो दर्द है, जो अकड़न रहती है, जो आप कह रहे हो कि धीरे धीरे धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट कराने होते हैं। हमें ये रूल आउट करना है कि इन्फ्लामेटरी पैथोलॉजी नहीं, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस ना हो। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे रूमेटॉइड फैक्टर है, यूरिक एसिड है, ESR CRP, वो आपके फिजिशियन आपको बताएंगे, वो आप अपने सारे टेस्ट कराएं। अगर वो नॉर्मल हैं, मोस्टली वो नॉर्मल निकलते हैं, लेकिन कुछ में अगर पॉजिटिव हैं तो अकॉर्डिंगली दवाई देनी पड़ती है। अगर वो नॉर्मल हैं तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी ही लेना है, और आपको हो सकता है कि स्टॉकिंग पहन के चलना, हो सकता है आपको वेन्स की, नसों की प्रॉब्लम हो, तो आपको एक तो कैल्शियम विटामिन डी रेगुलर लेना है अराउंड 2 to 3 months इन ए ईयर, और साथ में एक्सरसाइज करनी है। अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो आपको हो सकता है पैरों में स्टॉकिंग्स पहननी पड़े।
2: जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज है अहमदाबाद से ललित भाटिया जी का। ये 63 इयर्स ओल्ड हैं और 2-4 दिन से इनके दाएं पांव में मसल स्टिफ हो गया है, तो सोल्यूशन आपसे चाहते हैं।
1: 2-4 दिन ही हुए हैं तो हो सकता है मसल पुल हो गया हो। अगर मसल पुल हो गया तो उसके लिए दवाई लेनी है दर्द की, और साथ में आप थोड़े दिन फिजियोथेरेपी और स्ट्रेचिंग कराएं, आई थिंक ठीक हो जाएगा 2-3 दिन पुराना दर्द तो।
2: कोई ऐसी ज्यादा समस्या की बात नहीं है।
1: हेलो
0: हेलो
2: जी, कौन बोल रहे हैं?
0: मैं सुनील जी ने बोल रहा था, मैं अभी बीच में मेरा फोन कट गया था, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाया था।
2: जी पूछिए।
0: एक्चुअली मेरे बैकबोन में जैसे पेन था, तो मैं पहले बेल्ट भी लाया था, बेल्ट यूज कर, किसी ने मना किया है कि बेल्ट आप बिना डॉक्टर के उसके यूज ना करें।
2: जी।
0: और एक और क्वेश्चन था कि जैसे मैं बचपन से गोदन परिक्रमा करता, तो घुटने पे भी मतलब काफी कई स्वेलिंग से आती है, और थोड़ा कई बार उसमें दर्द होता है बहुत।
1: जी डेफिनेटली, अगर आपके इतनी 57 एज 56 ईयर जो आप बता रहे थे, और आपके घुटनों में दर्द है, तो आर्थराइटिस होगी। घुटनों में कितनी सीवियर है ये एक्सरे देख के ही पता लगता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है कि बिल्कुल घुटना से घुटना खत्म ही हो गए हैं, चला नहीं जा रहा है, तो घुटने का ऑपरेशन करना पड़ता है, बदलना पड़ता है घुटने को। अगर माइल्ड है तो एक्सरसाइज और कुछ स्पेशल दवाइयाँ होती हैं आर्थराइटिस के लिए, वो लेनी होती हैं, उससे आप डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। बेल्ट लगाने में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेल्ट मतलब ज़बरदस्ती भी लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लगा के अगर बेल्ट लगा के चलेंगे तो मसल्स वीक होंगी। तो डेफिनेटली डॉक्टर्स की सलाह लेनी है, जैसे आपको बताया, वो आपको एक्सरे देखेंगे घुटने का भी और स्पाइन का, फिर अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे क्या करना है।
2: जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज है गाजियाबाद से, मनोहर लाल गांधी हैं चाणक्य चौक से, और जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को कमर में दर्द होता है, घुटने और पैरों में तकलीफ होती है, उन्होंने किस तरह के जूते चप्पल उनको पहनने चाहिए? कई बार डॉक्टर्स कोल शूज की काफी बातचीत होती है, तो किस तरह का फुटवेयर पहनना चाहिए?
1: हाँ, जो ऐसी बेसिकली है कि आपको ज्यादा हील नहीं होनी चाहिए जूतों में, शूज में, क्योंकि उससे नी पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है। जिन लोगों को फ्लैट फुट होता है, उनको स्पेशल शूज फ्लैट फुट के हिसाब से पहनने होते हैं, मीडियल आर्च पहननी होती है। डॉक्टर शोल्स के जो शूज़ हैं, ये चप्पल डेफिनेटली ये काफ़ी मतलब लोगों में ये है कि वो पहनना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए होती है, प्लांटर फेशियाइटिस जिसको कहते हैं, उसमें पैरों में दर्द होता है। जब पहला पैर फुट रखते हैं तो पैरों के अंदर इन्फ्लामेशन होती है और हील के अंदर पेन ज़्यादा होता है, उनको फिर रिकमेंडेड होता है कि डॉक्टर शोल्स की चप्पल पहने। आजकल काफ़ी सारे सेंटर्स ऐसे हैं जिनको काफ़ी फुट की, जिनको लोगों को प्रॉब्लम है, जिसमें हम फुट प्रेशर स्टडीज़ करते हैं। आप मॉल्स में भी जाएंगे तो काफ़ी आपको जूते आप वो बताएंगे कि आप पहले चलाएंगे आपको उस पर, फिर आपको फुट प्रेशर्स देखेंगे, फिर उस तरह से रिकमेंड करेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है चलने फिरने में और आपको लग रहा है कि पैरों में कुछ डिफॉर्मिटी वगैरह है, तो फुट प्रेशर एनालिसिस करा के आप जूते पहन सकते हैं। पर मोस्ट मतलब अगर ब्रॉडली मैं बोलूंगा तो बेसिकली अगर आपको नी घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम है और पैरों की प्रॉब्लम है, तो आपको हील बहुत कम से कम पहननी है और वो सॉफ्ट होनी चाहिए।
2: और ये खासकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सजेशन है जो हील की सैंडल्स पहनना कहीं ना कहीं कंपल्शन है। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है,
1: तो साथ में मतलब पहने, लेकिन फिर एक्सरसाइज जरूर करें,
2: एक्सरसाइज करें, और वो भी थोड़ा देखें कि आप कितना प्रेशर अपने नीज पर डाल सकती हैं, बहुत जरूरी है। साथ ही एक और सवाल था इनका कि जो लोग इस तरह की समस्या से जूझते हैं, जोड़ों में दर्द है, तकलीफ है, कमर में समस्या है, क्या इनको ठंडी चीजें खाना चाहिए, सजेस्टेड है या मतलब नहीं करना?
1: मतलब एज सच खाने पीने में, वेदर हॉट खाना या कोल्ड, बेसिकली उसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है, इससे कोई ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली है कि डाइट में विद एज कैल्शियम और विटामिन डी और ग्लूकोसामींस ये आपको इंक्रीज करने हैं, क्योंकि यही आपके जॉइंट्स के लिए बेटर होंगे।
2: श्रोताओं, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर FM रेनबो दिल्ली 102.6 MHz पर, और आज हम बातें कर रहे हैं बरसात में जोड़ों की समस्याएं विषय पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक जोशी, आप सभी के सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगर आप भी जोड़ों की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप हमें सीधे फोन

0: और इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ नेहा और मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपक जोशी। हम बातें कर रहे हैं बरसात में जो जोड़ों की समस्याएं आपको होती हैं उस विषय पर बातचीत हो रही है। डॉक्टर साहब, बहुत से मैसेजेस हमारे पास आ गए हैं। तो मिलन है दिल्ली से, कह रहे हैं कि मेरे लेफ्ट पैर के तलवे में एक महीने से दर्द हो रहा है, क्या कारण हो सकता है?
1: जैसा मैंने अभी बताया, तलवे का दर्द बेसिकली प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं हम इसको। तो ये या तो चोट लगने की वजह से होता है या यूरिक एसिड बढ़ने से या वैसे भी हो सकता है। तो बेसिकली है कि हील का में जो एरिया है वो उसमें इन्फ्लामेशन बहुत आसानी से जाती नहीं है। तो आपको एक तो बर्फ से सिकाई करनी है, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं प्लांटर फेशियाइटिस की, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, वो आप करें। और साथ में फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी कुछ दिन, फिजियोथेरेपी लेजर या अल्ट्रासोनिक वो करानी पड़ेगी, आई थिंक उससे ठीक हो जाएगा।
0: जी डॉक्टर,
1: ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है।
0: बेंगलोर से एक मैसेज है संदीप का, 36 इयर्स के हैं। इनका क्वेश्चन है अबाउट जॉइंट हाइपर मोबिलिटी, जानना चाहते हैं कि जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं उससे हाइपर मोबिल नीज जॉइंट की समस्या ठीक हो जाती है?
1: हाँ, हाइपर मोबिलिटी जो है ये एक तो है डिजीज की वजह से भी होती है, बहुत सारी डिजीज हैं जैसे मार्फन सिंड्रोम, एलनर डॉलर सिंड्रोम, ये सारी चीजें होती हैं, इनकी वजह से भी जनरलाइज लैक्सिटी होती है
0: जी।
1: पर नॉर्मली भी जो लोग ज्यादा बच्चे जो होते हैं जो खेलते हैं, जो जिमनास्ट होते हैं, जैसे आपने डिस्कस थ्रोअर्स, ये इन सब में भी नॉर्मल या हाइपर लैक्सिटी होना ये नॉर्मल है। नाउ स्ट्रेंथनिंग से डेफिनेटली ये कम हो जाती है लेकिन पूरी तरह ऐसे ठीक नहीं होती। स्ट्रेंथनिंग हम सारे जितने जो बच्चे होते हैं जो हाइपरलैक्स होते हैं, जिनको हाइपरलैक्सिटी होती है, सबको एडवाइस करते हैं क्योंकि स्ट्रेंथनिंग से जो हाइपरलैक्सिटी की वजह से चोट लगने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। हाइपरलैक्सिटी कोई डिजीज नहीं है, हाइपरलैक्स जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर खेल पाते हैं, ज़्यादा तेज भाग पाते हैं और उनके जो एक्टिविटी लेवल होता है, जो थ्रोइंग पावर होती है, वो हमेशा ज्यादा होती है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है। हेलो
2: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं जयकिशन अग्रवाल, साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ
0: जी। सवाल पूछे जयकिशन।
2: मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें

0: पहले हम लोग खाट पे और रुई के गद्दे पे सोते थे तो कमर ठीक रहती थी, अब नॉर्मल गद्दे पे हम डल्लब के गद्दे पे सोते हैं तो हमारे को कैसा गद्दा यूज करना चाहिए जिससे कि कमर हमारी बिल्कुल ठीक रहे। नंबर दो, जिन औरतों का, जिन महिलाओं का 25-26 साल में फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो जाता है तो देखने में आता है कि भाई 10-15 साल के बाद 35-36 साल की उम्र में उनके कमर में दर्द रहने लग जाता है, फिर वो दर्द की गोलियां खाने लग जाती हैं, तो क्या ये उचित है या नहीं है। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यूरिक एसिड की आपने बात की है तो यूरिक एसिड ना बढ़े तो हमें ऐसी क्या सब्जियां क्या चीज खानी चाहिए जिससे कि हमारा यूरिक एसिड ठीक रहे। मैं टेलीफोन सुन रहा हूँ, मेरा रेडियो नहीं है
1: जी। आप टेलीफोन पे सुनिए और आपके तीनों सवालों के जवाब आप सुनिए डॉक्टर साहब से।
2: जो पहला सवाल क्या था इनका कि
1: जो बिस्तर गद्दा हम रुई वाले,
2: हाँ रुई वाले गद्दे जो होते थे पहले बहुत बढ़िया होते थे, डेफिनेटली उनसे कमर और बैक की प्रॉब्लम्स कम होती थी। अब जो मैट्रेस हैं आपको जो ना ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना बहुत हार्ड होना चाहिए, तो बीच का होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स मैट्रेस ही आपको पहनना है जो बहुत हार्ड होता है, तो अपने हिसाब से आप देखिए कौन सा बेटर रहता है। पर डेफिनेटली जो मोटा रुई का गद्दा अभी भी बहुत बेहतर है, उससे डेफिनेटली कमर में दर्द हमने देखा है कि कम होता है लोगों को। दूसरा जो सवाल आपने किया वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल मिथ्या है। इसका मतलब फैमिली प्लानिंग से कमर दर्द का जरा भी रिलेशन नहीं है, तो ये तो आप दिमाग से बात निकाल दीजिए और आई थिंक बाकी जो शुरू होते हैं वो भी निकाल दें। तो तीसरी बात यूरिक एसिड बढ़ने का है, यूरिक एसिड आम तौर पे बीमारी है, हाइपर यूरिसीमिया बीमारी होती है, इसमें एंजाइम्स की कमी होती है, इसकी वजह से कुछ लोगों में यूरिक एसिड बढ़ता है, हर किसी में नहीं बढ़ता है। हर कोई जितना भी प्रोटीन खा ले, प्रोटीन जो होता है उससे यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन हर किसी में नहीं होता है। ये जिनको वो बीमारी होती है उन्हीं में हाइपर यूरिसीमिया होता है, उनको प्रोटीन डाइट कम करने की रिकमेंडेशन है, हर किसी को नहीं।
1: डॉक्टर साहब अब ये कैसे पता करें कि अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो वेजिटेरियन सोर्स है या नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, तो हमें उससे समस्या हो जाएगी या होगी तो उसका हम कुछ इलाज कुछ टेस्ट करा सकते
2: हैं? बेसिकली है कि यूरिक एसिड सेरम यूरिक एसिड होता है, हम सबको बेसिकली जो यंगर जनरेशन है एवरी 5 ईयरली और जो थोड़े ओल्डर है एवरी 1 ईयरली हेल्थ चेकअप कंप्लीट कराना चाहिए, कंप्लीट ब्लड टेस्ट हमारे कराने चाहिए। जो कंप्लीट ब्लड टेस्ट आजकल काफी चीप होते हैं सस्ते होते हैं, तो उनमें सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं और लिवर का किडनी का जो KFT होता है उसका यूरिक एसिड भी होता है, और हमें बेसिकली रेगुलर लिपिड प्रोफाइल ये रेगुलर हमें कराना चाहिए जिसमें हमें सब कुछ पता लग जाता है कि क्या बढ़ रहा है। अगर उसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है तो डेफिनेटली आपको दवाई कम करनी पड़ेगी। नॉर्मली यूरिक एसिड से दर्द बहुत तेज होते हैं और वो पता लग जाता है, हमें डॉक्टर्स को पता लग जाता है कि ये यूरिक एसिड की वजह से है।
1: ऑलराइट डॉक्टर साहब, एक मैसेज है अलोका का, मैसेज है 51 इयर्स ओल्ड की ये हाउसवाइफ है, अलोका इनका नाम है, नोएडा से मैसेज कर रहे हैं और ये डेली मॉर्निंग वॉक करती हैं, योगा करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, लेकिन बारिशों के समय में इनके जॉइंट में तकलीफ हो जाती है, तो ये कोई हेल्दी तरीका चाहती हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए?
2: हेल्दी तरीका है जॉइंट पेन जो मैंने पहले ही बताया, विद एज डेफिनेटली कोलेजन स्टिफ हो जाता है। एक्सरसाइज करें, अगर आप वॉक पे नहीं जा सकते हैं बारिशों के मौसम में तो आप साइकिलिंग करें, आप स्ट्रेंथनिंग करें, ठीक है। साइकिलिंग और स्विमिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप कर सकें। बाकी बचने के लिए है कि आपको बारिश के मौसम में जैसे ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है, वाटर इनटेक आपको 2.5 से 3 लीटर बढ़ाना है, और साथ में आपको डाइट में जैसे आपको बताया है कि ग्लूकोसामीन जो हमारे सब्जियां और ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये आपको इंक्रीज लेने, और एक्सरसाइज अगर आप वॉक नहीं कर पाते हो तो आप स्ट्रेंथनिंग करें उस दौरान।
1: जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज है हमारे रेगुलर लिसनर हैं मोहम्मद सरफराज आलम, और ये कहना चाह रहे हैं कि 4-5 दिन पहले से इनकी कमर से लेकर पैर तक काफी दर्द था और मूवमेंट करने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी, तो इसको क्या उन्हें समझना चाहिए?
2: हो सकता है इन्होंने कुछ भारी चीज उठाई हो, ये जो बता रहे हैं ये डिस्क का प्रॉब्लम लगता है, तो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए इमिडिएटली, वो बताएगा कितनी सीवियरिटी है। अगर बहुत सीवियर है तो MRI करा के कन्फर्म करेंगे और अकॉर्डिंगली दवाइयाँ या जो भी ट्रीटमेंट चलेगा। अगर बहुत कम सीवियर, अगर डॉक्टर को लगता है कम है, तो आई थिंक दवाइयों से मसल रिलैक्सेंट और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और मैसेज है, जितेंद्र पाटिल है महाराष्ट्र जलगांव से, और इनकी मदर की एज 62 है, वेट 77 kg है, और उनके घुटने में दर्द बहुत ज्यादा है, और ये 2 मंजिला इमारत में रहते हैं और उतार चढ़ाव की वजह से समस्या काफी हो जाती है।
2: 62 एज है और घुटनों में दर्द है, तो डेफिनेटली घुटनों की जो नॉर्मल एज रिलेटेड आर्थराइटिस है वो उनको होगी। अगर इनको बहुत सीवियर है तो डेफिनेटली सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना इनको या तो शिफ्ट कर सकते हैं नीचे वाले घर में तो बेहतर है, अगर नहीं जो कि नहीं भी हो पाता है लोगों से तो बहुत ज़रूरी हो जो एक बार चढ़ना और एक बार उतरना वो ही करें, साथ में एक्सरे कराएं और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है अगर डॉक्टर सलाह देता कि घुटना बदलना पड़ेगा तो घुटना बदलना पड़ेगा, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ऊपर नीचे भी चढ़ पाएंगी आराम से। अगर लगता है कि नहीं है एक्सरे में और इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है तो कुछ दवाइयाँ और एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा।
1: ऑल राइट डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, हेलो।
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्ते
3: मैम, मैं पवन शर्मा बोल रहा हूँ नोएडा से।
1: पवन जी स्वागत आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछें।
3: धन्यवाद। मेरे घुटनों में पेन रहता है और मुझे आई थिंक टेनिस एल्बो भी है, तो इसमें सिकाई करनी है तो कौन सी करनी है, बर्फ वाली करनी है या गर्म वाली करनी है?
2: टेनिस एल्बो में बर्फ से करनी है और घुटनों में गर्म वाली करनी है आपको, और एक्सरसाइज दोनों में स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेज होती हैं अलग अलग तरह की। टेनिस एल्बो के लिए अलग एक्सरसाइज होती हैं, आप यूट्यूब पे देखेंगे आपको मिल जाएंगी, और घुटने के लिए तो एक्सरसाइज बहुत कॉमन है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी फोन करने के लिए, अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
4: हेलो
1: जी, कौन बोल रहे हैं?
4: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं।
4: देवेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ जी, मेरठ से।
1: जी देवेंद्र जी, आप सवाल पूछे अपना।
4: हाँ जी, ये कोहनी, हमारी कोहनियों में दर्द हो रहा है, क्या आर्थराइटिस से संबंधित है ये?
2: आपकी उम्र कितनी है?
4: मेरी 60।
2: कोहनियों में जो दर्द होता है दो तरह के, गोल्फर एल्बो या टेनिस एल्बो कहते हैं, और आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है। अब ये तो देख के पता लगेगा कि कैसा दर्द है, ठीक है, तो ये आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वही आपको बता पाएगा कि क्या एग्जैक्टली है, और हर चीज का ट्रीटमेंट है और ठीक हो जाएंगे आप फिजियोथेरेपी से।
4: ऐसे सोचते हैं जी कभी ऊपर के ऊपर रह जाए, नीचे के नीचे, ऐसे सीधे करते हो?
2: ऊपर के ऊपर सीधे के सीधे रहता है तो हो सकता है आर्थराइटिस हो रही हो, तो ये एक्सरे करा के ही पता लगेगा कितनी सीवियर है, और हर चीज का ट्रीटमेंट है, और अगर आर्थराइटिस है तो अकॉर्डिंगली इलाज किया जाएगा, अगर टेनिस एल्बो है तो अकॉर्डिंगली किया जाएगा।
1: धन्यवाद फोन करने के लिए। हेलो।
5: हेलो
1: जी, कौन बोल रहे
5: हैं? इमदादुल, वेस्ट बंगाल से।
1: सवाल पूछे।
5: हाँ जी, जो पेन के लिए जो आइस पैक यूज करते हैं वो क्या सही है?
2: किसके लिए?
5: आइस पैक,
1: पेन के लिए।
2: हर पेन के लिए आइस पैक नहीं यूज किया जाता है, जो अक्यूट पेन होती है, जो इमीडिएट चोट लगी है उसमें आइस पैक किया जाता है, और जो नॉर्मल बहुत लंबे दर्द होते हैं उसमें हॉट पैक यूज किया जाता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगहें जैसे मैंने बताया टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बो, जो बोनी पॉइंट्स होते हैं, जो प्लांटर फेशियाइटिस, उसमें आइस पैक यूज किया जाता है, ठीक है
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर एफएम रेनबो दिल्ली 102.6 पर। हम बस एक छोटे से अंतराल के बाद लौट कर आते हैं, आप कहीं ना जाएं, हमें संपर्क करें अगर आपके जोड़ों में है कोई भी समस्या।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: वेलकम बैक टू द शो रेडियो डॉक्टर। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं आज के कार्यक्रम में। हेलो।
2: हेलो
1: जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं डॉक्टर भानु बोल रहा हूँ
1: जी। अपना सवाल पूछें।
2: दिल्ली से। एक्चुअली मैं जब सोता हूँ रात में एसी ऑन करके, एक बार मुझे पेन बहुत ज्यादा हो गया था, मैं उठ भी नहीं पा रहा था। मेरे लेफ्ट कंधे में पेन होता है और अभी दवा लिया था, ठीक हो गया था।
1: भानु जी, आपसे गुजारिश है, अपना सवाल एक बार दोहराएं आप।
2: जी, मैं एक्चुअली एसी में सोने की वजह से मेरे बाएं कंधे में दर्द शुरू हुआ था
1: जी,
2: और अभी वो हल्का हल्का लगभग एक महीने से होता ही है, वो क्यों हो रहा है
1: जी? अच्छा अच्छा, तो सोने की वजह से इनके कंधे में दर्द।
3: एज कितनी है आपकी, उम्र कितनी है?
2: 33
3: एज में जनरली एसी से रिलेटेड डेफिनेटली, अगर एसी से, अगर उस ज्वाइंट में कोई भी दर्द अगर आपको पहले से था तो डेफिनेटली एसी में सोने से या ठंड में वो बढ़ जाएगा। जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो डायबिटिक्स होते हैं या नॉर्मल पॉपुलेशन में भी, एक स्टिफ शोल्डर प्रॉब्लम होती है या एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं हम उसको अपनी लैंग्वेज में, उसमें कंधा जाम हो जाता है। जो कंधा जाम हो जाता है वो डेफिनेटली, चाहे मौसम ठंडा हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे सर्दी हो, चाहे एसी के अंदर, डेफिनेटली उसमें जोड़ में स्टिफनेस और दर्द बढ़ जाती है। तो आपको बेसिकली दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को एग्जैक्टली किस वजह से, किसी चोट की वजह से है या नॉर्मल स्टिफनेस है, और अकॉर्डिंगली आपको फिजियोथेरेपी और कुछ स्पेशल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो करनी पड़ेंगी। आई थिंक उससे आपको राहत मिलेगी और दर्द ये ठीक हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, कुछ मैसेजेस हमारे पास है। शशि

0: हैं दिल्ली से, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स आपसे एक बार फिर से जानना चाहते हैं जिनके अंदर ग्लूकोसमाइन जो एक तत्व है वो मिलता है।
1: जिस जिन भी फ्रूट्स में पल्प होता है, जैसे मैंगोज हो गए, जैसे ऑरेंजेस हो गए, जिसमें पल्प ज्यादा होता है, वो डेफिनेटली उसमें ग्लूकोसामीन मोस्टली सब में ही होता है, लेकिन जिनमें जो पल्पी होते हैं और जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें लीव्स ज्यादा होते हैं, उनमें ग्लूकोसामीन काफी अधिक मात्रा में होता है। तो आई थिंक सबको ये एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए।
0: लेना चाहिए। हेलो,
2: हेलो।
0: कौन बोल रहे हैं?
2: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, आप कौन बोल रहे
2: हाँ,
0: हैं?
2: नीलम बोल रही थी, दिल्ली से ही बोल
0: जी,
2: रही हूँ।
0: सवाल पूछे नीलम जी।
2: तो हाँ जी, सर को भी नमस्कार जी। सर, मेरे को
1: नमस्कार
2: ना
1: जी,
2: ये जानना
1: नमस्कार।
2: है, मेरा जो लेफ्ट नी है ना,
1: हाँ
2: तो
1: जी,
2: उसके नीचे ना काफ मसल्स में मेरे को दर्द रहता है काफी टाइम से है सर। और ये ना ज्यादातर खाना खाने के बाद होता है और पूरा फिंगर्स तक जाता है, एंकल तक भी जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा चुकी हूँ पर आराम नहीं आ रहा सर वैसे। तो यही थोड़ा मतलब आपकी ओपिनियन लेनी थी। और नसों की भी
1: जो
2: जांच कराई है मैंने, उसमें भी कुछ नहीं निकला
1: अच्छा
2: मेरे को ना।
1: डॉपलर भी आपको नॉर्मल
0: जी
1: निकला।
0: सुनिए
2: हाँ जी,
0: जी,
2: हाँ
1: ठीक
2: जी,
1: है, अगर आपको डॉपलर भी नॉर्मल है, वेन्स की प्रॉब्लम नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें रूल आउट यही करनी चाहिए कि वेन्स में थ्रोम्बोसिस ना हो, वो काफ़ी रिस्की चीज़ होती है। दूसरा जो है, इट इज़ बेसिकली जो काफ पेन्स होते हैं वो बहुत सारी डेफिशिएंसीज की वजह से भी होते हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट जो हमने देखा है, अगर वाटर इंटेक ठीक ना हो, जो हमारे पेशेंट्स में जो भी मैं एडवाइस करता हूँ कि वाटर इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.5 से लीटर बॉडी को जरूरत पड़ती है। अगर इससे कम पानी पियेंगे तो मसल स्टिफ रहेंगी और पेन करेंगे, उनमें क्रैम्प्स ज़्यादा होंगे। दूसरी चीज जो रीजन हो सकता है कि आपकी मसल पुली हुई हो, क्रॉनिक मसल इंजरी हुई हो काफ की, तो उसके लिए रेगुलर रोलिंग और स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, जो कि आपको ट्रेनर या फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा कैसे इसको आपको स्ट्रेच करना है। और आपको विटामिन ई और आई थिंक मैग्नीशियम की टैबलेट्स लेंगे, तो ये भी हम कुछ लोगों में देते हैं जिनमें काफ पेन्स होते हैं। और विटामिन डी और कैल्शियम डेफिनेटली आपको 2 से 3 महीने साल में लेना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, एक मैसेज है हमारे पास, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा लेकिन कह रहे हैं कि 12 वर्षीय इनकी बेटी है जिसके पैर में प्लांटर वॉट नाम की समस्या हो गई है, तो कॉजेज और ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं।
1: प्लांटर वॉल्ट हो सकता है, वॉट्स बेसिकली स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, और बेसिकली आपको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना है। ये या तो वो दवाई देंगे लगाने के लिए, उससे कम हो जाएंगे, या फिर एक्सरसाइज करना पड़ सकता है। वॉट्स के काफ़ी सारे ऑटोइम्यून कॉजेज भी होते हैं, तो वो ब्लड टेस्ट से रूल आउट करने पड़ेंगे कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ब्लड में। ऑटोइम्यून प्रॉब्लम अगर है तो फिर अकॉर्डिंगली उसकी मेडिसिन चलेंगी या दवाइयाँ चलेंगी। पर मोटा मोटा ये है कि वॉट काफ़ी कभी बार पेनफुल होते हैं, तो वो अगर पेनफुल है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं या कॉस्मेटिक सर्जन को दिखाएं, वो एक्सरसाइज या लेजर या कॉटरी से एक्साइज कर देंगे
0: जी
1: उसको।
0: डॉक्टर साहब, एक मैसेज है, 50 वर्षीय इनकी मदर की एज है और पिछले 13 वर्षों से हर समय उनके जॉइंट्स में पेन रहता है और सीढ़ी चढ़ने और कोई भी काम करने में, जैसे कि बहुत सारी समस्या हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आरए फैक्टर कहते हैं कि बड़ा रहता है, तो सोल्यूशन कुछ आप बताएं जो कि बहुत देर से आप बता रहे हैं।
1: आर ए फैक्टर जो है, ये डेफिनेटली ये इन्फ्लामेटरी, जैसे हमने बताया अभी तक तो एजिंग हम बता रहे थे, आर ए फैक्टर पॉजिटिव मतलब 40 और हम इनको 37 साल के आस की उम्र से ये प्रॉब्लम है। सो जो ये ऑटो इम्यून या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ब्लड में आर ए फैक्टर बड़ा हो, तो इन्फ्लामेशनरी आर्थराइटिस है इनको, तो ये कहीं जाएगी नहीं, ये ब्लड शुगर की तरह है, थायराइड की तरह है, ब्लड प्रेशर की तरह है। इसमें दवाई स्पेशल दवाइयाँ होती हैं, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब भी की होंगी, अगर आपको आपने दिखाया होगा, जो रेमेटोलॉजिस्ट हैं या ऑर्थो सर्जन आप किसी को भी दिखा सकते हैं। एक स्पेसिफिक दवाइयाँ, सेट ऑफ दवाइयाँ होती हैं जो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं। ये कम ज़्यादा हम करते हैं सीजन के हिसाब से, जैसे सर्दियों में हम बढ़ा देते हैं दवाइयाँ और गर्मियों में हम कम कर देते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, ओम प्रकाश हैं, ओम प्रकाश खंडेलवाल हैं उज्जैन से। जब यूरिक एसिड बढ़ता है शरीर में तो कहाँ कहाँ तकलीफ होती है?
1: सबसे इंपॉर्टेंट है मेटाटार्सोफेलिंजियल जॉइंट कहते हैं, जो हमारा टो है, हमारा जो पैर का जो अंगूठा है, बड़ा अंगूठा है, सबसे पहले दर्द वहाँ होता है और बहुत तेज दर्द होता है, और उसमें सूजन इतनी आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है कि चला ही नहीं जाता, नींद नहीं आती, इतना ज़्यादा दर्द होता है। ये कॉमनेस्ट है, बाकी लेकिन किसी भी जोन में जैसे नी में या हील के अंदर, वहाँ भी दर्द हो सकता है, पर कॉमनेस्ट इस जॉइंट में होता है।
0: डॉक्टर साहब, कुछ घरेलू इलाज भी होते हैं किसी तरह के दर्द के, अगर जॉइंट्स में कहीं पेन है तो, ये भी लिसनर जानना चाहते हैं।
1: अगर घरेलू इलाज, हम हम लेके चलें कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म ट्रीट, हम हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है दवाइयाँ, दर्द की दवाइयाँ होती हैं वो, मतलब अगर दर्द ज़्यादा हो तो ले लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लें, दर्द में रहने की ज़रूरत नहीं है। और दर्द के साथ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। जो एक्सरसाइज है वो ही लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है जो दर्द को दोबारा रिकर करने से रोकेगी, जो दोबारा होने से रोकेगी।
0: डॉक्टर साहब, मेरठ से एक लिसनर कहते हैं कि इनकी एक फिंगर में बहुत दर्द होता है हाथ में, तो उसका क्या कारण हो सकता है?
1: एज बताइए इन्होंने,
0: कुछ नहीं लिखा इन्होंने।
1: फिंगर में दर्द एक है, चोट लगी हो सकती है, जैसे मुझे भी एक बार क्रिकेट में चोट लग गई थी, बड़े टाइम बाद ठीक हुई थी। सो एक फिंगर में जो दर्द होती है वो जनरली चोट लगने की वजह से होती है। जो दूसरे कॉज हैं वो होते हैं ट्रिगर फिंगर हो सकती है, टेंडन में इन्फ्लामेशन हो सकती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, मच्छर भी काट जाएगा उससे भी इन्फ्लामेशन हो सकती है टेंडन में, तो आपको दिखाना पड़ेगा ऑर्थोपेडिक सर्जन को, वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे और ट्रीटमेंट करेंगे।
0: और छोटी मोटी कहीं पे अगर कोई दर्द होने लगता है तो उसे ज्यादा परेशान होने के बजाय थोड़ा सा देखेंगे कितने समय तक दर्द है, हाँ, और फिर डॉक्टर को दिखाएं।
1: डेफिनेटली आप आइस पैक लगाएं, बर्फ से सिकाई करें अगर इमीडिएट दर्द स्टार्ट हुआ है आपका, वेट करें, ज्यादा पेन किलर्स नहीं लें। आई थिंक सिंपल पैरासिटामोल की टैबलेट आई थिंक काफी होती है अगर बहुत दर्द है। दो तीन दिन वेट करें, आई थिंक दो तीन दिन में ठीक हो जाता है, अनलेस एंड अंटिल इतना दर्द है कि बर्दाश्त से बाहर है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज है, वीना जी पूछ रही हैं, 35 इयर्स की हैं, कहती हैं कहीं भी अगर नस दब जाती है तो उसके बाद पूरी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है और हिचकी भी आती है।
1: ऐसा चेस्ट का कोई लिंक नहीं है, हिचकी अलग प्रॉब्लम है। नस जो चढ़ना है, जो मैं समझ रहा हूँ इनसे, वो है क्रैम्प। जो क्रैम्प है वो बड़े सारे कॉज होते हैं और सबसे कॉमनस्ट कॉज जैसे मैंने बताया पानी कम लेना और कैल्शियम और विटामिन डी कम लेना, ये कॉजेज सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। तो जनरली क्रैम्प, एक मसल में अगर क्रैम्प आया तो जनरली वो डेफिशिएंसी तो पूरी बॉडी में है ना, तो दर्द हमेशा पूरी बॉडी में रहता है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर ले लेते हैं। हेलो
3: हेलो
0: जी, जी कौन बोल, नमस्कार जी, नाम बताएं जल्दी से।
3: जी मैं मनोज, किशनगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
0: जी मनोज जी, सवाल पूछें, समय कम।
3: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार।
3: मेरा प्रश्न ये था सर कि मेरे दाएं कंधे के ज्वाइंट में जो ये काफी पुराना दर्द है और मूवमेंट वगैरह सब सारा सही है, डॉक्टर को भी दिखाया, एक्सरे में भी कुछ नहीं निकलता है, लेकिन हाथ वगैरह उठाने वगैरह में ये दर्द करता है, ये कंटिन्यू बना हुआ रहता है, ये लगभग 12 से 15 साल से ये कंटिन्यू है सर।
1: आपने MRI कराया होगा?
3: MRI तो नहीं कराया, मैं एक्सरे कराया था, एक्सरे में कुछ नहीं आया।
1: तो मोस्टली अगर आपकी मूवमेंट बिल्कुल ठीक है, मतलब आपको स्टिफ शोल्डर नहीं है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस आपको नहीं है, तो हो सकता है एक मांसपेशी होती है जिसको हम कहते हैं रोटेटर कफ, वो काफी बार इस एज में, इस उम्र में टूट जाता है या टेयर हो जाता है या पार्शियल इंजरी हो जाती है, उसमें थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से दर्द बना रहता है और रात को सोने में भी तंग करता है। तो इसमें नॉर्मली MRI करा के कन्फर्म करना चाहिए वेदर वो टेयर है कि नहीं है। अगर टेयर है तो इलाज उसका डिफरेंट है, अगर टेयर नहीं है या पार्शियल टेयर है तो उसमें कंधे में कई बार इंजेक्शन देना पड़ता है और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं कंधे की जो हमें स्ट्रेंथन करना पड़ता है जिससे ये दर्द जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब अब मेरे कुछ सवाल हैं क्योंकि समय बहुत कम है और अब मैं सोचती हूँ कि मैं अपने सवाल आपसे पूछ लूँ। जब भी शरीर में कहीं दर्द होता है तो जनरली हमारा मन में आता है कि हम जाकर एक पेन किलर ले लें या फिर ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ले लें, क्या ये सही तरीका हो सकता है?
1: नहीं, डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि एकदम से अगर दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा वेट करें, सिकाई करें, हॉट पैक लगाएं। पेन किलर के हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं
0: जी,
1: पर यह भी नहीं है कि अगर आपको बहुत दर्द है आपको बर्दाश्त ही करना है। अगर बहुत ज्यादा पेन दर्द है तो आप मतलब पैरासिटामोल 650 mg आप ले सकते हो, आप देखें थोड़ी सेफ मेडिसिन है ये। अगर मसल पुल है, बिल्कुल ही चला नहीं जा रहा, तो आपको मसल रिलैक्सेशन लेने पड़ेंगे। पर एज सच है कि इमीडिएट थोड़ा वेट करें, सिकाई करें, थोड़ा रेस्ट करें, बॉडी को रेस्ट दें, हील करने का पहले मौका दें दवाई लेने से पहले।
0: डॉक्टर साहब सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा है, तो चलते चलते हमारे लिसनर्स को कुछ आप सुझाव, कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे कि वो अपने जॉइंट्स को लंबे समय तक दुरुस्त रख पाए।
1: सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों को, बचपन बच्चों के लेवल पे लेके जो ये जो फूड खाते हैं, जो जंक फूड है, डेफिनेटली मैं मना तो नहीं करूंगा, क्यों मानेंगे तो नहीं, तो लेकिन डेफिनेटली हेल्दी फूड खाएं, कैल्शियम ये नहीं है कि बूढ़ों को ही लेना है, बचपन से लेके लेना शुरू करना पड़ेगा एडिक्वेट अमाउंट में, और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो पीक ऑस्टियोकैल्शियम लेवल है, पीक बोन लेवल है, वो 30 साल की उम्र में होता है, उसके बाद वो घटना शुरू हो जाता है। तो जो आपको पीक बनानी है वो ऐसी बनानी है कि आपका ओल्ड एज तक नॉर्मल ही रहे, कभी घटे नहीं। जैसे कुछ लिसनर्स बहुत अच्छा कर रहे थे, उनको कोई दर्द नहीं था। एक्सरसाइज करें, वॉक करें अपने हार्ट के लिए, और एक्सरसाइज करें अपने जॉइंट्स के लिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतने विस्तार से इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए, और अभी भी सवाल खत्म नहीं हुए, फोन लाइंस अभी भी बज हो रही हैं यहाँ पर, और मेरे सवाल तो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं हो पाए। बहरहाल आप आए, इतने आपने हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब दिए, जानकारी आपने शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।
0: ऑलराइट लिसनर्स, तो ये था आज का रेडियो डॉक्टर। डॉक्टर

और अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 8 से 9 और देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। पंजाब में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 17,000 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी। और खेलों में भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी के कनीजा ओपन 2026 में जीत हासिल की। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी। तो ये थे अभी तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर आ गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी होस्ट रॉकिंग रश्मि। प्रोग्राम कौन सा है? प्रोग्राम है वही जाना पहचाना, हमेशा का पुराना, आपका अपना यूथ स्पीक्स। जी हाँ, वही प्रोग्राम जिसमें लेकर आते हैं हम एक यूथ आरजे को, जो करते हैं अपने दिल की बात आपके साथ हर सोमवार शाम 4 बजे। तो देखिए ना, आज यूथ स्पीक्स में किसकी है बात, आपके साथ कुछ खास करने के लिए मुलाकात आई है हमारे साथ प्रोग्राम अल्फा जेन के यूथ स्पीक्स में। तो बहुत बहुत वेलकम है जी, अपना नाम बताएं ना, कौन है हमारे साथ आज?
2: हेलो हेलो, हाय, नमस्कार आप सभी को, और मैं हूँ आपकी आरजे फॉर यूथ स्पीक वंशिका।
1: क्या बात है, कितनी स्वीट सी आवाज़ है। फिर तो आपको मेरी आवाज़ बहुत ही ख़राब लग रही होगी, यदि वंशिका इतना स्वीट बोलूँगी ना तो मेरे सारे लिसनर्स जो हैं वो यहाँ से भाग लेंगे, वो कहेंगे भाई हमें तो ना इस वंशिका से मिलना है कि जो इतनी प्यारी सी आवाज़ की मलिका हैं, यदि इतना सॉफ्टली बोलेंगी तो वो यहाँ आ जाएंगे, कैसे चलेगा ऐसे?
2: क्षमा चाहती हूँ रॉकी, रश्मि सॉरी, बट मुझे लगता है कि जैसी आपकी मधुर आवाज़ है उतनी मधुर आवाज़ मेरी अभी तक हुई नहीं है।
1: ऐसा नहीं है, पता है हमारे साथ जनरली क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो आरजेज होते हैं ना उनकी आवाज़ कुछ खास होती है, एक्चुअल में हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमें खास बनाते हैं। तो जो भी बोले, बिंदास बोले, खुलकर बोले, सॉफ्टली बोले, लेकिन दिल से बोले। तो हमारे साथ है वंशिका पाठक, एक बहुत अच्छी मतलब आर्टिस्ट हैं ये, और बहुत कुछ करती हैं। वंशिका, अपने बारे में क्या बताना चाहेंगी?
2: फिलहाल तो यही बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि रॉकिंग रश्मि के साथ हूँ और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि क्या करूँगी, बट उसके अलावा, मतलब आज के शो के अलावा, मैं एक एक्टर हूँ, मैं थिएटर करती रहती हूँ।
1: ओके।
2: तो बहुत से नुक्कड़ नाटक करे हैं, उसके साथ ही साथ बहुत अच्छी कविताएं पढ़ने का और लिखने का शौक है।
1: अच्छा,
2: तो कविताएं लिखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, कहानियाँ पढ़ती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, और फिलहाल अभी सोच रही हूँ कि

0: कुछ अलग और कुछ हटकर क्या कर सकती हूँ, तो सोच ही रही हूँ, कुछ अच्छा ऐसे किया नहीं
1: तो
0: अभी
1: बस
0: तक।
1: यही जो सोच है ना हमारे यूथ आरजे वंशिका पाठक की, या ये कह लीजिए हमारी आज की जनरेशन की, एक नई सोच के साथ यूथ स्पीक्स में है आपके साथ वंशिका पाठक, और मैं हूं आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि।

0: जी हाँ बिल्कुल, इसी जज्बे के साथ हमारे साथ आज कौन है हमारे यूथ स्पीक्स में?
1: आकाशवाणी एफएम रेडियो पे 102.6 पर आपके साथ हूँ मैं यूथ आरजे वंशिका पाठक। सुबह से चल रही है भागदौड़ में, सोचा थोड़ा वक्त निकाल के आपसे अपनी दिल की बात कर लूँ। पता है आजकल हमारी जनरेशन को देखती हूँ तो लगता है हमें कितने अजीब फेज से गुजर रहे हैं। सपने बहुत है, ऑप्शन बहुत है, इंटरनेट पर हर बात का सवाल का जवाब है, लेकिन जब कोई पूछता है कि लाइफ का क्या प्लान है तो बस ब्लैंक हो जाती हूँ। रिलेटिव्स पूछते हैं करियर, शादी, अर्निंग, इन सब के बारे में, और बस स्माइल कर कर सोचने लगती हूँ कि काश काश कोई होता जो बता देता कि क्या करना है आगे। हमें एम्बिशंस भी हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, और महीने की 25 तारीख को बैंक बैलेंस देखकर थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं। बचपन में कितना सिंपल था ना सब, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई एक्टर, कोई टीचर या फिर कोई पायलट। लगता था बड़े होने पर तो अपनी मर्जी से आइसक्रीम खाएंगे, कोई होमवर्क नहीं देगा। फिर एडल्ट हो गया, होमवर्क तो चला गया लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। लिंक्डइन खोलते ही लगता है सबने दुनिया जीत ली है।
0: बिल्कुल, कितने सारे सवाल हैं भाई जेंजी की, इतनी ज़्यादा परेशानी। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था वंशिका कि जो हमारी ये जनरेशन है, आपकी जो जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन फ्री रहती है। बट आपकी टेंशन्स को सुनकर पढ़कर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वाकई में मतलब हमसे ज्यादा टेंशन तो आपके पास है। ऐसा है वाकई में?
1: बिल्कुल ऐसा है रश्मि जी, आपको नहीं पता कैसा चल रहा है, बस लगे पड़े हैं, कहीं नहीं पता है कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि घर जाके मम्मी पूछे कि और फिर क्या
0: आज
1: प्लान
0: क्या
1: है
0: किया? तो चलिए वंशिका के साथ करेंगे और भी बातें, लेकिन अभी अभी जितने सारे इन्होंने सवाल पूछे और सवालों का सोचकर इनको चक्कर आ रहे हैं ना, फिलहाल मेरे दिमाग में चक्कर तो नहीं लेकिन एक गाना आ रहा है जो वंशिका की पसंद का है। इसको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और वापस आते हैं प्रोग्राम यूथ स्पीक्स में।

0: एक बार फिर से यूथ स्पीक्स में आपके साथ हूँ। मैं आपकी अपनी आरजे रश्मि, और हमारे साथ है हमारी आज की गेस्ट वंशिका। वंशिका, और क्या क्या चल रहा है मन में?
1: रश्मि, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था ये, अभी अभी हमारे दिल में। तो अभी अभी हमारे दिल में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ, जो कि हम सब समझते हैं।
0: अच्छा,
1: इंटरनेट और उस पर करते हुए स्क्रोलिंग, जो कि अगर 5 मिनट करो या फिर 5 से वो 5 घंटे हो जाए,
0: पता नहीं चलता।
1: जैसे कि मान लीजिए किसी की स्टोरी देख ली और पता लगा कि अरे इसने नई गाड़ी ले ली, भाई का तो प्रमोशन हो गया है, और वो भी 25 लाख का प्रमोशन हुआ है। और फिर ऐसा लगता है कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। एक लड़की मालदीव्स में है, एक की शादी हो गई है, और किसी ने 6 पैक्स बना लिए हैं, और हम यहाँ बेड पर पड़े हुए हैं, एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ में मैगी है। और फिर आता है वो कंपैरिजन, वो बहुत ही ख़तरनाक कंपैरिजन, जो कि लगता है कि ये कैसे इनकी लाइफ इतनी आसान हो गई और मेरी इतनी ख़राब। तो उसके लिए रश्मि, कौन है वो जो डालेगा अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल?
0: बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब वाकई में कौन इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालेगा और कहेगा भैया मेरी जिंदगी में ये भी टेंशन है।
1: या फिर बिल्कुल, या फिर कोई कहेगा कि आज मैं 1 घंटा रोई हूँ क्योंकि मेरे मैनेजर ने बोला है लेट्स कैच अप आफ्टर दिस मीटिंग। कौन डालता है ये सारी बातें?
0: और ये टारगेट है जो उसको पूरा नहीं किया है, तो यदि शाम तक ये टारगेट नहीं हुआ तो यू आर फायर्ड।
1: बिल्कुल, मतलब जॉब कब चली जाए भैया को भी नहीं पता है, लेकिन जॉब की खुशी तो डाल दी है हमने। हर कोई सनसेट के बारे में डालता है ना।

0: कोई भी ट्रैफिक जाम या सैटरडे या संडे के लिए 2 घंटे ऑफिस जाने पड़ता है वो नहीं डालता है। सो जब भी अगली बार किसी भी की जिंदगी देखे और लगे कि अरे इसका तो सब कुछ सॉर्टेड है, थोड़ा सा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर लेट्स कैच अप लेटर वो हमको नहीं पता है। एंड प्लीज कंपैरिजन कम करिए, थोड़ा स्क्रॉलिंग भी कम करिए इंटरनेट पर, और अपनी एक्चुअल लाइफ में थोड़ी ज्यादा स्क्रॉलिंग करिए।
1: सच मानिए तो दोस्तों, ये बात बहुत ही अच्छी बोली है वंशिका ने कि कितना ज़्यादा हम इस बात को सोचते हैं कि जहाँ हम एक बार स्क्रॉलिंग शुरू करते हैं ना, अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू हो या लैपटॉप्स के थ्रू हो, वो कब 5 सेकंड से 5 घंटे की हो जाती है और हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है. और उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम उसको प्रोडक्टिव बनाएं इंस्टेड कि उसको हम टाइम को वेस्ट करें. और ख़ास तौर पर ये जो इस वक्त हमारे साथ जेंजी बैठी हैं, इनके मन में इतने ख्याल हैं, इतनी टेंशंस हैं, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था. एक नया प्रोस्पेक्टिव आज मेरे सामने आया है इस जनरेशन का. लेकिन ये भी फैक्ट बहुत अच्छा बताया वंशिका ने कि यदि हम थोड़ा सा कम कर लें इन चीजों को, तो वो यकीन मानिए आपकी जिंदगी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी. राइट,
0: बिल्कुल सही कहा रश्मि आपने।
1: तो चलिए एक और ट्रैक सुनते हैं. मोहित चौहान की आवाज है और गाना तो ऑब्वियस सी बात है बहुत खूबसूरत है.

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
3: तो आपके साथ है आपकी RJ वंशिका FM रेडियो पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं यूथ एक नई सोच। और जैसा कि हमने अभी सुना, जहां बनी चाहता था कि वो उड़ना चाह रहा है, दौड़ना चाह रहा है, भागना चाह रहा है, बस रुकना नहीं चाह रहा, जिसके लिए उसने नैना को भी छोड़ दिया, उसी तरीके से आज का यूथ काफ़ी परेशान है अपने करियर को लेकर। और जैसा कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं या फिर रिलेटिव्स चाहते हैं कि स्कूल में बेटा मार्क्स कितने आए, कॉलेज में बेटा प्लेसमेंट हुई, जॉब में बेटा पैकेज कितना लगा है, और शादी के बाद बेटा गुड न्यूज़ कब दे रही हो। कैन वी प्लीज़ हैव वन स्टेज ऑफ लाइफ वेयर नोबडी आस्क क्वेश्चंस एंड देन एवरीवन, जहाँ पर सब लोग खुश हैं, चाहते हैं अपनी खुशियाँ बताना, और एक अलग सी ज़िंदगी के ऊपर हम चल रहे हैं, जहाँ पर हम सब डिसाइड ही कर रहे हैं कि लंच में क्या बनाना है। कन्फ्यूजन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। 21 पे पता नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, ये नहीं पता कि जब 25 हो जाएंगे तो क्या हम करियर बदल सकते हैं कि नहीं, या फिर 30 पर आने के बाद कुछ करना है या 40 के आने के बाद करना है। हमें लगता है कि शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी या ज़िंदगी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई डेडलाइन नहीं है चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए
4: जी।
3: कोशिश करते रहना है, चलते रहना है, क्योंकि ज़िंदगी का जो स्टेयरिंग है वो हमारे हाथ में है।
4: बिल्कुल,
3: जैसे बनी ने अपने हाथ में ले रखा था, वैसे हमें भी अपने हाथों में इस जिंदगी की स्टेयरिंग को रखना पड़ेगा।
4: बिल्कुल रखना पड़ेगा। और कहते भी हैं यही कि भाई ज़िंदगी है, मंजिल भी ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ और पूरी कोशिश के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। और ऐसा ही कुछ कह रहे हैं हमारे लकी अली इस गाने में। चलिए गाने को एंजॉय करते हैं और वापस आती हूँ आपके पास एक बार फिर से आपके अपने प्रोग्राम अल्फा जेन के यूथ स्पीक्स में।

0: दोस्तों, यूथ की लाइफ भी तो एक सफ़रनामा ही है। कभी डेस्टिनेशन पता होती है तो रूट नहीं, कभी रूट पता होता है पर बीच में प्लान ही चेंज कर देते हैं। और हमारी जेनरेशन की सबसे खास बात यही है, हम हर चीज़ का जवाब पहले से लेकर नहीं चलते। हम कोशिश करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी कभार गलत टर्न भी ले लेते हैं। और फिर इंटरनेट की तरह लाइफ भी बोल देती है रिकैलकुलेटिंग। नई सोच का मतलब भी शायद यही है। ज़रूरी नहीं कि हम वही रास्ते चुने जो हमसे पहले सबने चुना। अपना रास्ता बनाना भी तो एक सफ़र का ही हिस्सा है। तो अगर आप भी लाइफ के उस फेज़ में हैं जहाँ डेस्टिनेशन थोड़ी धुंधली है, कोई परेशानी नहीं है, विंडो सीट पकड़िए, सफ़र का मज़ा लीजिए। क्योंकि कभी कभी मंजिल से ज़्यादा यादगार सफ़रनामा होता है।
1: क्या बात है, कितनी अच्छी सी बात बोली ना वंशिका ने। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो होता है वो सफ़रनामा, यानी कि आपका सफ़र होता है। और ख़ास बात ये है कि यदि उस सफ़र में आपका कोई मनचाहा साथी आपके साथ हो, चाहे वो एक बुक हो, आपका मोबाइल हो, या फिर आपका हो रेडियो, और रेडियो पर बज रहा हो आपका कोई फेवरेट ट्रैक, तो यकीन मानिए उस सफ़र में चार चांद लग जाते हैं। और आपकी जो मंजिल है वो कब आ जाती है आपके पास, आपको पता भी नहीं चलता। हम बात कर रहे हैं अल्फा जेन के यूथ स्पीक्स में आज की हमारी यूथ गेस्ट वंशिका पाठक के साथ, और मैं हूँ आपकी अपनी, कौन? मैं हूँ रॉकिंग रश्मि।
2: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरा ठाते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं? इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई

भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
5: ठीक है।
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
7: FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जेन, और आज हमारे साथ हैं,
8: मैं हूं आपकी RJ वंशिका पाठक,
7: और वंशिका के साथ मैं हूं आपकी अपनी रश्मि।

0: तो सबसे कंफ्यूजिंग क्या है ये जवानी का? क्या लगता है आपको? खुद को पहचानना, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के पास आपके लिए एक आइडिया है, एक ओपिनियन है। पेरेंट्स को पता है कि हमें क्या करना चाहिए, दोस्तों को पता है कि हमें क्या करना चाहिए, और रिश्तेदार तो बिल्कुल ही जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फिर आता है हमारा सोशल मीडिया, जहाँ पे सुबह 5 बजे उठकर हमें फटाफट जाकर अपना एक मॉर्निंग रूटीन करना है, मेडिटेशन करना है, फिर जिम भी करना है और एक ग्रीन जूस भी पीना है। लेकिन फिर आती है लाइफ की रियलिटी। सुबह 8:30 बजे उठकर अलार्म क्लॉक के साथ लगे पड़े हैं कि बस 5 मिनट और सो जाती हूँ। खुद को जानना, खुद को पहचानना, एस्थेटिक हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभार कुछ नया भी ट्राई कर लेना चाहिए, जैसे कि एक किताब पढ़ना चाहिए, कहीं घूमने चले गए, या वो नौकरी छोड़ दी जहाँ पर मैनेजर काम खत्म होने के बाद भी रोक लेता है, कुछ नए लोगों से मिलना, कुछ चीज़ें जानना खुद के बारे में और खुद को बदलना, क्योंकि बदलाव ज़रूरी है। और जब हम बदलाव करते हैं तो कई बारी वो कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन नहीं बल्कि एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, और हमें पता होता है कि असलियत में हम क्या चाहते थे।
1: बिल्कुल। और ये जो असलियत जब पता चलती है ना, तब हमारी मंजिल हमें क्लियर नज़र आने लगती है, और हमें पता चलता है कि हाँ, हमें वहाँ तक पहुँचना है, और उसका रास्ता जो हमने ऑलरेडी बना दिया है उस पर हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। क्योंकि एकदम से यदि हम रेस लगा देंगे ना, तो शायद उस रास्ते तक हम सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन धीरे धीरे चलकर डेफिनेटली आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे भी, और सक्सेसफुल भी डेफिनेटली होंगे।

0: से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंडो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम चल रहा है यूथ स्पीक्स और आज हमारे साथ हैं हमारी यूथ आरजे वंशिका। वंशिका ने बहुत सारी बातें बताई अपनी जनरेशन के, मतलब प्रोज एंड कॉन्स भी बताए, उनको ये भी बताया कि कितनी सारी चिंताएं लेकर ये जो हमारी जेंजी है ना, ये आगे बढ़ रही है। और उन्हें केवल उन्हीं की नहीं, उनके सपने भी बहुत हैं, उनके डेस्टिनेशन भी बहुत हैं और वो बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ जिन प्रॉब्लम्स को वो लोग फेस कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि हम जो इनके इनसे ऊपर हैं या इनके पेरेंट्स कह लीजिए या इनके जो रिलेटिव्स हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ जनाब थोड़ा सा रुक कर ज़रा इनका साथ दीजिए, साथ में इन्हें बताइए कि हाँ यदि तुम हमारे साथ हाथ पकड़ के चलोगे तो हम तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा जाएंगे। लेकिन साथ साथ इस जनरेशन की बात भी आपको सुननी है, क्या कहते हो वंशिका इस बारे में?
4: बिल्कुल रश्मि, आपने बहुत सही कहा, जनरेशन की बात सुननी है, हम अपनी बात सुनाना चाहते हैं, कोई चाहता है जो हमें सुन के समझे।
3: हाँ हाँ।
4: और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत चीज़ें हो रही हैं और अगर हमें कोई सुन ले तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो परेशानियाँ या मुश्किलें जो हमें सहनी पड़ती है वो हम ना सहे और कोई बड़ा हमें बताकर चला जाए कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे था।
3: बिल्कुल,
4: तो वही है। और आज के इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारी बातें करी हैं, हमने सोशल मीडिया के बारे में बात करी है, हमने फेलियर्स के बारे में बात करी है और सबके बारे में बात करी है। और कितना ब्यूटीफुल है ये कन्फ्यूजन जो आता

0: कहिए, मैं कहूंगी कि ज्यादा कहिए, लेकिन अपने किसी खास को, अपने किसी अपने को आप अपने मन की बात जरूर कहिए, अपने दिल में बिल्कुल मत दबाइए, क्योंकि जब बातें दिल में रह जाती हैं ना, तो शायद वो बवाल बना देती हैं, और बवाल हमें नहीं बनाना है, हमें उस बवाल को ख्याल बने अपने दिल में रखना है, लेकिन साथ साथ अपने किसी अपने के साथ शेयर जरूर करना है। वंशिका, आप यहाँ आई, आपने इतनी सारी बातें की अपनी जनरेशन के बारे में, अपने मन के बारे में, आपको कैसा लगा?
1: बहुत ही अच्छा लगा रश्मि, क्योंकि पहली बार करा है ऐसा कुछ जहाँ पर अपनी जो सोचती हूँ जैसा सोचती हूँ वैसा ही बताया है, कोई फिल्टर नहीं रखा। और ऐसा लगता है कि जो भी मुझे सुन रहे होंगे वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि उनको आज मेरी आवाज़ सुन के और मेरी बातें सुन के अच्छा लगा हो।
0: डेफिनेटली लगा होगा, और मुझे लगता है हमारे सभी लिसनर्स, यदि आपको आप अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, तो आप बिंदास बोल में बिल्कुल बिंदास तरीके से लिख सकते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। वंशिका, आप यहाँ आए, बहुत बहुत बहुत आपका आभार कि आपने हमारे रेनबो के लिसनर्स को इतनी अच्छी बातें बताई भी और अपने मन की बातें शेयर की। इसी के साथ यूथ स्पीक से हम लोग लेते हैं इजाजत।
1: नमस्कार दोस्तों।
0: नमस्कार।

नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अब ये भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य 11 देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बना। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से नया पाठ्यक्रम शुरू किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजाति

भारतीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। पंजाब में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 17,000 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी। और खेलों में भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी के कनीजा ओपन 2026 में जीत हासिल की। और कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, झिलमिलाती रोशनी और मुस्कुराते चेहरों वाले शहर दिल्ली में स्वागत है आप सभी का। एक और शाम और एक और दिन जो दिल्ली की कहानी में अपना एक पन्ना जोड़कर आगे बढ़ गया। दिल्ली को अगर समझना हो तो सिर्फ उसकी बड़ी खबरों को जान लेना ही काफी नहीं है दोस्तों। इस शहर को समझने के लिए उसके मौसम को महसूस करना पड़ता है, उसकी सड़कों की रफ्तार को जानना पड़ता है, उसके रंगमंच और संगीत में ठहरना पड़ता है और उन छोटी छोटी घटनाओं पर भी नजर रखनी पड़ती है जो शहर को हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलती है। मैं हूं विनीता बेदी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स, दिल्ली की धड़कनों, गतिविधियों और खबरों के साथ स्वागत।

सिटी लाइट सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। आज क्या झमाझम बारिश हुई है, मजे ही आ गए। ये बात और है कि अगर आप सड़क पे थे तो कहीं कहीं हो सकता है ट्रैफिक का सामना करना पड़ा हो, लेकिन मैं जब रेडियो आई ना तब मुझे बिल्कुल स्मूथ मिला ट्रैफिक। यानी यहाँ कहीं रेडियो में के आसपास वाली जगहों पे पानी का भराव नहीं था। बहरहाल ये तो बात हुई हमारी। वैसे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज जोगी मतलब एक्सपेक्टेशन है, जो प्रिडिक्शन है, अगले दो दिन तक दिल्ली में आसमान बादलों से घिरा ही रहेगा आमतौर पर, और कई जगहों पे हल्की या थोड़ी सी तेज बारिश भी हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना भी है। अगले दो दिन तक आप इसकी उम्मीद रखिए। वैसे तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान आज 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के आसपास ही रहा है। मतलब ये कि दिल्ली में बादलों की आवाजाही और बारिश के छोटे छोटे दौर मौसम को आज कुछ नरम बनाए हुए हैं। तो आप अगर अब कहीं बाहर निकल रहे हैं तो याद से छाता साथ रखिएगा। दिल्ली का मौसम जो है ना, वो इन दिनों बिना बताए अपना मन बदलने के लिए जाना जाता है। वैसे मन से याद आए, मूड स्विंग्स तो आपके भी काफी हो रहे हैं आजकल, नहीं? कंट्रोल कीजिए मन को, नहीं तो बिन बादल बरसात आ जाएगी।

0: गया है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
5: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
6: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स और मैं हूं विनीता बेदी, दिल्ली की धड़कनों, गतिविधियों और खबरों के साथ आपके साथ हमेशा।

सिटी लाइट्स में आप हैं विनीता बेदी के साथ, और अब बात उस चीज की जिससे दिल्ली का हर यात्री रोज रूबरू होता है, यानी सड़क और ट्रैफिक। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हाल में चलाए गए एक सप्ताह के विशेष अभियान के दौरान यात्रा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 30,000 से अधिक चालान किए। दोस्तों, अभियान में मुख्य रूप से गलत दिशा में वाहन चलाना, बिना हेलमेट दोपहिया चलाना और ट्रिपल राइडिंग जैसे उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ई रिक्शा के संचालन को लेकर भी विशेष कार्रवाई की गई। वैसे दोस्तों, एक बात तो है, सड़क पर नियमों का पालन सिर्फ चालान से बचने का तरीका नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की सुरक्षा भी है जो हमारे सामने सड़क पार कर रहा है, उस परिवार की सुरक्षा भी है जो दोपहिया पर घर लौट रहा है, और उस एम्बुलेंस के लिए रास्ता भी है जिसे शायद किसी की जिंदगी बचाने की जल्दी हो। शहर की रफ्तार जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है दोस्तों सुरक्षित रफ्तार। और ऐसे में ना मुझे

एक ही बात आप लोगों से कहनी है कि इतने चालान होने, इतने ज्यादा अलर्ट मोड पे ट्रैफिक पुलिस वालों के रहने के बावजूद क्या गलत साइड से वाहनों का आना बंद हुआ है? क्या ट्रिपलिंग बंद हुई है या फिर बिना हेलमेट यात्रा करना खत्म हुआ है, या फिर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करना, रेड लाइट जंप करना, तेज रफ्तार में गाड़ी भगाना, इनमें से कुछ भी कम नहीं हुआ ना? किस लिए? हम क्या अपना चालान होने का इंतजार कर रहे हैं? और या फिर हम ऐसा चाह रहे हैं कि किसी को चोट लग जाए और उससे शायद हम रिग्रेट ही करते रह जाएं? नहीं ना, प्लीज़ थोड़ी सी इल्तिजा है आपसे, थोड़ी सी कि ध्यान रखें। एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो थोड़ा ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना उनका भी काम आसान हो जाएगा। नहीं धूप में, गर्मी में, बारिश में, सर्दी में हमेशा वो खड़े रहते हैं और ट्रैफिक के नियमों का पालन होते हुए देखते रहते हैं। तो कीजिए ना आप थोड़ा सा एफर्ट, इतनी सी इल्तिजा आपसे।

और दोस्तों अब एक अहम खबर दिल्ली की कनेक्टिविटी को लेकर भी। आपको पता है डीएनडी फ्लाईवे से जयपुर के बीच दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लिंक का लगभग 9 किलोमीटर लंबा रास्ता खोल दिया गया है। डीएनडी फ्लाईवे से जयपुर के बीच इस नए हिस्से से दिल्ली और दक्षिण पूर्वी हिस्सों के बीच आवागमन को बेहतर बनाने और यात्रा के समय को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। दिल्ली जैसे शहर में जहां हर दिन लाखों लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सफर करते हैं दोस्तों, वहां सड़क का एक नया और बेहतर विकल्प सिर्फ दूरी को ही नहीं घटाता, वो लोगों का समय भी बचाता है। और शहरों में समय बचना जो है ना, वो किसी भी लग्जरी से कम नहीं है। तो फिर मैं आपसे भी ये कहूँगी कि जब भी जहाँ तक हो सके शॉर्टकट की बात नहीं कर रही मैं, लेकिन हाँ ऐसे फ्लाईवेज का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वो आपका समय भी बचाते हैं और ट्रैफिक को स्मूथ भी बनाए रखते हैं ना। तो चलिए फिर से आपको याद दिला देती हूँ कि आप हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम सिटी लाइट्स में दिल्ली की धड़कनों, गतिविधियों और खबरों के साथ। मैं हूँ आपके साथ विनीता बेदी।

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स। मैं हूं विनीता बेदी, दिल्ली की धड़कनों, गतिविधियों और खबरों के साथ। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, चाहे कितना ही मौसम सुहावना क्यों नहीं हो, लेकिन अगर साथ अच्छा ना हो ना तो उतना मजा आता नहीं है। इसलिए अपने दोस्तों की कदर कीजिए।

सिटी लाइट्स विनीता बेदी के साथ। दोस्तों अब जरा दिल्ली की उस दुनिया में चलते हैं जहां सड़कों का शोर पीछे छूट गया है और संगीत, विचार और कला शहर की शाम को एक अलग ही रंग देते हैं। इंडिया हैबिटेट सेंटर में आज शाम 7 बजे स्टीन ऑडिटोरियम में कल्चरल कारवां विरासत 2026 का आयोजन हो रहा है। इसी परिसर में आज गुलमोहर में हिंदुत्व एंड हिंदी स्वराज, हिस्ट्रीज अनफॉरगेटन आइडियाज, इस विषय पर चर्चा भी है। और शाम 7 बजे कैसोरिना में अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पीपीपी इन इंडिया एंड द वे फॉरवर्ड पर बातचीत आयोजित की जा रही है। यानी आज की शाम दिल्ली में संगीत के साथ साथ विचारों के लिए भी भरपूर जगह है। तो अगर आप भी बुद्धिजीवी वर्ग के हैं और इन विचारों को आत्मसात करना चाहते हैं तो आपके लिए आज के लिए परफेक्ट जगह है इंडिया हैबिटेट सेंटर, जहां 7 बजे से कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो हैव अ नाइस टाइम।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
6: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
7: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों एक छोटी सी बात, दिल्ली को अक्सर हम उसकी भीड़, ट्रैफिक और शोर से पहचानते हैं, लेकिन इस शहर का एक दूसरा चेहरा भी है। वही शहर जहां सुबह लाखों लोग अपने काम की ओर निकलते हैं और शाम को वही शहर किसी संगीत ऑडिटोरियम में बैठकर एक सुर सुनता है, किसी मंच पर कहानी देखता है, किसी चर्चा में अपने समय को समझने की कोशिश करता है। यही दिल्ली है दोस्तों, एक साथ बहुत तेज भी और बहुत ठहरी हुई भी। एक तरफ सड़कें हैं, दूसरी तरफ सभागार, एक तरफ ट्रैफिक की आवाज है और दूसरी तरफ तबले की थाप, और इन सब के बीच हम सबकी अपनी अपनी छोटी सी जिंदगी चलती रहती है, आपकी और हमारी। बस जिंदगी तो चलती ही रहेगी, मुस्कुराहटें कायम रखिए, वो ज्यादा जरूरी है।

0: अब दोस्तों आज के सिटी लाइट्स में बस इतना ही। फिर मिलेंगे दिल्ली की कुछ नई खबरों, कुछ नई गतिविधियों और शहर के कुछ नए रंगों के साथ। तब तक जब तक खुद की दोबारा मुलाकात, आपसे अनुरोध कि बारिश हो तो जरा संभल कर चलिएगा, सड़क पर नियमों का पालन कीजिएगा और शाम अगर थोड़ी खाली हो तो उसे सिर्फ स्क्रीन पर मत बिताइएगा, कभी किसी किताब के साथ, कभी कहीं संगीत के साथ या फिर कभी अपनों के साथ भी बिताइएगा। और अपनों से याद आया, आपसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स में प्रवीण शर्मा। ठीक है, एक खास बात, आज इनका हैप्पी बर्थडे है। मना किया था उन्होंने बताने के लिए, अभी भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो बताऊंगी क्योंकि मैं उनको जोर जोर से गा गा के कहना चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। लेकिन वो बहुत सड़ू है, पार्टी ना देनी पड़े ना, इसलिए वो बिल्कुल, अरे हाँ ना कुछ तो बोल दो।
1: यस यस,
0: वहाँ माइक पे, माइक पे।
1: सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का,
0: सभी को क्या विश मैं कर रही हूँ, धन्यवाद आप सभी का कर रहे हो।
1: मुझे पता है वो दिल से दे रहे हैं, जहाँ बैठे हैं वहां से दे रहे हैं।
0: ठीक है दोस्तों, मैं हूँ विनीता बेदी, अब चल रही हूँ सिटी लाइट्स के साथ, इस गाने के साथ आपको यहीं छोड़कर, फिर मुलाकात होगी एक नई शाम, नई खबरों, हमारी दिल्ली की नई रोशनियों के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।

जी प्रस्तुत है अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अब ये भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य 11 देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बना। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से नया पाठ्यक्रम शुरू किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूर में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। पंजाब में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 17,000 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी। और खेलों में भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी के कनिजा ओपन 2026 में जीत हासिल की। और कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी। तो ये तब तक के एफएम रेनबो के समाचार।

नमस्कार, हेलो आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम का, जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। और दोस्तों आज मैसेज का तड़का लगाने आपके साथ स्टूडियो में उपस्थित हो गया आपका दोस्त रोज प्रवीण शर्मा। दोस्तों ऐसे हमें समय समय पर अपने बड़े बुजुर्गों गुरुओं से शिक्षा तो मिलती रहती है, समय समय पर वो हमारा मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। तो आपको आज हमें ये बताना है कि आपके गुरु या माता पिता ने या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा अगर आपको कोई ऐसा गुरु मंत्र, सीख, शिक्षा या ध्रुव वाक्य मिला है जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया हो, आपके जीवन की दिशा बदल दी हो, तो वो वाक्य या गुरु मंत्र क्या था? आप अपने जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070। जी हाँ, 9868107070। और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अपना मनपसंद प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स।

0: एनसीआर ईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम है फ्रेंड्स, अब अपना आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। यह हमें पहला संदेश मिला है प्रेमचंद प्रेमी का धामपुर से। प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि प्रवीण जी नमस्कार, आज के टॉपिक पर अपने माता पिता की सिखाई हुई दो बातें एक मुक्तक के माध्यम से भेज रहा हूँ, कृपया शामिल करें। इन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखकर भेजी हैं। अर्ज किया है, यूं जीवन नैया खेता चल, सुख दुख साथ में लेता चल, दुनिया में कोई मांगे फिर भी सबको खुशियां देता चल, सबको खुशियां देता चल। क्या बात है, बहुत खूब। आगे उन्होंने कुछ और ही पंक्तियाँ लिखी हैं, ये हैं, ये कह रहे हैं, यूं जीवन नैया खेता चल, सुख दुख साथ में लेता चल। और इन्होंने कुछ आगे भी लिखा है, यूं जीवन सफल बना भाई, दुख से मत घबरा भाई, इस पल दो पल के मेले में बस आस के दीप जला भाई, आस के दीप जला भाई। क्या बात है प्रेमचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत पंक्तियां भेजने के लिए। यानी कि आपके जो माता पिता ने आपको यही शिक्षा दी है जो इन पंक्तियों में आपने बताई है, बहुत खूब। संदेश भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

नीलम का दिल्ली से बरवाला से संदेश आया है, आपको कहने आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, सुनते रहिए प्रोग्राम। नीलम जी संदेश जरूर भेजिएगा कि आपको अगर शिक्षा मिली अपने माता पिता से या बड़े बुजुर्ग से तो हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। अगला संदेश हमें भेजा है नरेंद्र सोनी ने देवगढ़ पटियाला से। नरेंद्र जी कह रहे हैं कि हमें जो माता पिता से शिक्षा मिली है वो ये है कि हमारे गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने सिर्फ हमें यही सिखाया है कि जो भी काम करो वो पूरी ईमानदारी के साथ करो। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने भाई, अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो यकीनन उसमें न सिर्फ कामयाबी ही मिलती है बल्कि हम पूरी तरह उसमें संतुष्ट भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं। धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है, ये है रितु गोयल गुड़गांव से, गुरुग्राम से। तो ये है रितु गोयल जी गुरुग्राम से, ये कह रही है कि माता पिता ने एक सीख दी है कि जीवन में धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे खुशी हो या गम हमेशा चीजों को सकारात्मक देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बहुत खूब कहा। आपकी पंक्ति से मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ गई हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये आदाब कर रहे हैं, आपको भी आदाब, ये है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। तो पूरा खान परिवार हमें सुन रहा है भाई, आपसे इतनी गुजारिश है कि अपना अपने दिल की बात हमसे जरूर शेयर करें कि आपको क्या किसी से कोई सीख, कोई शिक्षा, कोई गुरु मंत्र मिला है, अगर मिला है तो क्या था जिसने आपके जीवन की दिशा बदल दी हो। कहीं मैं जाइए दोस्तों, क्योंकि हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से मस्ती भरे गीत के बाद।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप इस वक्त मैसेज मसाला मिक्स की खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं मस्ती भरे प्यारे प्यारे गीत। अगला संदेश हमें भेजा है हीरा मणि वर्मा ने दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। ये कह रहे हैं कि मुझे मिले गुरु मंत्र हैं, मेरी माँ से मिला सहनशीलता व ईमानदारी का संदेश। हीरा मणि जी, बहुत खूबसूरत आपको ये गुरु मंत्र मिला है अपनी माँ से, जिन्होंने आपको कहा सहनशील रहिए, ईमानदार रहिए, बहुत खूब। पंकज ने अमरावती महाराष्ट्र से संदेश भेजा है। ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे टीचर ने एक ऐसा गुरु मंत्र दिया था और वो ये था कि किसी भी काम करते वक्त उसमें निरंतरता आवश्यकता जरूरी होती है, निरंतरता आवश्यक होती है। हमेशा प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। सफलता पाने के लिए कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपके अध्यापक ने कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर जीवन में मुश्किलें भी आएँ तब भी हमें उसका पूरा डट कर उसका सामना करना चाहिए, तभी हम वास्तव में अपनी मंजिल प्राप्त करते हैं, पा पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा संदेश, बहुत ही बढ़िया गुरु मंत्र आपके टीचर ने आपको दिया।

धन्यवाद पंकज जी संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश में भेजा है जनकपुरी नई दिल्ली से प्रदीप सलूजा ने। प्रदीप जी कह रहे हैं कि आप जिस भी फील्ड में हो अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे लगता है आपके बड़े बुजुर्गों से आपको यही संदेश यही शिक्षा मिली होगी कि बिल्कुल भी अगर हमने कोई भी काम करना है पूरी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से करना है, ये बिल्कुल ना सोचे कि हमें कोई देख नहीं रहा है। हम ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि ईश्वर जो है वो सबको देखता है, हमेशा वो हर पर नजर, हर इंसान पर नजर रखता है।

अनिल शर्मा जी का संदेश हमें मिला है सरिता बिहार से। अनिल जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु मेरे पिताजी थे, जिन्होंने गुरु मंत्र जिंदगी में ईमानदारी के राह पर चलो, चिंता मुक्त जीवन जियो, और आज मैं उनके बताए राह पर अटल रहता हूं, चल रहा हूं। इसके अलावा इन्होंने काव्य लेखन के भी गुरु मंत्र सीखे थे, जो आज इनके 70 वर्ष की उम्र में इनके काम आ रहे हैं, जिससे ये स्वस्थ महसूस करते हैं, और ये उनके कृतज्ञ हैं जिन्होंने ये काव्य लेखन के गुणों ने सिखाए थे। अनिल जी, आपका संदेश भेजने के लिए बहुत धन्यवाद, इतने खूबसूरत संदेश के लिए। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ पंक्तियां लेकर भेजी हैं, और पंक्तियां इस तरह से हैं कि बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, झूठ से बचो, सच का ही इस्तकबाल करो। वाह, बहुत खूब। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, कहीं में जाइए, क्योंकि हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से गीत के बाद।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

वेलकम बैक दोस्तों, पुनः आपका ब्रेक के बाद हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। अगला संदेश में मिला है गंजन द्वारा से शमसुल कमर राही का। कह रहे हैं कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरु आ करते थे, मास्टर गुलाम अब्बास जी। उन्होंने हमें एक गुरु मंत्र दिया था जिसे हम आज तक नहीं भूले, और वो गुरु मंत्र था डर। जी हाँ, डर। उन्होंने हमें बताया था, बेटा जिंदगी में कभी वो काम मत करना जिसमें डर हो। क्या बात है, यानी सीधी सी बात है, कभी गलत काम मत करना, किसी का दिल मत दुखाना। बिल्कुल सही संदेश उन्होंने दिया, जिसे आपने अपना गुरु मंत्र माना उस पर आप चल रहे हैं, ये हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। शमसुल जी, खूबसूरत संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

लोनाराम नागौर राजस्थान से कह रहे हैं कि मेरे आदर्श मेरे गुरुजी हैं, जिन उन्होंने मुझे ये शिक्षा दी है कि बी अलर्ट, बी केयरफुल, बी थिंकफुल, बी हेल्पफुल, बी होपफुल और गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। इन बातों ने मेरे जीवन को बहुत ही सरल और सहज बनाया। बिल्कुल सही कहा। इतनी सारी अच्छी बातें, इतनी सारी अच्छी शिक्षाएं उन्होंने आपको दी हैं, जिस पर आप अमल कर रहे हैं और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं, ऐसा हमें यकीन है। लूणाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।

मोहम्मद सरफराज आलम जोकीहाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु प्रेमचंद प्रेमी जी की सलाह पर सुझाव से निरंतर सफलता हासिल कर रहा हूं। हमारे गुरुजी ने अपने गुरु मंत्र सुझाव से हमें हमेशा सदैव प्रोत्साहित किया है और कठिन परिश्रम सेल्फ स्टडी से सफलता हासिल करने का सुझाव दिया है और हमेशा सच्चाई अच्छाई का मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं वो। और ये कहने की इनकी जल्द ही एक पुस्तक संग्रह भी आने वाली है। तो भाई सरफराज साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।

अगला संदेश हमें मिला है, ये है नवलू वरक, गांव मलपण, जिला उत्तर गोवा से। नवलू जी कह रहे हैं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें हर माँ बाप गुरु ही होते हैं और उनकी सीख कभी गलत नहीं हो सकती। माँ बाप की सीख लेकर हर कोई जिंदगी में आगे बढ़ता है और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नवलू जी इतना खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। यकीनन कहते भी हैं कि बच्चे की पहली माँ, पहली जो गुरु है वो माता ही होती हैं, और यकीनन जो माता पिता है वो एक तरह से गुरु ही, गुरु के समान ही होते हैं। बेशक हमें जो फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में ज़रूर मिलती है और हमें गुरु जो हमारे जो हमें शिक्षा दिखाते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन को सफल बनाने में, लेकिन माँ बाप जो हैं वो हमारे माँ बाप ही हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए नवलू जी। दोस्तों कहीं जाइए, हम हाजिर हो रहे प्यारे से गीत के बाद।

0: दोस्तों आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप हमें सुझाव शिकायत और मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारी ईमेल आईडी नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedbackfmrainbow@gmail.com। जी हाँ, feedbackfmrainbow@gmail.com। और सुनना ना भूलें हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। फिलहाल चल रहा है प्रोग्राम मैज मसाला मिक्स, कहीं मत जाइए क्योंकि हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, अपन आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप इस वक्त मैसी मसाला मिक्स में सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। अगला संदेश हमें भेजा है कंचन ने सोनिया बिहार दिल्ली से। तो कंचन जी कह रही है कि मैं आज के टॉपिक पर ये कहना चाहती हूँ कि माता पिता की सिखाई हुई बात जो है वो कभी गलत नहीं हो सकती, वो हमें हमेशा अच्छी बात सिखाते हैं। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि जो झूठ है वो कभी ना कभी पकड़ा जरूर जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कंचन जी, बहुत अच्छी बात आपके माता पिता ने सिखाई, उम्मीद करते हैं इस पर आप हमेशा चलेंगी। शुभकामनाएं कंचन जी, धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक और काफी लंबा संदेश हमें भेजा है लातूर महाराष्ट्र से मनीषा नागर जी ने। मनीषा जी कह रही हैं, ये बात 1997 की है, जब मैं 11वीं में थी, 10वीं में पास हो गई। इसका मेरे घर वालों को बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि मैं पढ़ाई में कमज़ोर थी, पढ़ाई नहीं किया करती थी। 11वीं में मैंने आर्ट साइट ली और मैंने जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमारे सावंत सर थे, और आश्चर्य की बात यह है कि 11वीं में मैं 91% मार्क्स लेकर क्लास में फर्स्ट आई। तब श्री सावंत सर ने मुझे एक पेन, एक पेंसिल, स्केल और इरेजर इनाम में दिया था। ये था मेरी ज़िंदगी का पहला इनाम। तब से मैं मन से पढ़ाई मैंने की, और आज मेरे पास 3 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्रियाँ हैं। 1 डिग्री में मैं यूनिवर्सिटी टॉप 2nd हूँ, बाकी डिग्री में डिस्टिंक्शन पास हूँ, और आज मैं स्कूल टीचर भी हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। आगे क्या इन्होंने कहा कि आज श्री सावंत सर इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनकी वजह से आज मैं एजुकेशन में इतना आगे बढ़ पाई। मेरे साथ मेरे घर वाले अंगद, शुभांगी, काव्य, आरती, दीपक, दीपक सावरी, ये भी सभी रेडियो सुनते हैं। तो वही मनीषा जी, आपका इतना खूबसूरत, इतना अच्छा संदेश हमें मिला। उम्मीद करते हैं कि इस संदेश से हमारे श्रोताओं को भी ज़रूर कुछ ना कुछ शिक्षा मिली होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपने कहते हैं ना, आप एक बहुत ही सुंदर एक पंक्तियां हैं कि करत करत अभ्यास के। बिल्कुल, अगर अभ्यास किया जाए तो क्या नहीं हो सकता। तो अगर हम लगातार प्रयास करें तो जीवन में आगे बढ़ते ही हैं। आपका संदेश इतना खूबसूरत, इसके लिए धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। मेघा मीना खिड़किया मध्य प्रदेश से कह रही है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत धन्यवाद मेघा जी और मीना जी। जावेद आलम मोहम्मद अयान जयपुर से हमें संदेश भेज रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि माता पिता से हमें ये शिक्षा मिली है कि ईमानदारी से काम करो और मन लगाकर काम करो, और कोई भी अगर परेशानी आए, कोई भी तकलीफ आए, तो उसका डटकर मुकाबला करो और आगे जीवन में बढ़ते रहो। और किसी का साथ में इन्होंने ये भी कहा, किसी का विश्वास मत तोड़ो। बिल्कुल सही कहा आपने जावेद जी, अयान जी, संदेश भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, हमें कह रहे हैं कि आप हमें गाने एक से बढ़कर एक सुना रहे हैं और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये है होली चौक उत्तम नगर से। कहीं मत जाइए क्योंकि हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से गीत के बाद।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

दोस्तों, ब्रेक के बारे में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अगला संदेश में भेजा है, ये है सरोज मल्होत्रा साकेत मेरठ से। ये कह रहे हैं कि प्रवीण जी, हमने अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन किताबों से भी जीवन की प्रॉब्लम्स दूर करने की बहुत सारी शिक्षा ली है। जी हाँ, सही कहा आपने सरोज जी। पुस्तकें भी हमें हमारी सच्ची साथी होती हैं, सच्चे मित्र होते हैं, पिन मित्र होती हैं, क्योंकि पुस्तकें जो हैं, पुस्तक हमारा अकेलेपन का सहारा होती हैं, और यकीनन पुस्तकों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद सरोज जी संदेश भेजने के लिए।

गुड्डू धाकड़ उज्जैन जिले के बिडावन गांव से जुड़ गए हैं। कह रहे कि हमारे दादाजी ने तो हमें यही शिक्षा दी है कि किसी का दिल मत दुखाओ और माफ करना सीखो। बहुत को बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छी शिक्षा दिया आपके दादाजी ने आपको दी। गुड्डू जी, संदेश भेजने के लिए धन्यवाद। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से जुड़ गई हैं। ये जोया जी कह रही हैं कि मेरे दिमाग ने मुझे बचपन में समझाया था कि वक्त की हमेशा कद्र करना सीखो, क्योंकि बीता वक्त कभी हाथ नहीं आता, कभी दोबारा वापस नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कह रही है आगे कह रही है कि मैंने कभी भी अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। बिल्कुल सही कहा आपने जोया जी, कभी भी इंसान को अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वक्त की कद्र करेंगे तो वक्त भी हमारी कद्र जरूर करेगा। धन्यवाद संदेश भेजने के लिए, इतना खूबसूरत। जोया जी आपका धन्यवाद।

अगला संदेश हमें भेजा है भुवनेश ने, अशोक विहार दिल्ली से। भुवनेश जी कह रहे हैं कि आज के टॉपिक पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पेरेंट्स ने हम यही सिखाया कि हमेशा मेहनत करो और कभी भी चिंता मत करो, रिजल्ट की कभी चिंता मत करो, रिजल्ट जो भी होगा उसे भगवान के हाथ में छोड़ दो और कभी भी टेंशन मत लो, यानी कि अपने दिल से काम करो, पूरी शिद्दत से काम करो। और वही मैंने बचपन से सीखा है और उसी पर चल रहा हूँ। क्या बात है भुवनेश जी, बहुत धन्यवाद इतना खूबसूरत संदेश। क्योंकि अब अगर हम अपने माता पिता की कदर करते हैं, उनके उनके दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं, तो यकीनन हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। देहरादून से आलोक पंवार और मिनी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आलोक जी और मिनी जी कह रहे हैं कि गाने और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और कह रहे हैं कि गुरु जीवन में गुरु का अहम किरदार होता है जो हमें सहनशीलता, धैर्य और संस्कारवान बनाते हैं। बिल्कुल सही, और यही शिक्षा हमें हमारे गुरु देते हैं। आपका बहुत ही खूबसूरत संदेश है आलोक जी और मिनी जी, इतना अच्छा संदेश भेजने के लिए हमें तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए मैसेज मसाला मिक्स।

जुड़ गए हैं, कहने कि मेरे गुरुजी ने हमें शिक्षा दी है कि कोई भी नशे से, किसी भी तरह के नशे से दूर रहो, और नशा जो है इंसान को बर्बादी का कारण होता है, और वो उस राह पर मैं आज भी चल रहा हूँ, अमल करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही संदेश, बहुत ही अच्छी शिक्षा दी आपके गुरुजी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और लीलाधर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही सुनते रहिए मैसे मसाला मिक्स, क्योंकि हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से गीत के बाद।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: दोस्तों समय बहुत कम रह गया है।

8 बजे एक बार फिर मिलेंगे, प्रोग्राम होगा म्यूजिक मस्ती, इसमें करेंगे हम डांस, लेकिन आपके मिलेंगे क्योंकि एक के बाद एक प्रोग्राम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल प्रवीण लेता है आपसे इजाजत, फिर होगी मुलाकात जल्द रात 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: Leaving on a jet plane. Yes, there's something magical about country music. It doesn't need grand effects or complicated arrangements. A heartfelt melody, honest words, and a memorable tune are often enough to touch millions of hearts. And although country music began in the rural communities of the United States, today it has fans across the globe. It has themes of family, hope, dreams, and everyday life that connect with listeners everywhere. And here's a song from one of the country's music brightest stars, Shaina Twain, after the promos.
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
3: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान

0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
1: Let's go, girls.

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: You're listening to Country Carnival on Akashvani Rainbow 102.6 MHz and I'm your host Mukta Lal Janani. Country music festivals are famous for their joyful atmosphere. Families gather outdoors, friends sing together, and audiences often know every chorus by heart. Even if you have never visited Nashville, country music has a wonderful way of making you feel right at home. Let's hear another energetic hit from Annie Murray.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता

0: आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: Well, as our musical journey begins to wind down, here's a song that captures the spirit of courage, determination and believing in yourself. It's a perfect reminder that every journey begins with a single step. And here's another song that beautifully captures that spirit. That is by Lenny Kravitz, and the song I have shortlisted, but this is a request from Roland. I hope you're going to enjoy that.

0: हाँ तो भैया क्या प्लान है 31 दिसंबर की रात का? FM रेनबो का प्लान है आपके साथ मिलकर कुछ मौज कुछ मस्ती करने का। हाँ तो भाई मिलकर बढ़ाएंगे 2026 में पहला कदम। क्यों ये कहता है दिल? इस मुलाकात में आपके साथ रहेंगे संतोष राव, माला नेगी, राजेश कुमार, प्रवीण कुमार, वीर दमन और ओपी राठौर भी। 31 दिसंबर की रात उमंग 2026 में न्यू ईयर पार्टी सिर्फ FM रेनबो पर। न्यू ईयर स्पेशल उमंग 2026 रात 9 बजे से नए साल तक सिर्फ FM रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: वंडरफुल आर इट्स बीन फ्रॉम क्लासिकल कंट्री मेलोडीज टू टेम्पररी favorites, we have traveled through stories of love, friendship, dreams, celebration and hope. Thank you for making Country Carnival a part of your Monday evening, and I hope these songs brought a smile to your face and added a little rhythm to your life. Until we meet again, this is Mukta Lajnani wishing you a peaceful evening, good health and wonderful music wherever you are. Keep listening to Akashvani Rainbow 102.6 MHz until you join me again at 10 p.m. with Rainbow Showcase. Happy listening. Bye-bye.

लीजिए प्रस्तुत है प्रके एफएम निर्मल मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। यूपीआई डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में कल 10 वर्ष पूरे करेगा। अब ये भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य 11 देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बना। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से नया पाठ्यक्रम शुरू किया। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। पंजाब में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 17,000 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने आगामी त्योहारी सीजन और रक्षाबंधन को देखते हुए राजधानी में प्रवर्तन और निरीक्षण की कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर धोखाधड़ी मामले में एक फर्जी एयरलाइन जॉब दिलाने वाली गिरोह का भंडाफोड़कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ और उड़ानें प्रभावित हुईं। और खेलों में भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी के कनिजा ओपन 2026 में जीत हासिल की। और कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी। तो ये थे अब तक के एफएम रेडियो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, बबुन आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं म्यूजिक रियर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। और दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपके नाचने गाने का, धूम मचाने का, क्योंकि आ गया है आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती। और दोस्तों, आज म्यूजिक मस्ती में आपके साथ इस डांसिंग फ्लोर पर धमाल मचाने उपस्थित है आपका दोस्त रोस्ट प्रवीण शर्मा।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना मस्ती भर प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। कहीं मत जाइए क्योंकि हम उपस्थित हो रहे हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: वेलकम है फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप इस वक्त म्यूजिक मस्ती के खूबसूरत और हसीन महफिल में मेरे दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक, और कर रहे हैं डांस हमारे साथ इस डांसिंग फ्लोर पर।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं।

हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। समय हो गया 8:30 और 7 सेकंड। आप इस वक्त म्यूजिक मस्ती की खूबसूरत सी महफिल में अपने दोस्त प्रवीण के साथ और सुन रहे हैं मस्ती भरे गीत और कर रहे हैं हमारे साथ डांस। तो एक बार फिर हो जाइए इस डांसिंग फ्लोर पर डांस करने के लिए तैयार।

मोर बना दे ये माल थोड़ा मवाली है, हर सेंटेंस में गाली है, ना बम बहना पटाखा है, ये लड़की पूरी दिवाली है।

0: दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, और आप कर रहे हैं हमारे साथ डांस मिलकर, यूं ही करते रहिए डांस डांसिंग फ्लोर पर।
1: लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट परे थम, जवान पीछे से गाना गाएगा।

और दोस्तों जी के साथ फिलहाल परमिशन आपसे लेता है म्यूजिक मस्ती से इजाजत, लेकिन आप कहीं जाए क्योंकि अगले प्रोग्राम यानी आपकी याद आती रही के साथ आपके साथ होंगी जरीन। जी हाँ, तो आप कीजिएगा उनका स्वागत। फिलहाल प्रवीण को दीजिए अगली मुलाकात तक इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।

आर्थिक सहयोग तथा मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टोक्यो में कहा, भारत विनिर्माण कार्यों को लेकर कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए 2 महीने में नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम लागू करेगा। 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली में शुरू हुआ। गृहमंत्री अमित शाह सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में कल 10 वर्ष पूरे करेगा। अब ये भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य 11 देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बना। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप लॉन्च किए। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-2027 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से नया पाठ्यक्रम शुरू किया। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने आगामी त्योहारी सीजन और रक्षाबंधन को देखते हुए राजधानी में प्रवर्तन और निरीक्षण की कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर धोखाधड़ी मामले में एक फर्जी एयरलाइन जॉब दिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ और उड़ानें प्रभावित हुईं। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पिडिक्कल के शतकों के सहारे पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। तो ये थी इस घंटे की खास खबरें और अब कार्यक्रम आपकी याद आती रही सुनते हैं।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, हमारा प्यारा परिवार एफएम रेनबो इंडिया परिवार, और इस परिवार में सुबह से बधाइयों के तांते लगे हुए हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले प्रवीण जी यहाँ से गए हैं, जन्मदिन था आज उनका, खास दिन। हम कहते हैं ना कि ये जन्मदिन सिर्फ एक उम्र का बढ़ना नहीं होता है, बल्कि जिंदगी की किताब में एक नया खूबसूरत अध्याय जुड़ना होता है। और इस दिन दुआ करते हैं हम, खुशियाँ बांटते हैं, बधाइयाँ देते हैं, और यही सिलसिला हमारे रेनबो के ग्रुप में सुबह से हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगा, दिन बन गया, क्योंकि आज मेरी उनसे मुलाकात गई आमने सामने। हालांकि हम लोग सुबह से चैट तो कर ही रहे थे, लेकिन मेरा क्या मानना है दोस्तों, ये जो बर्थडे होता है ना, इसे एक दिन सेलिब्रेट नहीं करना होता है, क्योंकि जिंदगी ना कतरा कतरा बीत रही है। और ऑब्वियस सी बात है कि जिंदगी जिंदगी भर के लिए किसी को मिली नहीं है, तो जैसी मिली है, जितनी मिली है, बस इसे इंजॉय कीजिए, जश्न मनाइए हर एक दिन का जो आप जीते हैं। और हम जब यहाँ आ जाते हैं और आपसे मुलाकात हो जाती है, तो बिल्कुल हमारा तो दिन बन जाता है। और इस दिन को, इस पल को, इस मोमेंट को हम इंजॉय करते हैं कुछ खूबसूरत गानों से, जिसे हम आप तक पहुँचाते हैं और साथ में हम खुद भी सुनते हैं और इंजॉय करते हैं। तो देखिए ना, कितने खुशकिस्मत हैं हम, क्या आपसे जुड़ाव भी होता है और साथ में इतने मधुर गाने सुनने को मिलते हैं। पहला ट्रैक अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में आप तक पहुंचा रहे हैं, बने रहिए पूरे एक घंटे जरीन के संग।

किताबों के पन्ने पलट के सोचते हैं, यूं पलट जाए जिंदगी तो क्या बात होती। तमन्ना जो पूरी हो जाए ख्वाबों में, हकीकत बन जाए तो क्या बात होती। कुछ लोग मतलब के लिए ढूंढते हैं मुझे, बिन मतलब के लिए आए कोई तो क्या बात होती। कोई बातों से ले जाए तो क्या बात होती, जो शरीफों की शराफत में बात न हो। खुशी सबको मिल जाए तो फिर क्या बात होती। वैसे साहब, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कौन किसको दिल में जगह देता है, पेड़ भी सूखे पत्ते गिरा देता है। और दुनिया के रिवाजों से हम वाकिफ हैं कि जब किसी की आंखों में आंसू होते हैं ना, तो दुनिया भी उससे दूरी बनाने लगती है। इसलिए जब भी किसी से मिला कीजिए, खुश रहा कीजिए, खुश हुआ कीजिए। आपको याद है वो फिल्म जब वी मेट, जिसमें करीना कपूर एक कैरेक्टर थी, ऑसम कैरेक्टर। जहां तक मुझे लगता है ना कि वो उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट चुनाव थी डायरेक्टर साहब की क्योंकि जिस तरह की वो चुलबुली लड़की और फिर जिंदगी के उतार

और चढ़ाव के बाद जब सबक मिला उन्हें और फिर जो उदासी उनके चेहरे पर आई, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत सारी बातें सिखा गया वो कैरेक्टर कि कैसे भी हालात हो बस जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जिया जाए। और आई होप कि मोहित चौहान का वो वाला गाना जो करीना कपूर पर फिल्माया गया था फिल्म में, आप सभी का फेवरेट होगा। मेरा तो है ही।

वो कहते हैं ना साहब कि हर इंसान की एक छोटी सी दुनिया है जिसमें वो अपनी हैसियत के मुताबिक रहता है। एक खुशी जो हमें मिलती है अपनी दुनिया से, तलाश जिंदगी की, तलाश सुकून की, तलाश एक ऐसे शख्स की जो अपनी ज़िंदगी बन सके, आपको इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में सुकून पहुंचा सके। अगर आप दुखी हों, गमगीन हों, तो अपनी मौजूदगी भर से उसे मिटा सके। आंखों से निकले आंसू के उस कतरे की कीमत मोतियों से भी ज़्यादा समझे। आप खुश हों तो अपने गम को भी एक किनारे करके आपकी हंसी में अपनी मुस्कुराहट का नशा घोल दे। पर बड़ा सवाल ये कि क्या आपको ऐसा साथी मिल पाया है अभी तक?

तो मेरा जो सवाल था आपसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा इमोशनल था कि जब आपकी आंखों से आंसू निकले तो उस कतरे की कीमत मोतियों से भी ज़्यादा समझने वाला, आपके साथ खुशी में खुश होने वाला, आपके गम को भी एक किनारे करके आपकी हंसी में अपनी मुस्कुराहट का नशा घोलने वाला, क्या ऐसा साथी आपको मिल पाया है? अब आप सोच रहे हो कि जरीन हंसने क्यों लगी। भाई मैं तो गम हो या खुशी हो बस मुस्कुराती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, और यही फ़लसफ़ा मैं शेयर करती हूँ कि आप भी ऐसी ही ज़िंदगी जीना सीख डालिए अगर नहीं सीख पा रहे। मुझे पता है कुछ लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि इस बार उनकी ज़िंदगी में वो शख्स आधम का है, और कुछ लोग आज भी खुशी के इंतज़ार में हैं क्योंकि आज भी उनकी तलाश पूरी नहीं हुई है। ऐसा भी हुआ लगता है कि आपकी निगाहों के सामने से कोई जा रहा है और आप बुत बनकर उसे बस देखते रह गए, कुछ कह नहीं पाए, रोक नहीं पाए। हाँ, हर की लिमिटेशंस होती है, कई एक्सप्रेस कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते हैं। हमारी दुआ है कि आपका जो साथी आपको नहीं मिल पाया, जो आपका सच्चा प्यार है या जो हमसफ़र मिलने वाला है, वो आई होप कि जल्द मिल जाए। और थोड़ा मुखर बनिए साहब, अब हम तो रेडियो जॉकी हैं, हमारा तो बोलने का काम है, हम तो बोलेंगे ही क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है। लेकिन आप जाने जिस फील्ड से भी है ना, बोलने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि दिल की बातें दिल में रखने से कुछ नहीं होता है। एटलीस्ट एक्सप्रेस करिए, या तो हाँ होगा या ना होगा, और हर एक फुल स्टॉप के बाद ना एक लाइन शुरू हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर क्लोज हो जाता है, जो होना है वो होगा, तो भाई पता ही तो चल जाए कि होना है क्या आखिर। हो गया, मेरा हो गया, मैंने बहुत बोल लिया। अब एक अच्छा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, 90s हिट कुमार सानू की आवाज़ में, सड़क फिल्म का ये ट्रैक।

कभी कभी ना रश्क होता है हमें खुद पर कि भाई इतना प्यार मिलता है आप लोगों से, इतनी केयर करते हैं आप लोग, जाने कहाँ कहाँ से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऑल ओवर इंडिया से, इनफैक्ट इंडिया के बाहर से इतना सारा प्यार भेजते हैं हमें। और जब आप लोग इतना प्यार देते आ रहे हैं तो मुझे खुद में भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और कभी कभी इतराती हूँ मैं कि भाई जरीन का जो ये दिल है ना, पता नहीं ऐसे में क्या क्या कहता है, कि मेरी तलाश अभी ख़त्म नहीं हुई है, पूरा का पूरा संसार इस दिल में बसाना चाहती हूँ। वो लाइन है ना लता जी के गाने का एक, कि तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया। तो आपसे जितनी दफ़ा हम मुलाकात करते हैं, ये जो प्यार है, ये जो केयर है, ये जो रेनबो इंडिया का साथ है, सात रंगों वाला, ये बार बार लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस गाने की याद ताज़ा होती जा रही है, लता जी ही क्यों, उदित जी भी हैं इसमें। सातवां आसमान का ये ट्रैक आप तक पहुंचा रही हूँ, 90s हिट पूजा भट्ट पर फिल्माया हुआ।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

102.6 माइंड ब्लोइंग मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे प्रोग्राम आपकी याद आती रही। मैं हूँ इस वक्त नाज आपके साथ। वेल दोस्तों, मुस्कुरा कर मिला करो हमसे, कुछ कहा और कुछ सुना करो हमसे। बात करने से बात बढ़ती है, तो ऐसा करो रोज बातें किया करो हमसे। दुश्मनी से मिलेगा क्या तुमको, दोस्त बनकर रहा करो हमसे। और भाई हम तो आपके दोस्त हैं, क्योंकि दिन हो या रात 24/7 आपकी सेवा में तत्पर, और ढेर सारे आपको गाने सुनवाते हैं, आपके दिल की बातें सुनते हैं और कुछ दिल की बताते हैं। और अगर कुछ ना कर पाए तो एक जादू की झप्पी तो हम दे ही देते हैं इन खूबसूरत गानों के जरिए। तो देखिए ना, एक प्यारा सा सॉन्ग 90s हिट आपके लिए लेकर आए अभिजीत की आवाज़ में। यस बॉस का ये अगला ट्रैक आपके लिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
4: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
3: इम्पॉसिबल
4: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
6: मंगल भवन मंगलहारी,
7: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: तो प्यार भरी इन बातों के बाद वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आपसे दोबारा मुलाकात होगी रंगे महफिल में एक घंटे बाद। लेकिन दोस्तों, प्यार का जो ये हसीन एहसास है ना, हम ये कहना चाहते हैं कि ये होता ही ऐसा है जिसकी खुमारी में हमारी ज़िंदगी का ज़र्रा ज़र्रा बस डूब जाने की तमन्ना करता है। चाहत की फरमाइश लिए दिल को इंतज़ार रहता है उस एक अजनबी का, जिसकी आवाज़ हमारे सपनों का सांस बदल देती है और जिसके चलते ज़िंदगी के जीने का अंदाज बदल देती है। तो बस इजाजत चाहेंगे इस आखिरी गाने के साथ, आपको छोड़े जा रहे हैं, मिलेंगे एक घंटे बाद। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग डियर लिसनर्स अगेन एंड वेलकम टू रेनबो शो की ऑन आकाशवाणी रेनबो विद योर होस्ट मुक्ता लाल चंदानी। डिलाइटेड टू विद यू अगेन ऑन दिस प्लेजेंट मंडे इवनिंग। वेल टुनाइट वी आर ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड देन अराउंड द ग्लोब विद वन ऑफ द पॉप म्यूजिक्स brightest stars, a singer who has spent more than 3 decades making people dance, smile and fall in love with music. Princess of Pop, Kylie Minogue. Let's begin with a song that introduced Kylie to millions across the world.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: Wasn't that the perfect way to begin? Well, that was a familiar track to those who heard it back in 1990s. Kylie Ann Minogue was born on 28th May 1968 in Melbourne, Australia. Long before she became an international pop icon, she was a familiar face on Australian television. As a child, she loved performing. She appeared in television dramas before earning nationwide popularity through the hit soap opera Neighbours. Interestingly, many viewers first knew Kylie as the actress who played Charlene Robinson rather than a singer. Life certainly has its surprises, and sometimes one opportunity opens the door to another, and in Kylie's case, acting paved the way to music. Her debut single, The Locomotion, became one of Australia's biggest hits before introducing her to audiences across the globe. So here's the classic, Locomotion.

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टोक्यो में कहा, भारत विनिर्माण कार्यों को लेकर कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए 2 महीने में नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम लागू करेगा। यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अब ये भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य 11 देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बना। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप लॉन्च किया। इधर दिल्ली सरकार ने, खाद्य सुरक्षा विभाग ने आगामी त्योहारी सीजन और रक्षाबंधन को देखते हुए राजधानी में प्रवर्तन और निरीक्षण की कार्रवाई तेज कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतकों की बदौलत भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। तो ये थी इस घंटे की खास खबरें और अब रंग के महफिल सुनिए जरीन के संग।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, रंगी महफिल लेकर हाजिर हूँ मैं। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, अब उनके लिए जिंदगानी लुटा दें, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दें। साहब कहते हैं कि दिल में हजार उलझने और बेलगाम ख्वाहिशों के मेले के बावजूद अगर आप चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं ना, तो वो वाकई काबिले तारीफ बात होती है। क्योंकि हम सभी की यूं तो जिंदगी से सैकड़ों शिकायतें हैं, लेकिन कोई तो एक वजह काफ़ी होती है मुस्कुराने के लिए, है ना। और मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ दिल से अंदर तक जब ये गज़ल मेरे कानों में सुनाई पड़ती है। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा।

हम लाख शेर कहें, लाख इबारत कर ले, बात वो है जो तेरे दिल में जगह पाती है। आप सुन रहे हैं रंगे महफिल, जरी के संग।

102.6 पर आप सुन रहे हैं रंगे महफिल जरे के संग। आंखें जो है ना, हमारे जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि हजारों दिलकश ख्वाबों, शायराना ख्यालों का एक कीमती खजाना भी है। शायरों ने महबूब की आंखों की तारीफ में जो कुछ लिखा और जितनी बड़ी तादाद में लिखा वो ना हैरान करने वाला है। वो कहते हैं कि साहब आंखें जो है ना बड़ी उस्ताद होती हैं, कमबख्त गुस्ताख होती है, खामोशी से वार करती है, इशारों से कमाल करती है, जुबान की जरूरत नहीं इसे, ये ना दूर से ही हलाल करती है। ये अगली गजल आप तक पहुंचा रही हूँ आशा जी और जगजीत साहब की आवाज में, उम्मीद है पसंद आएगी।

102.6 पर आप सुन रहे हैं रंग महफिल। इस वक्त मैं आपके साथ जर्री। बेहद ही उम्दा गजल, ये बहुत ही लाजवाब। हर गजल ना अपने पीछे कुछ यादें और कुछ एहसास छोड़ जाती है। यही वजह है कि गजल का सफर कभी पुराना नहीं होता है। उम्दा, बेहतरीन और दिलकश इन गजलों में से एक और गजल आप तक लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ जगजीत साहब का यह अगला गजल आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा।

0: है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
7: 102.6 पर आप सुन रहे हैं रंग के महफिल जनी के संग। अगली गजल हरिहरन जी की आवाज में आप तक पहुंचा रही हूं।

मेरा क्या मानना है ना कि दर्द भी शायरी का बहुत अहम हिस्सा होता है। अपनों से मिलने वाले दर्द तो शायरों ने ताउम्र कलेजे से लगाए रखे कि जैसे कसम खा रखी है कि यहाँ तक कि कई तो इस दर्द का इलाज कराने तक को तैयार नहीं है, क्योंकि दर्द अगर हो तो शायरी बहुत उम्दा निकलती है दिल से। दर्द की कायनात इतनी फैली हुई है कि उर्दू शायरी अपनी इब्तदा से लेकर आज तक इसके बयान में मसरूफ है। दर्द शायरी की इसी बेदर्द दुनिया की सैर अक्सर हम करते हैं अपनी गजलों में। हरिहरन की आवाज़ में यह उम्दा गजल आप तक

102.6 पर आप सुन रहे रंगे महफिल, मैं हूं जर्री। अपनी मोहब्बत का इजहार करना आसान है, कोई बुरी बात नहीं है, ये कुछ बुरा भी नहीं है इसमें, पर मैं क्या मानती हूँ साहब कि मोहब्बत को बरकरार रखना मुश्किल है। थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि मौजूदा वक्त में बड़ी तादाद में लोग गमजदा रहते हैं सब कुछ होने के बावजूद। वैसे मैं ना मोहब्बत के मामलों की माहिर तो नहीं हूँ, पर हाँ अपने तजुर्बों से कुछ बेशकीमती इल्म ज़रूर हासिल किया है मैंने। आमतौर पर मोहब्बत का मतलब ये समझा जाता है कि एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाल के चलना, एक दूसरे में खो जाना, एक दूसरे के करीब रहना। लेकिन मेरा ना तजुर्बा ये कहता है कि ज़्यादा नज़दीकियाँ भी कभी कभी नुकसानदायक होती हैं। आप ना अपनी कदर खो देते हो। अगर आप अपनी मोहब्बत को टिकाऊ रखना चाहते हैं तो कभी कभार कुछ दूरियां ज़रूरी होती हैं। मोहब्बत का मतलब अपनी ख्वाहिशों को एक दूसरे पर थोपना हरगिज़ नहीं होता। खूब सारा मान देना, खूब सारा प्यार देना, और फिर देखिए मोहब्बत पूरे शबाब पर चढ़ती है। ये आवाज़ चंदनदास की आवाज़ में आप तक पहुँचा रही हूँ गज़ल

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 11:49 स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक आप सुन रहे हैं रंग महफिल जरी के संग। जब से उनसे मोहब्बत हो गई है, ये फिजा नई नई सी हो गई है। उम्मीदों जुस्तजू से जुदा होकर आसान राह मंजिल हो गई है। दिल में खलिश है, नजस में तपश, यकीनन जिंदगी की शाम जमा हो गई है।

आंख जो उठाए तो मोहब्बत का गुमा हो, नजरों को झुकाए तो शिकायत सी लगे। दिन की भाग दौड़ और बेचैनियों को अगर रात का आसरा न होता तो जिंदगी ख्वाब देखने को भी तरस जाती। रात का अंधेरा और सन्नाटा जितना भी भयानक हो, शायरों ने इसे पूरी ईमानदारी के साथ हर रूप में देखा और दिखाया। लफ्ज़ जब शायरी में दाखिल होते हैं तो अपनी हदों को लांघते हुए कई दुनियाओं की सैर कराते हैं और तसव्वुरात हमें दिखाते हैं। इस वादे के साथ जा रही हूँ कि अगली दफ़ा किसी खूबसूरत मोड़ पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शब खैर।

बहुत ही खूबसूरत शो के साथ जरीन जी आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी रेनबो एफएम 102.6 102.6 पर हमारे साथ। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेचिंग पहुंच गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। केंद्रीय

बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान भारत ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतकों की बदौलत श्रीलंका के खिलाफ पहली बारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित करने में सफल रहा। ये थे मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। कुछ ही देर में हाजिर हम लेकर प्रोग्राम जीरो आवर शो। जिस तरह से कैलेंडर ने अपना दिन बदला है, घड़ियां भी अब 0002 दिखा रही हैं, यानी अब जीरो आवर्स के लिए हम तैयार हैं। आप भी तैयार रहें और सुनेंगे खूबसूरत गाने मेरे यानी रजत के साथ इसी फ्रीक्वेंसी पर, इसी चैनल पर। इसके अलावा हम उपलब्ध हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी, तो आप अगर ये ऐप से अभी भी महरूम हैं तो ज़रूर इसे डाउनलोड कर लें, देश और दुनिया के हर हिस्से हर कोने से हमारे साथ जुड़ने के लिए।

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले, खिले खिले खिले खिले।

एफएम रेनबो इंडिया पर प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मास्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारतीय चीन सीमा वार्ता के लिए पेचिंग पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टोक्यो में कहा, भारत विनिर्माण कार्यों को लेकर कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए

बैठक की। शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में मूसलाधार बारिश से कई उड़ानें प्रभावित हुईं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी आज तेज बारिश की संभावना। और कोलकाता क्रिकेट टेस्ट में मेजबान ध्रुव जुरेल और देवदत्त पिडिक्कल के शतकों के बदौलत भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। ये थे अभी तक के FM रेनबो इंडिया मुख्य समाचार।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: FM रेनबो इंडिया पर प्रसारित है कार्यक्रम सुहानी रात और आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत स्पेशल 26 के गीत के साथ। उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को बेहद बेहद पसंद करेंगे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। अब इससे पहले कि आप जुड़ें भूलाएं ना बने से, लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर गहन चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेचिंग पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2006 का उद्घाटन किया। सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टोक्यो में कहा, भारत विनिर्माण कार्यों को लेकर कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए 2 महीने में नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम लागू करेगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने पर इस दौरान चर्चा की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में मूसलाधार बारिश से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान ध्रुव जुरेल और देवदत्त पाडिक्कल के शतकों के बदौलत भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। थोड़ी देर में आप जुड़ेंगे हमारे नियमित कार्यक्रम भुलाया ना बने से, मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6।

0: गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

एफएम रेनबो इंडिया पर प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मास्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेचिंग पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया और सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में मूसलाधार बारिश से कई उड़ानें प्रभावित हुईं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी तेज बारिश की संभावना। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान ध्रुव जुरेल और देवदत्त पिडिक्कल के शतकों के बदौलत भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। ये थे अभी तक के FM रेनबो इंडिया मुख्य समाचार।

सुरमई से अंधेर की चादर हटाके एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस

में 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: प्यार करती हूँ, कि तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

सुबह के 4 बज चुके हैं और श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर और इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। इससे पहले कि हम पहुंचे सारे गामा की मधुर तरंगों के पास, धुनों के पास, लेते हैं एक जानकारी अब तक के मुख्य समाचारों की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज सम्मेलन में ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए बीजिंग पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर इस दौरान चर्चा हुई। भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने पर भी इस दौरान गहन चर्चा हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में मूसलाधार बारिश से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतकों के बदौलत भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। जुड़े आप हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर और अब प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है सारेगामा मेरे यानी रजत के साथ। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

पेश हैं अभी तक के एफएम रेनबो इंडिया मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे नौवें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मास्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में मूसलाधार बारिश से कई उड़ानें प्रभावित हुईं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी तेज बारिश की संभावना। ये थे अभी तक के एफएम रेनबो इंडिया मुख्य समाचार।

0: है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी। आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांगी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध रखी कि कन्हैया आएंगे मटकी फोड़ेंगे घंटी बजेगी हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ देखा कि घंटी भी बंधी हुई। समझ गए गोपी बड़ी चालाक। तो घंटी को आदेश दिया कि तुम बोलना नहीं चुप रहना मेरे साथियों को माखन खाना। मटकी फोड़ी गई सब साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं। वो तो सबको खिला के खाते थे। जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा ये क्या जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली हमारे भगवान भोग लगा रहे हो तुम कैसे चुप रह सकते हैं। हमारा तो काम ही यही है कि जब भगवान भोग लगाए तो हम सारे संसार को बताएं कि अब प्रसाद ले लो भगवान ने भोग लगा लिया। बस आ गई गोपी पकड़ लिया ले गई यशोदा के पास। यशोदा अचानक पूछ बैठी कन्हैया तूने माखन खाया क्या। और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया